100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 13 जून 2026, सुबह के 5:55 और ठीक 38 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा प्रारंभ होती है।

सुप्रभात। आइए करते हैं शुरुआत इस सुहाने दिन की प्रभु की वंदना के साथ। आज आपके साथ ईश्वर के चरणों में भक्ति की पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मैं हूं ज्योति।

0: आज मैं आपको एक
1: 6:01 हुआ है और 7 में हो गए हैं पूरे 38 सेकंड्स। प्रभु की भक्ति की वर्षा में भीग रहे हैं हम आज एक साथ।

प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कोसलपुर राजा। प्रभु की वंदना, उनका स्मरण, उनका ध्यान करके काम करने वालों के कार्य वो स्वयं संपन्न करते हैं। ऐसे में जब कभी भ्रम, भय या संशय मन में आए तो स्वयं को याद दिलाए कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता। शरण में रख दिया है मात, तो फिर किस बात की चिंता।

मनुष्य की सारी चिंताएं, सारी परेशानियां उस दिन खत्म हो जाती हैं जिस दिन उसे ये विश्वास हो जाता है कि हर काम परमपिता परमात्मा की मर्जी से होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता है। वही करता है, वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इतराता है। एक सांस भी नहीं तेरे बस की, वही सुलाता है, वही जगाता है।

मुखम करोति वाचालम् पंगुम लंघयति गिरिम् यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। जिनकी कृपा से मूक व्यक्ति भी बहुत सुंदर और स्पष्ट बोलने लगता है, जो चल नहीं सकता वो भी बड़े बड़े पर्वतों को पार करने में सक्षम हो जाता है। उन्हीं माधव की हम बारंबार वंदना करते हैं। और उनसे मांगते हैं प्रसाद में उनकी कृपा, उनका प्रेम, उनकी दया।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: समय हुआ है 6:33 और 13 सेकेंड्स। आप कर रहे हैं प्रभु के चरणों में श्रद्धा की पुष्पांजलि अर्पित आज ज्योति मिश्रा के साथ।

0: रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: मन को निराश ना कर, बस ईश्वर पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है वो प्रभु, इस बात का एहसास कर। याद रखना, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए कृपा चाहिए तो उनकी मांगो, दया चाहिए तो उनकी मांगो।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: छह बजकर 44 मिनट और ठीक 54 सेकंड्स। आप कर रहे हैं प्रभु के श्री चरणों में भक्ति की पुष्पांजलि अर्पित आज ज्योति के साथ।

प्रभु का कहना है, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने ही नहीं आस पास हूँ। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, कोई और नहीं, मैं तेरा विश्वास हूँ।

हर सांस में सुमिरन हो तेरा, यूं ही बस बीत जाए जीवन मेरा। इसी प्रार्थना के साथ चाहूंगी अनुमति कार्यक्रम पुष्पांजलि से।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशीवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश ने मोदी जी के नेतृत्व में बदलते भारत को देखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भर में ऊर्जा का वैश्विक संकट है। अन्य देशों की हालत खराब है, लेकिन प्रधानमंत्री के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट में भी भारत नागरिकों के उत्थान की ओर अग्रसर है। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी आज अमरोहा में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता करेंगी। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने और बीते 12 साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगी। इसके बाद मंत्री जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगी और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगी। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री आज शाम डिडौली में ग्राम चौपाल में भी शामिल होंगी। लखनऊ में कल आयोजित हुई उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव 2026 में प्रदेश ने देश के सबसे तेजी से उभरते आर्थिक और अवस्थापना केंद्र के रूप में अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई। इस कॉन्क्लेव में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और निवेशकों ने औद्योगिक निवेश और उत्तर प्रदेश

को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की रणनीतियों पर चर्चा की। कॉन्क्लेव में प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने कहा कि विश्व स्तरीय अवस्थापना, निवेश अनुकूल नीतियां और सशक्त प्रशासन राज्य को निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने साबित किया है कि तेज विकास और मजबूत वित्तीय अनुशासन साथ साथ चल सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ कल नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान डॉ. सोमनाथन ने परीक्षा का सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन नीट पुनर्परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं। श्री सोमनाथन ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता और सुचारू संचालन को किसी भी तरह से प्रभावित करने, बाधित करने या छेड़छाड़ करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नीट यूजी पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. छू जाते हो मुझे कितनी दफे तुम यूं ही ख्वाब बन के. कौन कहता है दूर रहकर मुलाकात नहीं होती. 107.7 FM रेनबो पर एक और खूबसूरत मुलाकात गुजरे हुए जमाने के सदाबहार गीतों के साथ. आज इस सुहानी सुबह आपकी अपनी दोस्त ज्योति आपके साथ. सो स्टे

7:09:57 अपनी घड़ियां मिला लीजिए और अपने कान रेडियो से एकदम सटा लीजिए, क्योंकि इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत ज्योति मिश्रा के साथ। और ज्योति लेकर आई है कुछ ऐसे गाने जो कभी हो ही नहीं सकते पुराने।

7:15 और ठीक 51 seconds, और अब आप तक पहुंचा रही हूं 1976 की फिल्म बैराग का सदाबहार नगमा, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की दिलकश आवाजें। गाना कुछ ऐसा है जिसमें छेड़छाड़ है, शरारत है और है प्यार का इजहार भी। तो आइए मुस्कुराहटों और नोकझोंक से भरे इस प्यारे से गीत का आनंद।

शख्सियतें ऐसी ही होती हैं जिनके जैसा कोई नहीं होता। 7:20 और ठीक 52 सेकंड हो रहे हैं। सैटरडे की मॉर्निंग है और इस मॉर्निंग मैं चाहूंगी कि अगर आपकी छुट्टी है तो भी अब आप उठ जाइए, क्योंकि ये खूबसूरत सुबह आप ऐसी मिस थोड़ी ना कर सकते हैं, है ना। अब आप तक पहुंच रहा है फिल्म ब्रह्मचारी का एक बहुत ही खूबसूरत गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की। सुमन कल्याणपुर जी को हमने हाल में ही 31 मई 2026 को खो दिया, लेकिन कहते हैं ना कि कलाकार अपनी कला के दम पर उसके ज़रिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे दिलों में ज़िंदा रहते हैं। तो चलिए उनकी यादों को नमन करते हुए सुनते हैं ब्रह्मचारी का ये सदाबहार गीत, जो आज भी जब प्ले किया जाता है तो हर कोई थिरकने को मजबूर हो जाता है।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स।

जिंदगी का सफर आसान हो जाता है जब कोई कहे मैं हर हाल में बस तुम्हारे साथ हूँ। कहने वाले कहते हैं कि इजहारे मोहब्बत बहुत मुश्किल काम है, लेकिन निभाने वाले ये कहते हैं कि इजहार से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है प्यार को निभाना, इसी खूबसूरत एहसास को ये सुपरहिट सॉन्ग आप तक पहुंचा रहा है। फिल्म का नाम आ गले लग जा 1973 की ये खूबसूरत

सात बजकर 37 मिनट और ठीक 49 सेकेंड आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार गीत। वैसे एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कल दोपहर 12 से 1 बजे के बीच हम लेकर आएंगे प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस, जो कि आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार इसी टाइम पर, यानी कि 12 से 1 बजे के बीच। और इस प्रोग्राम के प्रायोजक होंगे चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम सजा कर लाते हैं आपके लिए एक से बढ़कर एक प्रोग्राम्स का गुलदस्ता।

7:44 हो गए हैं सैटरडे की मॉर्निंग, यानी कि एक रिलैक्स्ड मॉर्निंग। अगर आपकी छुट्टी है तब तो बस कहने ही क्या, और अगर बाय चांस आज आपकी छुट्टी नहीं है तो भी वीकेंड का फील तो आ ही रहा है ना। ऐसे भी मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि सैटरडे इज बेटर देन एनी अदर डे, क्योंकि संडे को भी मॉर्निंग से ही वो वाली टेंशन शुरू हो जाती है कि अरे संडे ख़त्म हो जाएगा, कल मंडे हो जाएगा और फिर पूरे वीक काम करना है। इसीलिए तो बार बार मैं यही कहती रहती हूँ कि ये जो पल है ना, इसको पूरी तरह से इंजॉय करिए। और इंजॉय कैसे करना है, आलस करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। उठिए, चाय का प्याला हाथ में लीजिए और दिन की तैयारी करिए। और हम तो भाई आपका दिन अच्छा बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं, सुनाते हुए आपको कुछ ऐसे सदाबहार गाने जो कभी हो ही नहीं सकते पुराने। अब आप तक पहुंच रहा है 1978 की फिल्म त्रिशूल से ये ब्यूटीफुल सॉन्ग, जो कि मेरे फेवरेट नंबर्स में से एक है। फिल्माया गया था इसे पूनम ढिल्लन और सचिन पर।

ये जो साथ रहे जन्म जन्म वाली बात है ना, काफी हद तक सचिन पिलगांवकर पर बिल्कुल फिट साबित होती है। अगला गाना भी उन्हीं की फिल्म से सुना रही हूँ, 1978 की फिल्म अखियों के झरोखों से। सचिन एक ऐसा नाम है जिन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी और आज भी वो एक्टिव है। तो कह देना कि कभी कभी आप जिंदगी को नहीं चुनते, जिंदगी खुद आपको चुन लेती है। ऐसा ही कुछ माना जाता है सचिन की लाइफ के बारे में भी। उन्होंने फिल्मों को चुना या फिल्मों ने उनको चुना, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बट यस, लगातार दशकों से वो हमें एंटरटेन करते ही जा रहे हैं। फिलहाल आपको सुना रही हूँ जो सॉन्ग, वो 1978 में रिलीज हुई फिल्म अखियों के झरोखे से का है और इस फिल्म में सचिन के साथ थी रंजीता।

ना कि तेरे साथ आके मेरा वक्त गुजर जाता है कुछ ऐसा ही महसूस होता है जब आपके साथ होती हूँ मैं देखते ही देखते 7:54 हो गए हैं यानी कि इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो गया है तो चलिए अभी के लिए आपसे कहती हूँ टाटा बाय बाय सायोनारा एक छोटे से न्यूज ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलने वाली हूँ लेकर गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकिन अभी बस इस सॉन्ग के बाद में हम जुड़ने वाले हैं हमारे दिल्ली केंद्र से सुनने के लिए समाचार प्रभात सो स्टे ट्यून्ड

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और

0: उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमेरिकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन

0: हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अभयम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
2: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद विशाल।

0: की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: जगह,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
1: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, बर्थडेज, ट्रैफिक, वेदर, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट, सब कुछ मिलेगा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग लखनऊ में हर सुबह 7:15 से, ओनली ऑन रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: स्टे ट्यून्ड टू स्टे अपडेटेड, कीप लिस्निंग टू एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: धड़कन लखनऊ की आज कुछ ज्यादा ही धड़क रही है रत्ना।
5: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सी, मीठी सी, सुरीली सी, प्यारी सी, मधुर सी एक सुबह में हम सब आपके साथ हैं। हम सब बोले तो हम दोनों आपके साथ हैं, फिलहाल ज्योति तो सुबह से बनी हुई आपके साथ, लेकिन अब मैं भी आ गई हूँ आपसे मिलने के लिए। मैं बोलूँ तो मैं रत्ना शुक्ला, और पहले से कौन जुड़ी है?
4: पहले से

0: आपके साथ ज्योति और रत्ना सिर्फ आई नहीं है, अपने साथ में मौसम का जादू भी लेकर आई है। एकदम चेंज हो गया है मौसम,
1: इतना बढ़िया मौसम हो गया कि जो लोग बाहर है ना तो सोच रहे हैं कि बस साइड में खड़े हो जाए, पानी की बूंदे ना पड़े, मैं भीगू नहीं लेकिन साइड में वाह मौसम का पूरा लुत्फ लेता रहूं।
0: तो भाई मौसम का आनंद उठाइए लेकिन साथ साथ हमारे साथ जुड़े भी रहिए क्योंकि आज के गुड मॉर्निंग लखनऊ में ज्योति और रत्ना ने आपके लिए सजाया है बहुत कुछ खास। और हाँ हाँ, खास आज का प्रोग्राम इसलिए भी है क्योंकि GML में पहली बार हम दोनों आपके साथ
1: बिल्कुल
0: एक साथ मिले हैं। इतने सालों में फर्स्ट टाइम, हालांकि यूथ वेव में हमारी मुलाकात हो चुकी इवनिंग शोज में हो चुकी है लेकिन मॉर्निंग शोज में नहीं। तो भाई हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हमने सजाए हैं ढेर सारे सरप्राइजेस बस आपके लिए।

0: सैटरडे संडे है तो बहुत होता है रत्ना। आप देखिए ना, आप ही जैसे बता रही थी कि सुबह 4 बजे से आपकी आंख खुल गई थी।
1: हाँ बिल्कुल,
0: और पहला थॉट आपको यही आया है कि ज्योति तैयार हो रही होगी। लेकिन फिर भी आपने बिस्तर नहीं छोड़ा, तो ये इनकार इकरार तो कुछ ऐसे ही चला करता है सुबह सुबह उठने के लिए। लेकिन भाई मैं यही कहूंगी कि अब जग जाइए ना, 8:23।
1: अच्छा, आप इसलिए इशारा कर रही क्योंकि आज वीकेंड है, तो वीकेंड पे लोग थोड़ा सा लेजी होते हैं, थोड़ा सा काम को थोड़ा सा डिले करके और मस्ती के साथ करते हैं, इसलिए आप कह रही हैं अब जग जाइए।
0: और ऐसे भी ना, आप देखिए ना, ऐसे भी समर वेकेशन चल रही है, तो ऐसे भी जब बड़े देखते हैं कि बच्चे सो रहे हैं तो उनको बड़ा खराब लगता है, लगता है कि भाई मेरे ऑफिस की छुट्टी क्यों नहीं होती है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात ज्योति कह रही है। लेकिन हाँ, चलिए आज का मौसम ऐसा है कि अगर आप उठेंगे तो आप ही को फायदा है, क्योंकि वो जो आपको आप आके बाहर एंजॉय करने वाले हैं, या फिर जो सुबह की चाय की खुशबू है, है ना, जो चाय की चुस्की है उसके साथ अखबार की सरसराहट है, उसके साथ ढेर सारी मुस्कुराहट, जो कि 100.7 FM रेनबो पर चल रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ के जरिए आपकी लबों पर आ सकती है।
0: एग्जैक्टली, तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से सजा कर लाए हैं हम आज का ये प्रोग्राम खास तौर पर बस आपके लिए। आज का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र। मंत्र है आज का ये कि लाइफ इज 10% ऑफ व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। ये मैंने नहीं कहा, इतनी गहरी बात मेरे दिमाग में आसानी से नहीं आ सकती, ये तो कहा है चार्ल्स आर स्विंडॉल ने। उनका ये कहना है कि जिंदगी में जो कुछ भी घटता है उसका एक हिस्सा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन उस पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है, और बहुत सारी चीजें हमारी प्रतिक्रिया पर ही डिपेंड करती
1: हैं। बिल्कुल सही कहा आपने ज्योति, ट्रैफिक जाम है, मोबाइल की बैटरी खत्म होना, बिजली चली गई, या फिर किसी ने आपका पसंदीदा कप, वाह कप इस्तेमाल अगर कर लिया है, तो इन बातों पर हमारा क्या रिएक्शन होता है, यही दिन हमारा जो है वो बनाता है, तय करता है या हम पॉजिटिव रहते हैं या फिर थोड़े से निगेटिव हो जाते हैं। ये सारी बातें हमारी इन सब चीजों पर डिपेंड करती हैं।
0: तो इसीलिए बार बार बोला जाता है कि रिएक्ट मत करिए बल्कि रिस्पॉन्ड करिए चीजों पर। कई बार ऐसे देखते हैं हम रत्ना कि अगर हमने सिर्फ अपने रिएक्शंस कंट्रोल कर लिए तो जो कुछ भी होता है हमारी जिंदगी में वो पूरी तरह चेंज भी हो सकता है। तो बस इसी बात से जुड़ा हुआ है हमारा मुद्दा भी।
2: मुद्दा आज का,
0: तो मुद्दा क्या है?
1: मुद्दा बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही लाइट सा मुद्दा है, पता है आपको, वो ये है कि क्या हम छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करते हैं।
0: तो भाई सोचिए, क्या आप रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर ओवर रिएक्ट करते हैं हर बात पर? अच्छा ये भी बताइएगा कि आपके घर में सबसे ज्यादा ओवर रिएक्शन कौन देता है, मम्मी पापा बच्चे दादी बाबा या फिर आप खुद?
1: मुझे लगता है कभी कभी जल्दी में लोग ज्यादा बिजी होते हैं, जल्दी में ओवर रिएक्ट खुद भी कर देते हैं लेकिन उसको मार्क नहीं कर पाते हैं, सोचते नहीं मैं तो ठीक हूँ अपनी जगह।
0: तो भाई अपने आप को सही ठहराना ये भी एक तरीके के ओवर रिएक्शन का ही हिस्सा है ना।
1: बिल्कुल,
0: कि मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकता। बहुत सारी जिंदगी में चीजें होती हैं और मुझे लगता है कि यही छोटी छोटी सी चीजें डिसाइड करती हैं हमारी जिंदगी की बड़ी बड़ी चीजों को। आगे भी बात करेंगे लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत गाना हो जाए।
1: बिल्कुल।

0: मुस्कुराई, थोड़ा ही क्यों, ढेर सारा मुस्कुरा, क्योंकि मुस्कुराना ही तो है वो ब्यूटीफुल चीज जो कि इंसान को दी गई है ऊपर वाले की तरफ से।
1: और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है ज्योति कि आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाले की मुस्कुराने की वजह भी बनते हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल, कंटेजियस होती हैं स्माइल्स, प्रोवाइडेड कि आपके दिल से निकली हुई हो।
1: बिल्कुल,
0: ढेर सारे ईमेल्स हमारे पास आगे, रत्ना तो थोड़े से ईमेल्स ले ले।
1: बिल्कुल, मेल शामिल करना बहुत जरूरी है क्योंकि बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रहे होंगे सारे लिसनर्स।
0: सुनील कुमार जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, हर विषय पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, जितना हो सके इग्नोर कर दें, लेकिन हर विषय को इग्नोर किया जाए ये भी अच्छा नहीं है। ये विवेक से निर्णय लेना होता है कि किस विषय को इग्नोर किया जाए और किस विषय पर प्रतिक्रिया दी जाए। क्यों सुनील से निर्णय नहीं लिया जा सकता है, विवेक से निर्णय लेना होता है। चलिए भाई, जस्ट किडिंग, ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि रिएक्शंस, ओवर रिएक्शंस और रिस्पॉन्स, ये अलग अलग चीजें जरूर है, लेकिन ये आपको अपने विवेक से ही तय करना होता है कि कब किस चीज की जरूरत है।
1: बिल्कुल, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ये तय करना पड़ता है। आगे बढ़ते मेल, अगर तो कोमल तिवारी का मेल आया और वो लिखती है, सिर्फ उन्होंने लिखा गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कोमल जी। और जनेश्वर कुमार जी का भी मेल आ गया, ज्योति
0: जनवेश जी का, जी
1: जी जनवेश जी का मेल आ गया। और ये क्या लिखते हैं, अरे वाह, लिखा इन्होंने कि पुष्पांजलि कार्यक्रम और सदाबहार गीत कार्यक्रम में सच में कार्यक्रम में जान डाल दी
0: जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू,
1: देखिए ज्योति की पीठ मैंने थपथपा दी भाई। और लिखते हैं, कार्यक्रम समाप्त करते करते आपने जापानी में भी नमस्कार किया और इस भाषा में सायोनारा कहते हैं इसे, वाह। तो सायोनारा गीत के साथ इन्होंने एंड किया था प्रोग्राम का, तो आपको बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, इसके लिए जनवेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका गुड मॉर्निंग भी हम लोगों तक पहुंच गया। ज्योति मिश्रा मैम जी को भी इन्होंने गुड मॉर्निंग स्पेशली लिखा है और पूछा है कि आशा करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे।
0: और जनवेश जी, जब आपके इतनी प्यारी ईमेल को हमारी प्यारी सी रत्ना ने पढ़ा तो फिर मेरे चेहरे पर कितनी खुशी छाई है, ये आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ गया।
1: बिल्कुल, बस सुबह से ज्योति आप लोगों के इंटरटेनमेंट का इंतजाम लेकर आई है और बहुत खुश हो गए जब उनको थोड़ी सी हौसला अफजाई मिली, और अभी आगे और मिलने वाली है। जनवेश का ये मेल कहाँ से आया, ग्राम रसूलपुर पोस्ट सकरावा जिला कन्नौज से नोएडा में फिलहाल इस वक्त सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच।
0: और सुधांशु जी का भी ईमेल है, भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से, प्रोग्राम सदाबहार गीत अच्छा लगा और पुष्पांजलि में भजन अच्छे लगे। और एक इन्होंने सवाल किया है, इसका जवाब हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। इनके अलावा रजनेश पासवान जी का भी ईमेल आया है, तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। और किसका, रामराज,
1: रामराज जी।

0: कभी मेला गया है। और लिखते हैं श्री गणेशायनम सदाभागी जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु शंकर भैया पप्पू पासी मधु बजरंगी काका आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है। इन सब की तरफ नाम इन्होंने मेंशन किया और जो गाना सुनाए जाते हैं सुपर हिट है। हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे। रामराज जी का आपका आशीर्वाद यहां तक पहुंच गया है। ज्योति बहुत खुश हो रही है और आपने लिखा मेल पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद मेल भेजने के लिए।
1: घनश्याम सिंह जी भी ईमेल आया नारायण नगर ए फैजाबाद रोड लखनऊ से जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये जो टोस्ट बटर और चाय भेजा है। अब अभी तक भूख नहीं लग रही थी लेकिन अब इसे देख करके वाकई पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ स्टार्ट हो गई है। वो कहते हैं सरसराहट धड़धड़ाहट जो आजकल बहुत चल रहे हैं रील्स में। अनकुल अफशा क्या बोलती है,
0: ये बोलती है क्या लिखा इन्होंने, ये लिखती है कि हेलो गुड मॉर्निंग ज्योति मैम एंड मैं गुलफशा सिद्दीकी संडीला से। आज आप सुबह से आई हुई बहुत अच्छा लगा, गाने अच्छे लग रहे हैं, हमारे यहाँ बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है कि 5 बज रहे हैं सुबह के।
1: ओ बारिश। अली साहब लिखते हैं गुड मॉर्निंग, 6 बजे से बड़ी शिद्दत से कार्यक्रम सुन रहा हूँ, भजन है वहाँ भाव है, जहाँ भाव है वहाँ भजन है, पुष्पांजलि अच्छा लगा और सदाबहार गीत भी पसंद आया। वारिस अली खान संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। और अब अभी का आखिरी ईमेल हम जल्दी से पढ़ देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: प्रज्ञानंद देवांगन का ईमेल है ये। इन्होंने एक किसी गाने की फरमाइश की है। ढेर अच्छा। सारे ईमेल्स अभी भी हमारे सामने हैं, एक बार फिर से मुद्दा दोहरा देते हैं। मुद्दा है हमारा
0: कि क्या हम छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करते हैं। और आप अपने साथ में आपके घर में अगर आप सोचते हैं कि हमारे घर में जितने भी मेंबर्स हैं क्या वो ओवर रिएक्ट या रिएक्ट करते हैं, या फिर कभी कभी आपसे भी ऐसा हो जाता है। जो भी आपके इसमें थॉट्स हैं, जो भी विचार हैं, वो हमें मेल करके आप बता सकते हैं। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ जिसमें ज्योति और रत्ना है आपके साथ
1: और हमारे पास है आपसे शेयर करने के लिए ढेर सारी इंटरेस्टिंग बात।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: वेल 8:40 हो गए हैं और ये वक्त कह रहा है कि हम आपको कुछ स्पेशल सा पहुंचाने वाले हैं आज तक। आज के दिन से आज के कौन सा दिवस है इससे आपको रूबरू करवाने वाले हैं।
2: जी हम हमेशा कहते हैं ना कि जो अच्छे दोस्त होते हैं वो सिर्फ आपको एंटरटेन ही नहीं करते, आपका मन ही नहीं बहलाते, बल्कि आपको बेहतर बनाने में आपकी मदद भी करते हैं। इसीलिए तो मैं बार बार कहती हूँ कि स्टे ट्यून्ड टू स्टे अपडेटेड। और आपको अपडेट करने का इस वक्त वक्त आ गया है। आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक वैश्विक जागरूकता दिवस है और इस वर्ष की थीम है प्राउडली इन माय स्किन, सेलिब्रेटिंग ऑल स्किन टोन्स। हिंदी में एल्बिनिज्म को बोलते हैं रत्ना सूरजमुखी स्थिति।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। और इसके साथ साथ ये संदेश हम आपको दे रहे हैं, ये कितना सुंदर सा संदेश है, अपनी पहचान पर गर्व कीजिए और दूसरों की पहचान का सम्मान कीजिए।
2: आपको बता दूं कि एल्बिनिज्म कोई संक्रामक बीमारी नहीं होती है, ये एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें बॉडी में मेलेनिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है या फिर बिल्कुल भी मेलेनिन नहीं बनता, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर का रंग होता है वो हमें नहीं मिल पाता है। इस वजह से त्वचा, बालों और आंखों का रंग अलग अलग हो जाता है और कभी कभी विजन से रिलेटेड, नज़र से संबंधित, दृष्टि से रिलेटेड चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं।
1: ओके और आज का दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि किसी इंसान का मूल्य उसके रंग से नहीं, उसके विचारों और व्यक्तित्व से होता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, कैसा सामने पेश आता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। ये दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पर 13 जून 2015 को मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के खिलाफ होने वाली हिंसा, सामाजिक बहिष्कार और रूढ़िवादिता को चुनौती देना है।
2: तो अगर आपको लगता है कि आपको और जानकारी मिलनी चाहिए एल्बिनिज्म से रिलेटेड, अगर आपको लगता है कि ये जो स्किन में वाइट कलर आ जाता है इसके बारे में आप और जाने, तो हम आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर स्वास्तिका परिहार से, जो कि हैं KGMU की जानी मानी स्किन

0: स्पेशलिस्ट आज इसी प्रोग्राम में। तो बस बनी रहिएगा हमारे साथ, आपकी बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी शंकाओं के समाधान तो वो करेंगी ही, साथ ही आपको डायरेक्शन देंगी, आपको निर्देशित करेंगी कि अगर ये समस्या आपके किसी अपने में है तो आप किस तरह उसका सामना कर सकते हैं, इस चुनौती से जूझ सकते हैं।
1: वेल, तो चलिए इन बातों के साथ ही आप तक इंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रखते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग आप तक भेजते हैं।

0: ना मुझे
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. तो भाई हमने ये कहा कि stay tuned to stay updated. अगर ये कह दिया तो इसका मतलब है ये कि आपको अपडेट रखना हमारा फर्ज हो जाता है. फ्रेंड्स आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, जिसमें आज आपके साथ हैं रत्ना और ज्योति. और अब हम आपको बताने वाले हैं कि आज आपके शहर में क्या खास होने वाला है.
2: बिल्कुल, जहां आप जा सकते हैं या आप जाके शिरकत कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट वहां पर है. तो हम अपने शहर की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जन चौपाल रामलाल लॉन काकोरी मोड़ नरौना कल्याण सिंह वार्ड 4:00 PM से वहां पर ही आयोजित होने को है. और उसके साथ ही बरावन खुर्द स्थित पार्क लालजी टंडन वार्ड 6:00 PM. इन जगहों पर आप अगर जाना चाहें तो जरूर जा सकते हैं.
1: लखनऊ बायोस्कोप की तरफ से संगीतमय संध्या का आयोजन हो रहा है. तो अगर आपको अपना वीकेंड म्यूजिकल बनाना है तो आप 130 JC बोस रोड कैसरबाग पहुंच सकते हैं 6:30 PM.
2: बिल्कुल. और आगे बढ़ते हैं तो आपको बता देते हैं मदर सेवा संस्थान की ओर से चबूतरा थिएटर फेस्टिवल में सारा जहां हमारा है नाटक का मंचन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में 7:00 PM से होने को है.
1: और अगर आपको कविताओं का शौक है तो योगेंद्र नाथ द्विवेदी के कविता संग्रह एक दीपक सब जलाएं का विमोचन है आज कैफी आजमी एकेडमी में 6:00 PM. मतलब सब कुछ है,
2: सब कुछ है,
1: म्यूजिक भी है, नाटक भी है, पोएट्री भी है, व्हाट नॉट. एक क्वेश्चन ये है कि क्या नहीं है, सब कुछ है.
2: बिल्कुल. और तभी कहते हैं कि शाम में अवध यूं ही खास नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ है और जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वहाँ जरूर जा सकते हैं.
1: तो अपना शाम, अपनी शाम तो आप एंजॉय करते रहिए, आज तो आप दिन भी एंजॉय कर सकते हैं. हाँ. क्यों? क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है. रिम झिम करते हुए सैटरडे के इस डे को बनाइए और भी स्पेशल और भी खास.

0: और जो
1: चलते चलते चलते चलते अब प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं ये जो मेरे बगल में बैठी है इनके साथ मैं गुनगुना भी नहीं सकती क्योंकि मैं जितनी बेसुरी हूँ ये उतनी ही सुरीली है।
0: और ये एक खास बात है कि यहाँ स्टूडियोज में आकर के जो भी बेसुरा है चाहे जैसा भी हो यहाँ का सुरीला अपने आप हो जाता है। आपको सुबह से ज्योति की सुरीली सी आवाज सुनाई पड़ रही है।
1: नहीं, मेरा मन कर रहा था गाने का चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, लेकिन अब नहीं गाऊंगी। बस इतना कहूंगी कि चलते चलते हम पहुंच गए 8:55 पर।
0: बिल्कुल, और ये वक्त कह रहा है कि बस हम जल्दी आपको को न्यूज़ ब्रेक के उस पार फिर सेकंड हाफ में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले
1: कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो भाई
0: एक अच्छी सी खुशखबरी है
1: जी, 139 साल के बाद में अमीनाबाद इंटर कॉलेज में लड़कियां गर्ल्स भी पढ़ सकेंगी।
0: वाह।
1: तो भाई अभी तक जैसा कि आप जानते ही हैं कि यहाँ पर बॉयज़ पढ़ते थे, बॉयज़ स्कूल था ये, बॉयज़ कॉलेज था, लेकिन अब पहली बार यहाँ पर छात्रों के साथ छात्राओं को भी पढ़ने का अवसर दिया गया है।
0: बिल्कुल।
1: मैं आपको बता दूं कि नगर निगम द्वारा संचालित अमीनाबाद इंटर कॉलेज की स्थापना 10 अक्टूबर 1887 मार्केट 1887 को हुई थी अमीनाबाद म्यूनिसिपल एबीसी स्कूल के रूप में। बाद में ये बना इंटरमीडिएट कॉलेज और अब यूपी बोर्ड से संचालित इस कॉलेज में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई कराई जाती है। और अब ये स्कूल, ये कॉलेज जो कि पहले बॉयज स्कूल बॉयज कॉलेज हुआ करता था, अब हो गया को एजुकेशन।
0: और बहुत ही अच्छी सी खबर जो कि हमारी जितनी भी गर्ल्स सुन रही होंगी और जो वहाँ जाना चाहती होंगी जिनके घर करीब होगा वो बहुत खुश हो गई होंगी कि अरे हम भी एडमिशन ले सकते हैं इतने करीब में।
1: तो भाई इस ऐसे भी अपने शहर के बारे में तो आपको सब पता होना ही चाहिए और आपको अपडेट करने का, आपको बताने का काम किसका है?
0: हमारा है। और हम अपने बिटारे में अभी भी बहुत सारे चीज़ें लेकर आए हैं आपके लिए, काफ़ी कुछ आप तक पहुंचा दिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो आपसे बस यही कहेंगे सुनते रहिए, जुड़े रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में ज्योति और रत्ना के साथ 100.7 FM रेनबो पर।
1: छोटा सा न्यूज़ ब्रेक और फिर करते हैं मुलाकात।

नमस्कार, 9 बजे अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कल वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये खबर आज कई अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। हिंदुस्तान ने इस खबर पर सुर्खी दी है, प्रधानमंत्री मोदी के विजन का सर्वाधिक लाभ यूपी को, योगी। नवभारत टाइम्स लिखता है, गरीब आदमी अब वोट बैंक नहीं, विकास का केंद्र, योगी। स्वतंत्र भारत ने लिखा है, चमत्कारिक नेतृत्व से देश में आया बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जेवर एयरपोर्ट के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा से चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया। ये खबर भी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के संबोधन को हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, हर शहर और गांव को ग्रीन मोबिलिटी से जोड़ेंगे। अमर उजाला ने लिखा है, सीएम ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों को दिखाई हरी झंडी। नीट में छात्रों के लिए परीक्षा के समय में बढ़ोतरी की खबर भी आज पहले पन्ने पर है। दैनिक जागरण ने लिखा है, नीट में छात्रों को मिलेंगे अतिरिक्त 15 मिनट, 180 से बढ़ाकर 195 मिनट की गई समस्या, माफ कीजिएगा, 180 से बढ़ाकर 195 मिनट की समय सीमा की गई। परीक्षा में रफ के लिए 2 अतिरिक्त पेज मिलेंगे। विदेश मंत्रालय ने ओमान तट पर वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर नाराजगी जताई है। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापते हुए लिखा है, भारत की अमेरिका को 2 टूक, नागरिकों पर हमले अस्वीकार्य। अमेरिकी दूतावास के शीर्ष अधिकारियों को तलब कर जताया विरोध। अमर उजाला लिखता है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं। हिंदुस्तान ने पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच समझौते की अटकलों से जुड़ी खबर को हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, युद्ध खत्म, करार जल्द होगा, ट्रंप। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, हम समझौते के बेहद करीब। नवभारत टाइम्स ने इस खबर पर शीर्षक दिया है, ट्रंप का दावा जंग खत्म, ईरान बोला अभी तय नहीं। पश्चिम एशिया संकट के चलते वैश्विक आपूर्ति में बाधा के मद्देनजर सरकार ने डीजल बिक्री पर सीमा

कर दी है। अमर उजाला ने इस खबर पर शीर्षक दिया है, 200 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा डीजल, पंपों पर दिन की सीमा लागू, कालाबाजारी रोकने की कोशिश। इसके अलावा देश के दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा के निधन की खबर भी आज अधिकतर समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर है। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. नौ बजकर 5 मिनट और 36 सेकंड्स। वेलकम बैक, एक बार फिर आपके साथ हैं
2: ज्योति और रत्ना,
1: और हम लेकर आए हैं आपके लिए ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातों का पिटारा। और ऐसे थोड़ी नाम कहते हैं कि आपको अपडेटेड रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो वही से पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ ईमेल्स हैं वो पढ़ लीजिए।
2: बिल्कुल, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनको एक एक करके हम सभी के नाम शामिल कर रहे हैं।
1: जी जी जी, जी।
2: तो ये घनश्याम सिंह जी का मेल आया और वो लिखते हैं पुष्पांजलि और सदाबहार इनके प्रोग्राम में के बारे में उन्होंने लिखा है। एडवोकेट घनश्याम सिंह नारायण नगर ए फैजाबाद रोड लखनऊ, मैडम ज्योति मिश्रा जी को श्रद्धापूर्वक सुप्रभात और प्रणाम कर रहा हूँ। आपने पुष्पांजलि बहुत ज़्यादा अच्छा उसमें सभी भजन सुनवाए और हृदय हमारा भक्तिमय हो गया। देखिए, आपने किसी का दिन बना दिया ज्योति।
1: थैंक यू जी, दिन तो एक्चुअली आपने हमारा बना दिया। नीलू शर्मा का ईमेल है, और जो मैंने अभी कहा था ना रत्ना कि मैं सुरीली नहीं हूँ, हमारी रत्ना बहुत ही सुरीली है, उनके सामने गाना गाने से पहले सोचना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे मत बोलो, इनको अच्छा नहीं लगा कि मैंने सुबह सुबह ऐसी बात कही।
2: अच्छा,
1: तो जी नीलू जी आप बहुत स्वीट हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कभी आप रत्ना का गाना सुन कर देखिए। मैं वाकई कह रही हूँ कि आपको ऐसा आप लगेगा तो... जैसे कानों से शहद गुल
2: निकल रहा
1: नहीं, कानों सुनते हुए कानों से शहद कुछ इस तरह से आपके रोम रोम में पहुंचेगा कि भाई क्या कहने।
2: देखिए, ज्योति ने बिल्कुल हमको वहां चढ़ा दिया है, बस आगे नहीं बोलेंगे कहाँ चढ़ा दिया। लेकिन फिलहाल बहुत आपकी तारीफ आ रही है, सुबह से आप जो प्रोग्राम कर रही हैं, और उसके बाद हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला मेल हम किसका पढ़ने जा रहे हैं?
1: अगला है ब्रिजेश सिंह दीपू का, इटहुआ कैसरगंज बहराई से। ये लिखते हैं बड़ी मोहब्बत से, फोटो भी भेजा इन्होंने। इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम सुन रहा हूँ, खेत में दवाई स्प्रे कर रहा हूँ, और अभी मुद्दे पर कहने के लिए कुछ नहीं है।
2: अच्छा,
1: लेकिन फोटो जरूर भेज रहा हूँ कि देख लीजिए कितना मेहनत से काम करो। बड़ा अच्छा लगता है, हमारे किसान भाई इतनी मेहनत करते हैं तब हमारी थाली इतनी भरी भरी हमारे सामने आती है।
2: कलरफुल थाली हम इनकी ही वजह से पा पाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और अब हम रोशनी रावत जी का मेल शामिल करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ में इन्होंने मेल किया है। और रत्ना मैम जी, ज्योति मैम जी, आप दोनों कैसे? हम लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों का मेल पढ़ के तो और दिल बाग बाग हो जाता है। आज पहली बार आप दोनों को एक साथ सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम रोशनी रावत, गाँव बम्हना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से इन्होंने मेल किया, और इस वक्त ये चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हैं। बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, साथ में गुड मॉर्निंग लखनऊ का सुनना मेरे लिए जैसे सोने पर सुहागा। और बड़ी कलरफुल सा मेल उन्होंने किया है, और मुद्दे की बात पे उन्होंने लिखा है, मैं हर छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करती हूँ, मेरे घर में भी सभी सामान्य रहते हैं, जब भी कोई बड़ी बात होती है तभी उस बात पर चर्चा।

0: करते हैं।
1: और वैसे रिएक्शन की बात है ना, हाँ। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे कि एक स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी रत्ना, कि पानी जब उबलता है तो उसमें अगर आप आलू डाल दीजिए तो वो मुलायम हो जाता है, अंडे को डाल दीजिए तो वो सख्त हो जाता है।
0: हाँ।
1: तो बिल्कुल उसी तरीके से एक ही बात पर लोगों के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मेरा एग्जाम है और किसी वजह से मुझे ट्रैफिक मिला और मैंने घबराहट में, गुस्से में दो चार लोगों से रास्ते में डूम डूम डिशुम एकदम कर ली, तो भाई उसकी वजह से ट्रैफिक तो क्लियर नहीं हुआ, राधर मैं इतनी परेशान हो गई कि जब मैं एग्जाम लिखने बैठी तो फिर शायद मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर हुआ, ज्यादा ही एंजाइटी हुई। वहीं ऑन दी अदर हैंड, मुझे पहले ही एंटिसिपेट करके कि शायद मुझे ट्रैफिक मिल सकता है अगर मैं आधे घंटे पहले घर से निकली, तो पहली बात तो मैंने सिचुएशन एंटिसिपेट करके पहले ही रिएक्शन कंट्रोल में ले लिया, राइट। और उसके बाद में मान लीजिए ट्रैफिक मिल भी गया और दिमाग को शांत रखा, लेट पहुंच करके भी शांति से एग्जाम अगर किया तो मुझे लगता है कि वो बेहतर हुआ। तो छोटी छोटी सी चीज़ें, सैकड़ों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे इस तरीके के। बस इतना ही कह सकती हूँ कि दो तरह की चीज़ें होती है, कि आप रिस्पॉन्स देते हैं किसी चीज को या फिर रिएक्ट करते हैं।
0: बहुत ही प्यारे से एग्जाम्पल के साथ ज्योति ने आप तक की बात प्रेषित की, और इस बात पे अगर थोड़ा सी गहराई से अगर आप सोचते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप जरूर अपने आगे की लाइफ में इन चीजों को जरूर आजमा पाएं और पॉजिटिव रहेंगे।
1: गहराई से सोची ना सोची, लेकिन ये गहरा हुआ जरूर सुन लीजिए प्लीज, मेरी बड़ी इच्छा है इस सॉन्ग को सुनने की।
0: चलिए एंजॉय कर।

0: और दोस्तों इसी के साथ अब आपको हम मौसम की ताज़ा तरीन जानकारी देने जा रहे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिशी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में।
1: जी गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर बताइए आज के मौसम की क्या जो एक खुशनुमा सी लहर चली है तो उसके बारे में कुछ वेदर में क्या तब्दीली हुई है, कैसा रहने वाला है मौसम?
1: देखिए मौसम की बात करें तो आज फर्स्ट हाफ में एक अच्छा स्कूल बारिश का चल रहा है जिससे कि दिन भर मौसम सुहाना बना रहेगा, बादलों की आवाजाही रहेगी और शाम तक होते होते हल्का फुल्का और आने की संभावना है। कुल मिला के आज मौसम काफी खुशनुमा रहेगा, तापमान में काफी कमी रहेगी और कल भी थोड़ा बादलों की आवाजाही रहेगा लेकिन बारिश की संभावना काफी कम हो रही है, छींटाकशी कुछ टाइप का हो सकता है। तो कुल मिला के आज और कल थोड़ा सा मौसम का असर बना रहेगा, बाकी उसके बाद मौसम साफ है और धीरे धीरे अब यहाँ से कल से हल्का हल्का तापमान में वृद्धि आएगी लेकिन हालांकि मौसम थोड़ा खुशनुमा बना रहेगा क्योंकि बादलों की आवाजाही रहेगी आने वाले अगले दो तीन दिन में। तो कुल मिला के उतार चढ़ाव वाला मौसम अभी बरकरार रहेगा।
2: तो छतरी लेकर के चले दानिश जी, है ना? बारिश हुई तो हुई, नहीं तो धूप से बचा लेंगे, है ना?
1: जी
2: बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमें इतनी अच्छी अपडेट दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ओके धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।
2: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लें रत्ना।
0: बिल्कुल।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
5: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: सुनते रहिए और अपडेटेड भी रहिए। अब हमने आपके साथ कनेक्ट किया है विकास जी को, तो विकास जी हमें बताएंगे कि क्या है आज के दिन लखनऊ की सड़कों पर ट्रैफिक का हाल। विकास जी नमस्कार।
9: नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज मैम वर्तमान में लखनऊ शहर में सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है क्योंकि बारिश हो रही है मैम, और बारिश में हमारे सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम है। बस बारिश के दौरान थोड़ा सा एक ये दिक्कत हो जाती है मैम कि रोड पर जो है पानी लग जाता है और जिससे कि जगह जगह बॉटल नेक हो जाता है। तो जब बारिश बंद होती है तो जब ट्रैफिक चलेगा उस समय जो है थोड़ा सा ट्रैफिक लोड रहेगा, तो हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे होंगे वो पहले से इसी के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे क्योंकि जब बारिश बंद होती है तो लोग एक साथ घर से निकलते हैं मैम, तो ऐसे में जो है दो चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है कि थोड़ा सा मतलब अपने टाइम को शेड्यूल करें इस समय, और दूसरा जब रोड पर आप चल रहे हो तो जगह जगह जैसे बारिश के कारण पानी सड़कों पर रहता है तो उस जगह को, पानी वाले जगह को अवॉइड करें, उसमें कतई जो है अपने वाहन को न ले।

0: है, क्योंकि हो सकता है वहां गड्ढे हो गए हो या कोई ऐसा चीज हो वहां पहले से ही गड्ढा रहा हो, तो आप उसको देख नहीं पाए, अदृश्यता के अभाव में सड़क दुर्घटना हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपसे यही अनुरोध है, कृपया आप जैसे ही घरों से बाहर निकले तो सड़कों पर यदि आपको पानी कहीं दिख रहा है तो जो है उसको अवॉइड करें, उससे बचकर ही चलें। जी मैम,
1: बिल्कुल
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई मेजर डाइवर्जन या बहुत मेजर ट्रैफिक जैम की आज ऐसा कोई अंदेशा नहीं है ना विकास जी?
0: जी मैम, कोई डायवर्जन विशेष नहीं है, और यदि कोई डायवर्जन होता है तो आपके माध्यम से हम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे मैम।
1: बिल्कुल,
0: और बस यही एक था कि चूंकि बारिश के समय में जैसे ही बारिश बंद होगी तो एक साथ सब लोग निकलते हैं, तो थोड़ा सा उस समय ट्रैफिक प्रेशर हो सकता है। जी
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमें इतनी इम्पोर्टेंट अपडेट दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर।
0: जी धन्यवाद मैम।
2: तो भाई थोड़ी देर पहले प्रॉमिस किया गया था गाना प्ले करने को,
1: वो गाना हमने प्ले कर दिया, सुनिए।

0: 93.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NACC द्वारा जनहित में जारी।
3: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
4: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
5: 9:24 और ठीक 45 सेकेंड्स। और गुड मॉर्निंग लखनऊ में ज्योति और रत्ना तो है ही, लेकिन इस वक्त हमारे साथ है एक जानी मानी हस्ती।
6: जी, और हम आपसे सभी से मिलवाने जा रहे हैं और हम आपसे बात करते हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि बिरजू महाराज कथक संस्थान लखनऊ, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुति परक ग्रीष्मकालीन कथक नृत्य कार्यशाला का समापन समारोह कल यानी कि 14 जून को हमारे शहर में आयोजित होने को है। इस विषय में क्या कुछ खास होगा, इस जानकारी के लिए हमने सीधे संपर्क किया है डॉक्टर कुमकुम धर जी से। आप अध्यक्ष हैं बिरजू महाराज कथक संस्थान लखनऊ की। डॉक्टर कुमधर जी, आपका एफएम रेनबो के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत है, और कृपया कल होने वाले 14 जून को जो होने वाला ये कार्यक्रम बिरजू महाराज कथक संस्थान संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुति परक ग्रीष्मकालीन कथक नृत्य कार्यशाला का समापन समारोह, इसके विषय में आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए और आपके बारे में हम आपको बता। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
7: नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इसको अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। तो मैं कहना चाहूंगी कि बिरजू महाराज कथक संस्थान जो है
6: जी,
7: इसका नाम पहले राष्ट्रीय कथक संस्थान होता था
6: जी,
7: ये लगभग 4 दशकों से लगातार कथक नृत्य के संवर्धन का काम कर रहा है
6: जी।
7: तो हमारे यहाँ शिक्षण भी होता है कथक नृत्य का, गायन का, तबले का और हारमोनियम का। हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं नवोदित कलाकारों के लिए, वरिष्ठ कलाकारों के लिए संगोष्ठियां करते हैं, और उसी का एक हिस्सा है हम कार्यशालाएं भी आयोजित करते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के कई शहरों में और साथ साथ लखनऊ में। तो ये एक हमारा मतलब हर वर्ष का वो है कि हम हर वर्ष गर्मियों में मई से जून, यानी इस वर्ष ये 14 मई से 14 जून तक इस कार्यशाला को संपन्न कराया गया है, और 14 जून यानी कि कल उसका समापन समारोह किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में हमारी मुख्य अतिथि होंगी श्रीमती सुमोना एस पांडे, जो कार्यक्रम प्रमुख हैं आकाशवाणी लखनऊ की। हम उनके भी बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इसमें शामिल होना स्वीकार किया
6: जी। हमारे लिए भी गर्व की बात है मैम।
7: जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप जानना चाह रही थी कि क्या कुछ खास है इसमें
6: जी, जैसे तो, जो आपने बताया एक महीने की कार्यशाला है, तो इसमें इस भव्य समापन होने वाला है, तो मंच पर बच्चों को इकट्ठा करके उनसे परफॉर्मेंस करवाना, और बच्चों में क्या उत्साह दिखा इस बार की कार्यशाला में आपको?
7: हाँ, तो मैं एक तो आपसे कहना चाहूंगी कि इसमें केवल बच्चे ही नहीं है, बहुत हर्ष की बात है कि 5 वर्ष की आयु से लेकर और वरिष्ठ नागरिक तक इसमें शामिल हुए। उसमें सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी हैं, किशोर हैं, युवक युवतियां तो है ही हैं, गृहणियां हैं, तो छोटे छोटे बच्चों से लेकर और बहुत बड़े उम्र के लोग सब पूरे उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं।
5: मतलब संगीत जिनका पैशन है वो बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, राइट मैम?
7: जी, ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जीवन में अपने जीवन में किसी और कारणों से अपनी जो उनका शौक है, उनकी इच्छा है गायन वादन नृत्य की, वो नहीं पूरी कर पाए, तो उन्हें लगता है कि चलो हम चाहे थोड़े ही समय के लिए लेकिन इसमें शामिल हो। अब आप जानती हैं कि कथक नृत्य जो है वो ऐसी विधा है कि एक महीने में तो नहीं सीखी जा सकती है, लेकिन उससे एक परिचय तो हो सकता है।

0: उसकी एक जानकारी तो हो सकती है, उसमें मंच पे कैसे आते हैं, क्या उसमें विषय सिखाए जाते हैं, उसके बेसिक हस्तक हैं, सत्कार है, कुछ छोटी छोटी बंदिशें हैं, कुछ वंदना है, ठुमरी है, ये तो कम से कम किया जा सकता है। तो इसी को लेके हम लोग ये कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं और बहुत शौक से सभी प्रतिभागी और 80 प्रतिभागी करीब हैं जो उसमें, हाँ, और कल सोचिए हमें खुद भी लगता है कि कम से कम 77 तो मंच पर है जो आ रहे हैं उसमें। तो इतने सारे लोगों को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना और फिर उसमें तो उसमें बहुत सहयोग रहा है। हमारे यहाँ जो प्रशिक्षिका रही है उपासना दीक्षित और हमारे यहाँ जो संगीत संगत करता है आनंद जी, मीना वर्मा जी और उसके अलावा नीतीश जी, उसके अलावा मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उमा जी हैं और बहुत से लोग हैं जो संगत करता है, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे यहाँ अधिकारी हैं, वो सब लोगों ने मिलके इसको सफल बनाने की कोशिश की है बहुत सारी। तो मैं अपने शहर के सभी लोगों से जो कला रसिक हैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो जरूर आए, देखिए वो जरूर आए और आकर प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन करें।
1: मैम क्या स्थान होगा इस आयोजन, किस जगह पर होने को है?
0: जी, तो बहुत जरूरी बात है
1: जी।
0: इसका आयोजन हम कर रहे हैं भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय कैसरबाग जो है उसी के परिसर में एक ऑडिटोरियम है कला मंडपम, तो उसमें कल यानी 14 जून को शाम 5:30 बजे से इसका आयोजन होगा। तो आप लोग सब जरूर आए, प्लीज जरूर आए।
2: बिल्कुल मैम, आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस प्रोग्राम को विटनेस करने के लिए, इसमें ऑडियंस बनने के लिए क्या कोई चार्जेस भी होंगे, क्या टिकट लेना होगा?
0: नहीं, बिल्कुल निशुल्क है और उसमें कोई भी शामिल हो सकता है। बिल्कुल, बड़े आराम से हम आपका स्वागत करेंगे।
2: जी मैम, बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो अपने पैशन को किसी वजह से किसी वक्त नहीं फॉलो कर पाए उन्हें आपने प्लेटफॉर्म दिया। तो कल का ये प्रोग्राम श्रोताओं आप याद रखिएगा, 14 जून 2026 संडे शाम को 5:30 बजे कला मंडपम प्रेक्षागृह कैसरबाग लखनऊ।
1: और मैम आपसे भी ये कहना चाहेंगे, आपने भी बच्चों को काफ़ी मदद, चूँकि आप भी शिक्षिका रह चुकी हैं और सुप्रसिद्ध नृत्यांगना है लखनऊ घराने की, तो आपका भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस रहती है पूरे संस्थान को। और इस वक्त वर्तमान में आप बिरजू महाराज कथक संस्थान की अध्यक्ष हैं, तो आपको भी इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और बस कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के नाम पर बने संस्थान में की एक अपनी अनूठी विरासत है, तो लखनऊ घराने की बारीकियों को यहाँ पर लोगों ने आके सीखा और वो मंच पर कल हम सभी को देखने को मिलेगा। तो आप सभी को और सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं पूरी एफएम रेनबो टीम की तरफ से।
2: और आपका हृदय से धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच।
0: आपका बहुत आभार। आकाशवाणी लखनऊ से मेरा बहुत पुराना संबंध है और मुझे बहुत प्रिय है और आपके सहयोग के लिए मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ।
2: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।
1: नमस्कार मैम, थैंक यू। बहुत ही प्यारा सा गाना भी हमने प्ले कर दिया है इस माहौल को देखते हुए, लेकिन साथ में हम बड़े गर्व से इस बात को कहना चाहते हैं ज्योति कि हमारी आकाशवाणी प्रमुख सुमोना एस पांडे जी कल इस आयोजन की मुख्य अतिथि होने वाली हैं, और चूंकि वो भी संगीत प्रेमी हैं तो उनका हम बड़े गर्व फख्र के साथ, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे ज्योति, तो उनको भी शुभकामनाएं कल उस अवसर पर, वो वहाँ पर शामिल हो रही हैं अपना कीमती वक्त निकाल कर।
2: और लखनऊ वासियों बिल्कुल मत भूलिएगा इस आयोजन का हिस्सा होना, क्योंकि आयोजन बहुत खास होने वाला है।
1: बिल्कुल।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई ठाई शाम रोक लई औचक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक

दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन जियरा गयो धड़क धड़क।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. नौ बजकर 36 मिनट और ठीक 23 सेकंड्स हो रहे हैं और दोस्तों जैसा कि प्रोग्राम की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि आज है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे और हमने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि इस विषय पर बात करने के लिए हम इनवाइट करेंगे स्पेशलिस्ट को तो हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर स्वास्तिका सुवीरिया जो कि हैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी KGMU लखनऊ. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना कीमती वक्त दे रही हैं.
1: धन्यवाद ज्योति जी.
0: तो मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक्चुअली एल्बिनिज्म होता क्या है.
1: आज आप एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा कर रहे हो आज इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे के उपलक्ष्य पर. और एल्बिनिज्म जो है ये एक अनुवांशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलेनिन नामक एक रंग द्रव्य होता है जिससे आपकी त्वचा आंखों और बालों में रंग आती है वो या तो कम प्रोड्यूस होती है या बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस होती. तो ऐसे मरीजों को आपने देखा होगा कि इनकी त्वचा की रंग हल्की होती है
0: जी,
1: दृष्टि में प्रॉब्लम होती है और बालों का रंग भी हल्का होता है. ना सिर्फ ये मेलेनिन हमारी त्वचा को रंग देता है, त्वचा बालों और आंखों को रंग देता है, बल्कि साथ साथ ये सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से भी त्वचा की सुरक्षा करता है. तो इस अनुवांशिक स्थिति में जनरली स्किन, आईज, ये सब इफेक्टेड हो जाते हैं पेशेंट्स के.
2: जी जी. और मैम इसके साथ ये जानना चाहेंगे कि एल्बिनिज्म का आंखों और त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है और ऐसे व्यक्तियों को किन विशेष सावधानियों की आवश्यकता हो सकती है, ये बताइए.
1: तो जैसा हमने बात किया कि मेलेनिन प्रोडक्शन कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है ऐसे पेशेंट्स में
2: जी.
1: तो इसका जो अधिकतम प्रभाव होता है वो आंखों और त्वचा पर ही पड़ता है. आंखों की बात करें तो ऐसे मरीजों को आपने देख धूप में देखने में काफी कठिनाई होती है तो जिसको फोटोफोबिया कहते हो आप इंग्लिश में. और इनकी आंखें जो पुतलियां वो अलग अलग डायरेक्शन में होती है, भेंगापन जिसको

0: आप कहते हो स्ट्रैबिस्मस, वो होता है इनमें। इनकी आंखें थोड़ी हिलती रहती हैं किन्हीं किन्हीं पेशेंट में, अनियंत्रित हिलेंगी, निस्टैग्मस कहते हैं। और ये तेज रोशनी से इनको बड़ी परेशानी होती है, फोटोफोबिया। और साथ में इनकी दूर या पास की दृष्टि भी स्पष्ट नहीं होती, तो इनको अक्सर विजुअल एड्स की जरूरत होती है। ना दूसरा इम्पोर्टेंट, त्वचा की बात करें तो पूरी त्वचा का ही रंग जा चुका है। तो ये जो मेलेनिन है, ये एक तरह का लेयर है जो अल्ट्रावायलेट की हानिकारक इफेक्ट से हमें बचाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में सनबर्न बहुत जल्दी होता है, ये अचानक लाल हो जाएगा, खुजली हो जाएगा, बहुत जल्दी त्वचा बार बार जलेगी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणों से कोई प्रोटेक्शन है नहीं त्वचा के। दूसरा,
1: जी
0: लॉन्ग टर्म अगर इनका एक्सपोजर बना रहता है तो इनको कुछ लेंटीजींस वगैरह भी हो सकते हैं। और लंबी दीर्घकालीन बात करें तो कुछ त्वचा कैंसर जैसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या बेसल सेल कार्सिनोमा का भी जोखिम बढ़ा रहता है। तो इनको सावधानियां क्या बरतनी है आंखों के लिए और त्वचा के लिए अलग से, वो मैं बताऊंगी विस्तार में।
1: जी
0: त्वचा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक सनस्क्रीन का उपयोग करें ऐसे पेशेंट्स, SPF 30 या 50 से ऊपर वाली, और मेडिकेटेड सनस्क्रीन लें अपने आप कोई स्टोर में आजकल कई ओवर द काउंटर ड्रग्स अवेलेबल हैं, तो वैसी मेडिसिन सनस्क्रीन ना लेकर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेकर सनस्क्रीन लिखवाएं, आपकी त्वचा के लिए क्या जरूरी है। और ये तो हो गई केमिकल प्रोटेक्शन की बात, फिजिकल
1: जी
0: प्रोटेक्शन भी जरूरत है। तो ब्रॉड ब्रिम्ड हैट्स बोलते हैं हम लोग, टोपी, चौड़ी टोपी पहनना है, छाते का उपयोग करें, पूरे बांह के कपड़े पहने, फुल स्लीव्स ऊपर नीचे कपड़े पहने। आजकल अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन वाले कपड़े भी आते हैं, आजकल जैकेट्स वगैरह उपलब्ध हैं जो यूवी रेस से प्रोटेक्ट करते हैं अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं। और 10 से 2 के बीच की धूप सबसे हानिकारक हो सकती है, तो उस वक्त अपनी गतिविधियां लिमिटेड रखें, आउटडोर एक्टिविटीज लिमिटेड रखें, जरूरत ना हो तो ये पेशेंट्स उस वक्त बाहर ना निकले।
1: जी
0: और नेत्र की बात करें तो इनको नियमित रूप से नेत्र परीक्षण कराना होगा। विजुअल एड्स कई बार जरूरत पड़ती है क्योंकि इनको स्पष्ट दिखता नहीं है।
1: जी
0: विजुअल एड्स, गॉगल्स धूप से बचने के लिए, वो आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बताएंगे। और त्वचा की समय समय पर जांच करना बड़ी बहुत जरूरी है, जैसे जैसे मैंने बोला ये विकार हो सकते हैं, जैसे स्किन कैंसर्स या एक्टिनिक केराटोसिस नामक बीमारी। तो दो तरह के एग्जामिनेशन है, या तो मरीज खुद अपना एग्जामिनेशन करे, सेल्फ एग्जामिनेशन
1: जी
0: हर महीने कर ले, अपनी बॉडी को देखे शीशे में, ऐसे एरिया जहां वो ना पहुंच पाए या उसकी दृष्टि से ना दिखे, जैसे कान पे, गले पे, पीछे की तरफ, अगर बाल नहीं है तो स्कैल्प के पीछे हिस्से में, पीछे के पीठ वीठ पे, वहां पे जो एग्जामिनेशन है उसमें किसी अपने रिलेटिव की मदद ले ले, देखे कि कोई ऐसा धब्बा तो नहीं है जो पपड़ीदार हो, खुजली हो, घाव ऐसा कोई भर तो नहीं रहा, ब्लीडिंग हो रही हो लगातार, ऐसी
1: जी
0: कोई चीज है, तो तुरंत त्वचा रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करें।
1: तो डॉक्टर साहब,
0: सालों है
1: क्या किया
0: जी,
1: जाए जो कि ये परेशानी होने ही ना पाए? जैसे कि आपने बताया आनुवंशिक स्थिति होती है, इसका मतलब फैमिली में रन करती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, तो क्या किया जाए जो कि ये प्रॉब्लम आने ना पाए? अगर मान लीजिए परिवार में किसी को है तो उनके बच्चों तक ये ना आने पाए, क्या कुछ किया
0: हाँ
1: जा
0: बिल्कुल,
1: सकता है?
0: ये जो है पैटर्न एल्बिनिज्म का, जनरली जो कॉमन टाइप्स हैं उसकी ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न होती है, मतलब
1: जी
0: माता और पिता से दोनों से परिवर्तित प्रति जीन की मिलती है, तभी ये हो सकती है। कई बार
1: जी
0: क्या होता है माता पिता में ये मैनिफेस्ट ना हो, मतलब माता पिता सिर्फ कैरियर हो, छुपा हुआ हो,
1: जी
0: और लेकिन ऐसे में भी बच्चों में आने की संभावना है। तो अगर ऐसे एल्बिनिज्म के पेशेंट्स हैं तो उनको जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरत है, स्पेशली गर्भावस्था के टाइम। ऐसे सेंटर्स उपलब्ध हैं
1: जी
0: लखनऊ में, टर्शियरी केयर सेंटर्स में, KGMC में, SGPGI में, जहां गर्भावस्था के टाइम या पहले भी जेनेटिक काउंसलिंग करके ही हम आगे बढ़े कि बच्चे कैसे, मतलब कैसे होंगे, या इवन प्रेगनेंसी के टाइम टेस्ट अवेलेबल है उसमें डिटेक्ट हो सकती है। तो जेनेटिक काउंसलिंग का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है गर्भावस्था को प्लान करने के लिए, और अगर प्रेग्नेंट हो भी गए हैं तो कितने परसेंट चांस है किस बच्चे में आने की, क्या है, इनफैक्ट आ भी जाए तो उसकी टेस्टिंग की जा सकती है प्रेगनेंसी के दौरान।
1: जी
0: पर ये ऐसे इसको रोका तो नहीं जा सकता, बट डेफिनेटली जेनेटिक काउंसलिंग से हेल्प ली जा सकती है।
1: हेल्प ली जा सकती है, और ट्रीटमेंट से इसकी जितनी भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है ना डॉक्टर साहब?
0: बिल्कुल, कंट्रोल किया जा
1: जी
0: सकता है, इसको
1: जी
0: खत्म नहीं किया जा सकता, बट यस प्रॉपर ट्रीटमेंट, फॉलोअप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट के पास, इनकी कई चीजों से आगे नुकसान से बचा जा सकता है। साल में एक बार जैसे मैंने बोला डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर विजिट करें,
1: बिल्कुल।
0: कि
1: और
0: अगर
1: मैं
0: अगर दिक्कत ऐसा कुछ मिले तो 6 महीने तो जल्दी विजिट करें अपना, उसका वेट ना करें कि एनुअली जाना है। अगर कुछ
1: जी
0: ऐसा जैसा मैंने बोला गांठ मिल रही है, ब्लीड कर रहा है,

0: पपड़ीदार धब्बे हो, तो ये सब अगर दिखे अपने शरीर पे तो जल्दी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले ताकि उसका इलाज संभव हो सके।
1: और मैम, इस चीज़ को लेकर के समाज में बहुत सी भ्रांतियाँ भी हैं जिन्हें लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं, तो इनको दूर करना भी बहुत आवश्यक है। तो ये क्या संदेश के रूप में अपने आप कहना चाहेंगी आप?
0: जैसे ऐसी बीमारियां होती हैं, तो इस बार जैसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं थीम के साथ, प्राउडली इन माय स्किन सेलिब्रेटिंग माय स्किन टोन, जो इस बार की थीम है
1: जी,
0: एल्बिनिज्म डे की, मतलब जो रंग है उसको, हर चीज को स्वीकार करना है, समाज को स्वीकार करना है। कई बार ये भ्रांति है कि ऐसे मरीजों को छूने से आपको भी हो जाएगा, ये सिर्फ एल्बिनिज्म के साथ नहीं बल्कि विटलाइगो या सफेद दाग भी, जो आप कॉमनली लोग इनके साथ खाना पीना छूना पसंद नहीं करते कि हमें फैल जाएगा, ये किसी भी प्रकार से छूने से नहीं फैलता। दूसरा, लोगों में यह भ्रांति रहती है कि ऐसे पेशेंट्स की जो IQ है वो थोड़ी कम होती है, बुद्धिमत्ता थोड़ी कम होगी, बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ त्वचा और आंखों में विकार करती है, इसकी IQ से इसका कोई लेना देना नहीं है, IQ ठीक रहती है इन पेशेंट्स की। दूसरा, ऐसी सारी बीमारियों के साथ एक इम्पोर्टेंट भ्रांति जुड़ी होती है स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि ये किसी पूर्व जन्म में हमारे पाप की वजह से हुआ है या कोई श्रापित है पेशेंट इसलिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं,
1: जी
0: ये एक अनुवांशिक स्थिति है डेफिनेट, और इसमें किसी भी पूर्व जन्म श्राप या अंधविश्वास का कोई भी रोल नहीं है।
2: जी डॉक्टर साहब, अंत में अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे श्रोताओं को।
0: जी, तो आज इस एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर मैं यह संदेश देना चाहती हूँ लोगों को कि एल्बिनिज्म के जो मरीज हैं इनके सिर्फ रंग में विकार होता है, इनकी क्षमता में कोई कमी नहीं है, तो इनके इनसे प्रभावित बच्चों और वयस्कों को आपकी दया नहीं बल्कि आपके सम्मान, इक्वल अपॉर्चुनिटी और अवसर की आवश्यकता है। ये आपके साथ इक्वली सारा काम कर सकते हैं, परिवारों से या परिवार के लोग बच्चों को छिपाए नहीं, नियमित रूप से जांच कराएं, स्कूल में ऐसे बच्चों को आगे बैठने की सुविधा होनी चाहिए, बड़े अक्षर वाले अध्ययन सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, और इनको किसी भी प्रकार के उपहास या भेदभाव ना करें, ये ना फैलेगा या आपके उपहास से फिर वो सिर्फ कुंठित होंगे,
2: जी
0: उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, और इन अंधविश्वास से समाज को दूर रहने की आवश्यकता है। हम सबको मिलकर इनके लिए एक संवेदनशील और समावेशी समाज का निर्माण करना चाहिए।
2: जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की, उनके साथ साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
2: दोस्तों, हमारे साथ थी डॉक्टर स्वास्तिका सुवीरिया, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी KGMU लखनऊ, और आज उन्होंने हमें जानकारी दी उस खास विषय की जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। जी हाँ, आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।

0: भाई आगे की ओर बढ़ते बढ़ते अब हम आ गए हैं उस मोड़ पर, जबकि ये बताना बहुत जरूरी है रत्ना कि आज का दिन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इम्पोर्टेंस रखता है।
1: बिल्कुल, और हिस्ट्री एक तारीख की अगर बात करते हैं तो एक ही तारीख को कई दृष्टि से देखा जाए तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जरूर इम्पोर्टेंट होती है वो। तो आज ये तारीख की बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं इतिहास के पन्नों से कि 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत इम्पॉर्टेंट जो तोलोलिंग क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और ये अभियान युद्ध का एक निर्णायक मोड़ माना जाता है।
0: और 1971 में आज ही के दिन अमेरिकी समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रसिद्ध पेंटागन पेपर्स का प्रकाशन शुरू किया। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है या जो लोग उस वक्त थे उन्हें याद होगा कि इन पेपर्स की वजह से विश्व राजनीति में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी। तो भाई इसी के साथ साथ हम हैप्पी बर्थडे टू यू भी कर देते हैं, मतलब आपका वाला बर्थडे नहीं लेकिन किसी का तो होगा।
1: कई जगह तो जश्न की तैयारियां चल रही होंगी, जिनकी आज हैप्पी हैप्पी वाली मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी तो विश करना बनता है।
0: एग्जैक्टली तो हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उन खास हस्तियों को याद करना तो बनता है जिनका आज ही जन्म हुआ था, जिनकी आज जयंती है, जिनका आज जन्मदिन है।
1: बिल्कुल, और हम सबसे पहले बात करते हैं जॉन नैश की। 1928 में आज के दिन इनका जन्म हुआ था। नोबेल पुरस्कार विजेता गणितज्ञ जिनके जीवन पर आधारित फिल्म अ ब्यूटिफुल माइंड ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। संघर्ष और प्रतिभा की एक अद्भुत मिसाल जॉन नैश की अचिंती है।
0: और जब फिल्मों की बात कर रही हैं आप तो मैं क्रिस इवांस को याद कर लेती हूँ। 1981 की बात है, मार्वल फिल्म्स सारे टीनेजर्स ने जरूर देखी है। मार्वल फिल्म्स के मशहूर कैप्टन अमेरिका जिन्होंने सुपर हीरो की भूमिका को एक नई पहचान दी थी।
1: बिल्कुल, और इसके बाद हम बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की। 1831 में स्कॉटलैंड के महान वैज्ञानिक जिनके शोध ने बिजली, चुंबकत्व और प्रकाश को समझने का नया रास्ता दिखाया, आधुनिक संचार तकनीक की नींव रखने वालों में उनका नाम सबसे प्रमुख है।
0: एंड डब्ल्यू बी ईट्स मेरे फेवरेट पोएट, आयरलैंड के महान कवि नाटककार जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, आज भी दुनिया भर में उनकी कविताएं पढ़ी जाती हैं और मेरे जैसे तो रिपीट पर पढ़ते हैं बार बार बार बार बार बार। टिम एलन भी तो है।
1: बिल्कुल, और टिम एलन की बात करते हैं तो लोकप्रिय अमेरिकी अभिनेता और कॉमेडियन जिन्हें टॉय स्टोरी के प्यारे किरदार बज लाइटियर को आवाज देने के लिए भी याद किया जाता है।
0: तो इतने खूबसूरत नाम हर फील्ड के खास लोग। तो जी बाय चांस अगर आपका भी आज हैप्पी बर्थडे है तो सोच करके देखिए, खास तो आप भी हुए है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो आपकी खासियत को सेलिब्रेट करें गाने के साथ।
1: बिल्कुल, गाने के साथ सेलिब्रेट करते हैं और गाना हमने आपके लिए प्ले कर दिया है, बहुत ही प्यारा सा, कई लोगों को पसंद आता है गाना।
0: मुझे भी पसंद आता है अभी भी, दिल दिया गल्ला।
1: हाँ

0: दिल दिया गल्ला करते करते कैसे वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ना रत्ना, हाँ। तेरे साथ आके मेरा वक्त गुजर जाता है,
1: गुजर जाता है। और बड़े मूड में बहुत अच्छी अच्छी बात ज्योति कर रही हैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों का साथ
0: है। आज का क्या मतलब है?
1: आज का मतलब कि आज श्रोताओं के साथ साथ मौसम भी बहुत ज्यादा खुशनुमा
0: है। आज स्पेशल है, आज पहली बार हमारी प्यारी रत्ना के साथ गुड मॉर्निंग लखनऊ में आने का मौका मिला है।
1: ये तो बिल्कुल स्पेशल है, चूंकि स्टार्टिंग में आपने कह दिया था कि हम दोनों इस प्रोग्राम में आज पहली बार साथ आए।
0: तो जी जल्दी से कुछ ईमेल्स पढ़ लेते हैं। मुनेश कुमार राज भानपुर हरोआ जिला लखीमपुर खीरी से पूछ रहे हैं कि अंजू कहाँ है। अच्छा। अंजू दीदी कहाँ है? स्टूडियो के कार्यक्रम में काफी समय से नहीं आई, तो कृपया बताने की कृपा करें। तो खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, बहुत जल्द आप अंजू दीदी को भी सुन सकेंगे।
1: बिल्कुल, इसी चैनल पर और इसी स्टूडियो के जरिए।
0: तब आप उनसे पूछ लीजिएगा कि वो कहाँ थी, है ना। और कभी कभी हमारी भी मतलब आरजेएस की भी कुछ मजबूरियां होती हैं, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है। महेंद्र देवपन जी का भी ईमेल है।
1: बिल्कुल, और इन्होंने हमारे रेगुलर लिसनर हैं, लिखते हैं कि मैं महेंद्र दीपन राजस्थान के नागौर जिले से आप दोनों की आवाज का मुरीद हूँ। आज का विषय बेहद प्रासंगिक है। मेरा मानना है कि हर बात पर रिएक्ट करना ऊर्जा की बर्बादी है। ओके, मैं हर छोटी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरा सीधा सा सिद्धांत है, जो बात महत्वपूर्ण होती है केवल उसी बात पर बात की जाए, अन्यथा मौन रहकर उसे इग्नोर करना ही बेहतर है। शांति बनाए रखना और फालतू की बहस से खुद को दूर आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है। गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम की शानदार प्रस्तुति के लिए मेरा ढेर सारा शुभकामनाएं और प्यार, महेंद्र दीपन जी ने ऐसा लिखा है।
0: महेंद्र दीपन जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हर बात पे रिएक्शंस देना बिल्कुल जरूरी नहीं होता। अभी देखिए थोड़ी देर पहले यही तो बात हम कर रहे थे दोनों लोग, कि हर बात पर रिएक्शंस देना, हर बात पर सोचना, हर बात को अपनी एनर्जी देना जरूरी है कि नहीं है, सोच करके देखिए। क्योंकि भाई मुझे तो यही लगता है, मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि चूज योर बैटल्स वाइजली, अपने जो युद्ध है ना बहुत सोच समझ करके चुनिए। अगर आप हर युद्ध में उतनी ही एनर्जी देंगे तो फिर आपके पास अपने लिए टाइम और एनर्जी कहाँ बचा। तो इसलिए हर बात पर रिएक्शन देना अब बिग बिग नो। अब हम जल्दी से पढ़ देते हो सारे नाम जिन्होंने हमें ईमेल किया। भाई नाराज मत होइएगा, क्या बोला जाए अब, मतलब टाइम नहीं इजाजत दे रहा है,
1: क्योंकि 9:57 हो गए। जल्दी से हम नाम शामिल करते हैं आपके।
0: शैलेश कुमार, नीलू शर्मा, मोहम्मद फरहान, तालिबन सारी, जगदीश जी, वारिस अली खान, जावेद पटेल, अरुण कुमार, गुलफ्ता सिद्दीकी, मोहम्मद फरमान का एक और मेल, राम सेवक, कृष्ण कुमार, वकील अहमद, अंबुज मिश्रा, विनीत कुमार, संतोष और रंजनेश पासवान। मेरे ख्याल से कोई भी नाम छूटा नहीं है।
1: एमके राज लखीमपुर खीरी से इनका भी मिला है। जी, सभी नाम हमने कवर कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई भी नाराज नहीं होगा, है ना,
0: कोई नाराज नहीं होगा। और ऐसे भी अभी हमारी बात क्या हुई है, रिएक्शंस नहीं देना है, समझना है, समझना है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो उसके पीछे की वजह क्या है। तो ऑन दिस नोट ज्योति तो चली, लेकिन रत्ना आपके साथ एक बहुत ही खास मेहमान के साथ रहने वाली है, और वो मेहमान आ भी गए। वो कौन है आपको बताऊं? नहीं बताऊंगी, क्योंकि सरप्राइजेस जो होते हैं ना वो जिंदगी को और भी खूबसूरत कर देते हैं।
1: क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है,
0: इंतजार का फल मीठा होता है, आजकल का तो आम भी बहुत मीठा होता है। तो चलिए अब गाना चलाने की बजाय मुझे लगता है कि हमको यही पर प्रोग्राम एंड अप कर देना चाहिए, क्योंकि 9:00

58 मिनट और 25 सेकेंड्स ऑलरेडी हो चुके. ज्योति जाने वाली है लेकिन एक प्रॉमिस जरूर है कि आगे भी एंटरटेनमेंट का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड.

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 39 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 39 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री योगी गोरखपुर के बड़हलगंज में 295 करोड़ रुपए से अधिक की 319 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वो एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान करेंगी। वाराणसी में आज से विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और वैदिक विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में देश विदेश से लगभग 1200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कुटेचा उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि इस अधिवेशन का उद्देश्य समसामयिक वैज्ञानिक और सामाजिक चुनौतियों पर विमर्श करते हुए वैज्ञानिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक कार्ययोजना तैयार करना है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज लखनऊ नगर निगम जोन 6 के विभिन्न वार्डो में जन चौपाल का आयोजन करेगा। आपकी समस्या हमारे समाधान का संकल्प के नारे के साथ आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल स्थानीय नागरिकों की शिकायतों और सुझावों को सुनेंगी। इस चौपाल का मुख्य उद्देश्य जनता को उनकी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम के चक्कर काटने से बचाना और उनके ही वार्ड में राहत पहुंचाना है। हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र में कल देर रात एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आग की चपेट में आने से कई केमिकल से भरे ड्रम तेज धमाके के साथ फट गए। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सुरक्षा की दृष्टि से केमिकल फैक्ट्री के आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है। एडीएम हापुड़ संदीप सिंह ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जनपदों में आज सुबह से तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 घंटों में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और आसपास के जनपदों में तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश का अनुमान जताया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 11 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
1: पुरानी जींस और गिटार
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर फिर रात को फुर्सत के वो पल
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
3: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान यहाँ हर कोना एक शायरी हर गली गजल ये लखनऊ है जनाब
4: हाईटेक मॉल्स स्ट्रीट फूड 10.90 पर गुलजार होती शामें चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक ये भी लखनऊ ही है जनाब
5: समझे जनाब यारी
4: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

0: 100.7 FM 7 FM रेनबो कार्यक्रम सुगंध माटी की सुने वाले सब श्रोतन बड़कन का प्रणाम, राम राम और छुटकन का प्यार दुलार। कही थे हम कि आपके रेडियो सखी रत्ना शुक्ला आपके सभा के बीच आई गई हैं लाइक के कार्यक्रम सुगंध माटी की और बहुत बहुत स्वागत पा आप सभी श्रोतन पंचन का। अब बेरिया है कोनो विशेष के बुलावे के मनावा जाए बुलावा जाए और इनके आवाज़ दे दे तनिक अरे भाई चले चले चले यार चले आओ तनिक ऐसी ऐसी देखो का हम कितना अच्छा बिछौना कितना अच्छा कुर्सी उसे सजाए के रखें तनिक ऐसे निकल आओ अब हम बताई थे अब हम कहे चाहते हैं कि अतिथि आवे तो हीरा जुड़ाए है ना अतिथि आवे तो हीरा जुड़ाए जे का देखी के माटी महक जाए और स्टूडियो में जौन माटी जौन हवा है वो महक गई है काहे से कि कार्यक्रम में ओम बाबू ओम भैया के हम बुलाए लाए हैं नियुक्त आए हैं और यूँ बड़ी खुशी खुशी मन से मौसम के मिजाज लेके कोनो खुशबू लेके माटी की महक लेके स्टूडियो में चले आए रहे दूर से अरे ओम भैया ऐसी निकल आओ तो नहीं कैसे दूर से
1: सब श्रोता पंचन का राम जोहार प्रणाम नमस्ते जी आपको नमस्ते
0: अरे बहुत बहुत नमस्कार कैसे हो ओम भैया
1: अरे एकदम चौकस हैं आप कहा बताए बहन
0: कहाँ तो चले आ रहे हो
1: जैसे हम घर से निकले बैठ के हवाए खातिर ना
0: हाँ।
1: तो आई इस करिया करिया बादल उठा
0: अच्छा
1: और फिर झमाझम बरसेला कुछ कहे नहीं फिर हम कहें देखो अपने श्रोता पंचन ते मिले तो चले है कह कहे तेरे जब तक मिलो ना तो आई छटपटाओ कुछ कहे नहीं
0: तो रतियक नींद नहीं पड़ी तुमको
1: अरे एकदम पूरा हम तो यह सोचित रहन कितनी जल्दी चला जाए बैठ की मैया और चली बस मिली चल के
0: अच्छा तो श्रोता पंचन के दिल की आवाज तुम सुन लिए रहो
1: हाँ। तो अब देखो इतना ज्यादा मौसम बदल गया है और जब मौसम बदल जाते हैं फिर आए के भैया अपने श्रोता पंचन ते मिलो तो वह क्या मजा आनंद दुगना हो जाते है
0: हाँ अभी खाए पिए के बात हम तुमसे तो से करब ऐसे
1: हाँ।
0: कि स्टूडियो में बैठ के बाहर की जो खुशबू है ना ये मौसम में बहुत कुछ याद आ रहा है तो तनिक तनिक धीम धीम बात करब उसके पहले अब कौन जिग्या से चले आ रहे हो पहले जिग्या
1: का नाम जरूर बता दे देखो भुलभुला खिरे वाले आपके अपन ओम भैया हम सब तो जानते हैं चीना हाँ। थे अपन श्रोता पंच और देखो ये देखो काकी पिसना बनाए रही एक काकी तिनी पिसना रोक या बाजा के आवाज बढ़ा दो काहे तेरे देखो कार्यक्रम अच्छा। सुगंध माटी के शुरू हुई गवा है
0: हाँ।

0: हाँ जी, आज हम अपन आवाज़ दे के न्योत के आए हैं, तो हमारे न्योता पे चले आए हैं ओम भैया स्टूडियो में और सुगंध माटी के कार्यक्रम में। और जाना तो पहल पहल जमाने में बूढ़ बुजुर्ग बतावत रहे, सब नातन रिश्ते में हीरा है अतिथि, अतिथि हीरा होते हैं।
1: अब जिज्जी ये बताओ, आके साक हम सब बताए दे का गौनी सुनाए दे।
0: अच्छा, गौनी सुनने का बहुत मन है।
1: अरे बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो चलो पहले हम एक पूर्वी गवनी आप सभी को सुनवाए जा रही है। तनिक सुनो कि सवेरे सवेरे कागा का कहे गवा कि कागा के नारियल गुड़ केरी रोटी कागा के खिलावे का कैस कैस मन करत है। और ये गवनी में बहुत नीक नीक मधुर मधुर है, तो चलो यू को सुना जाए।
1: सुना जाए सुना जाए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
2: भाई अब मैच का क्या होगा?
1: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
3: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
4: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
3: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 444-444।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
7: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
8: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
9: समझे जनाब यारी।
8: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। लखनऊ की सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
7: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदा बहार गीत
8: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: अगर बखत की बात करें ओम भैया, तो बता दें सभी सोता पंजर के 10:18 हुई गवाह है।
4: अरे हाँ, पता ही नहीं चल रहा है बहनी।
3: हाँ, और कार्यक्रम सुगंध माटी की ये आपके बीच आए गवाह है 100.7 FM रेनबो पर।
4: और भैया देखो, अगर अपन पार्टी संदेश भेजक चाहते हो तो FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर या वहाँ भेज सकते हो।
3: हाँ, मेल भेजे की बात कर रहे थे। अच्छा, सब लोगों के जियो में कौन कौन करेजवन कौन कौन बात उठा थे, कार्यक्रम कैसा लगा थी, यू सब आप लिख सकते हो। हमका कार्यक्रम के विषय में लिख सकते हो, जौन पार्टी के आईडी बताई है ना ओम भैया, वही पे आप भेज सकते हो हमका। और यू बताओ, जो तब बड़ा सा हरा हरा झोरा लेके आए हो खेड़ा से, तो ये झोरा में मौसम के हिसाब से कछु हमारे खातिर लाए हो?
4: जिज्जी लायन जिज्जी तुम्हारे खातिर। आप देखो,
3: अरे हमारे हृदय में ये बात उतर गई। जिज्जी खातिर लायन जिज्जी, और यू जिज्जी हमारे खातिर तुम तो ना कहियो।
4: अरे हम नहीं कहे, देखो हम खाए कहा है। अब जब सुबेरे उठे ना, इतनी तेज करिया करिया बादल उठा, आंधी आ गए, तो अम्मा कहे देखो ज्यादा परेशान ना हो भैया, अब देखो हम भी टूर एक नई परी आए।

0: जा रहे हो, जित जित तेरे मिले और अपने श्रोता पंच भाई तेरे मिले जा रहे हो, तो जाओ झुआरा ले लो और जाए कि अमिया मैंने बीन लाओ।
1: हाय हाय हाय, तो अमिया के संगे कुछ और लाए, सत्तू तू लाए कि नहीं?
0: अमिया लाए हैं ना,
1: सत्तू लाए हैं कि नहीं? अम्मा भेजी नहीं कि नहीं?
0: अम्मा भेजी है ना, वो देखो सत्तू पियो घोर के यहाँ है, उसके साथ जब चटनी खाओ तो वही क्या। अरे दादा एकदम आनंद है, चौकस है।
1: हाँ देखो सत्तू है, आमैया की चटनी है, और नीमक लाए हो कि नहीं? काला नीमक
0: चटनी में डरवा है।
1: हम कहे टिकोरा के संग थोड़ा नीमक के डुबो डुबो के था नहीं के अपन जुबान के थोड़ा सा चटक मटक कर।
0: देखो अपनी हाँ। अम्मा जो है ये सब चीजन का ध्यान रखती हैं। अब हाँ। हम पंचे यू थोड़ो ना कि खाली हाथ पूरा बस ज्वारा उठाए। अब तुमका बताए जिजी है,
1: बताओ बताओ।
0: अब आई तरह ना है अपनी हाँ। बैठके में एक दिन हाँ। तो अम्मा के यहाँ बैठा रहे रहन गाड़ी पर यहाँ है पीछे।
1: अच्छा,
0: तो हम पंचे जाये रहन आते रहन सन सन सन सन गाड़ी तेरे, तो आगे एक जना गाड़ी ले चलत रहा है मार ऐसी चकर मकर करे, तो हम सोचे कि लाओ तनी गाड़ी हम हूँ हाँ। उड़ाए दे हाँ।
1: तो मतलब टेढ़ मेढ़ गाड़ी चलावे के मन रहा तोहार,
0: तो हम दूसरे देखे तो हमारो मन भवा है।
1: अच्छा,
0: और हम भैया तनी तेज करें, तो अम्मा पीछे बैठी रहे कहें ओम भैया तनिक सुधर जाओ, और ये जो चक्कर मकर तुम कर रहे हो ऐसे हाँ। ना चलाओ गाड़ी।
1: अच्छा?
0: तो हम माने नहीं हाँ। तो बताया रहे ना अम्मा, फिर सीधे घूसा एक ऐसे मारे कि अबे वो बता रहे पीठी पिराए रही
1: हाँ।
0: तो कहे मतलब ये है कि भैया बड़े
1: घूसा तो हर पीठिया पे जम गा और बता दी वो अम्मा का आशीर्वाद रहा
0: हाँ।
1: कि आगे से यू गलती ना करो
0: हाँ, अपने बड़े बुजुर्गन के देखो बात मानो कहे हाँ। देखो भी सही समझावत है। अब यू सोचो कि भैया बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कौनो मतलब तेरे नाई कह रहे हैं इसे है बस कहा करते हैं, लेकिन भैया देखो भी बड़े अनुभव के लिए बात बतावत है, ये सब देखत है चीनत है हाँ। और भैया गाड़ी आड़ी वैसे धीरे चलाए चाहिए है कि नहीं हाँ। नियंत्रित स्पीड जैसा कहते हैं महिमा।
1: चाहे शहर की बात हो चाहे गांवन की बात का हम करब, कि जो गांवन में जैसे मेड़ हुई थे तनिक रास्ता होते है ना खेत ख्यातन के बीच से, तो वही मां सुधर के तनिक धीम धीम अगर आगे बढ़ो तू वहां सुरक्षित रही हो, और जो खेती किसानी करे वाले वहां मैं नहीं है लोग बैठी है मैं सब मेरा
0: पता नहीं
1: सब, सब लुड़के चले जा रहे हैं
0: हाँ, जी जी देख रहे गौने निकारे हो आप हाँ, सुनाए दो एकदम।
1: अच्छा वो गौने के साथ साथ हमका हम गौने सुनवा और हमका तनिक झोरा पास करो
0: हाँ,
1: हाँ, हाँ, ले, ले, पास ले, कर ले, ला, ला, ला, ला, ला, ला, ला।

0: YouTube Premium।
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब अली।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की। सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
2: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: आज के कार्यक्रम जो चल रहा है सुगंध माटी के ये थोड़े तनिक विशेष होवत है काहे से कि हम एक अपन अतिथि के बुलावत हैं उनका नियुक्त के आवत हैं और वो हमारे बीच पधारत हैं तो जो जो वो देख के आए हैं है ना और कौन अनुभव लेके आए झोरा तो हम खोल लिया झोरा में हमका हमारा मतलब की चीज मिल गई हूँ भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मार चटकारा भर के तनिक जो लाए रहो ना वो हम तनिक चखा है खावा नहीं
1: अच्छा झोरा पहले खोले नहीं रहा तो हम देखें कि आपके महिमा पहले ला रहा गए
0: एक आदमी तो हम पूछत रही कि नीमक लाए हो कि नहीं नून से तनिक स्वाद बढ़ाते कि नहीं
1: बिल्कुल आनंद आए जाते आप देखो झोरक बात कर रही हो रत्ना जिज्जी आपका बताई अब अपने अपने यहाँ बचनो भैया नहीं है
0: हाँ।
1: अरे बचनो भैया बप्पा जो है कहन की राशन ले आवा करो भैया राशन ले आवा करो कोटा तेरे
0: हाँ, करस्तानी कोनो करें होगी
1: बचनो भैया हर दाएं जाओ है और जैसे बप्पा कहे राशन ले
0: हाँ।
1: वैसे दन दे अपन गाड़ी उठाओ है बुरिया बांध है और सन दे निकल जाए
0: अच्छा
1: तो बप्पा सोचे कि बड़ा तेज हमारा लड़कवा है तुरंत राशन ले आवत है और फिर वही जावे तो अब पता तो ना चले आवे भैया धर दे आके यहाँ घर में यहाँ कहे बप्पा इतने मिला
0: अच्छा
1: एक दिन बप्पा जो है चकिया पर गए पिसना पिसावे तो पिसना पिसावत रहे चकिया वाला कहेला का हो भैया बचनू अब किन जो है चौर कम लाए रहे
0: हाँ।
1: तो कहें चौर कहें चौर कहे कहें अरे हर दांत तो बेच जाते हैं यहाँ चकिया बने अरे तो अब उनके जो है बचनो भैया जो उन बप्पा रहे उनके हाँ। जो है काटो तो खून नहीं वो वाला हाल हुई का कि यहाँ खाए ला ले और यहाँ बेच जाते हैं
0: काहे ब्याचत रहे
1: अब यू तो वह तो
0: वही जाने
1: हैं हाँ, कि अच्छा। अब काहे ब्याचत रहे अब घर गए जो है भैया तो हम पूछें कि बतावा रहा है चकिया वाला कि भैया बचनो यहाँ राशन बेच जाते हैं तो बताया कहा अरे बप्पा कहूँ ना ये झूठी बतावत है इसे हाँ। बतावा करते हैं हाँ। बस मार खवावे खाते
0: हाँ।
1: तो फिर बप्पा उनका पकड़ के ले गए
0: अच्छा
1: हाँ, चकिया पर
0: सामना कराएं
1: हाँ सामना कराएं अब भैया झूठ कहाँ बोल सकते हो
0: अच्छा।
1: वहाँ जाए के
0: हाँ।
1: तब भैया पता चला कि वे जो है वहाँ राशन बेच पता चला वे रिचार्ज करावत रहा
0: है अच्छा ये जो टुक टुक टुक टुक बोला थे ट्रेन ट्रेन मोबाइलिया का साख है उनका
1: हाँ मोबाइलिया सौ कहूँ ऐसे जा रहे हैं कहूँ ख्याते

0: क्या जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं हम बतिया काने फोन लगाए, पता नहीं कहाँ किन करत हैं। तो भैया वो बचनुक बप्पा फिर कसन उनका
1: अच्छा अच्छा
0: अब
1: मतलब कसिन तो उनके खान पियन जो है वो सब बंद कर दी ना, और तनिक घूसा उसे लगाई कि नहीं?
0: अब घुंसा किल्ली मारे
1: आजकल तो
0: हैं
1: सबसे नीक है आम की डंडी तोड़ ले, और आम की डंडी से तनिक जो कुटाई पिटाई करे के वो एक समझा दे।
0: तो भी देखो बचनो भैया सुधर गए जाए के। तो ये सब चीजें है भैया। देखो कहे मतलब यह है कि राशन पानी जो मिलत है, जही के खातिन मिलत है,
1: हाँ
0: वही के खातिन वही का इस्तेमाल करो। अब बेचियो, अब बहुत जनन के यहाँ भैया मिल नहीं पावत है, तो ये
1: हाँ
0: सब चीजें बिल्कुल नहीं करक है।
1: अच्छा तो यू बताओ कि बप्पा जौन जौन समझाएं तो बचनू भैया के दिमाग तरे पहुंचा या ना ही पहुंचा, यू का समझे
0: अरे
1: हो तुम?
0: एकदम नीक पहुंचा हो, पहुंचा हो। ये देखो गौनाई जोन है ना, वाह जो है एकदम ऐसा कुछ बता रही है, और हम देख रहे हैं ना आप एकदम गवने ढूंढ ही रहे हो कि
1: हाँ
0: दन्न दे मिल जाए, सन्न दे लगा
1: और
0: दे है।
1: यू दन और सन जो है यू चला करब, लेकिन वही के पहले जो का कहते हैं
0: जरूरी
1: तनिक,
0: आज सूचना हो वह सुन ली जाए, फिर देखो बैठ की तो अपन जारी है ही
1: हाँ
0: है।
1: जरूरी संदेश तनिक सुनवाई देव।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
6: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
5: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
6: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

0: अब वक्त के साथ साथ चले बहुत जरूरी होता है। तो देखो सोता पंचन 10:35 हुई गवाह है और कार्यक्रम चल रहा है 100.7 FM रेनबो पर। कार्यक्रम का नाम सब जाना था लेकिन तब हो बताई देव। देखो हम बताए थे कि कार्यक्रम चला थे सुगंध माटी की, यही आज हम न्योत के लाए हैं ओम भैया के। कौन खेड़ा सा है ओम भैया जरा?
1: हाँ देखो हमारा जो गाँव है वो बिल्कुल ना भूला भुलभुला खेड़ा है।
0: अच्छा हम बार बार बिसराए जाते हैं का करते हैं तो हर मुंह से यूं ना बहुत अच्छा लगा थे ऐसे अपन गांव से जो प्रेम होते
1: हैं। देखा आज हम बताए दे हमारे गांव का नाम कैसे पड़ा जो है भुलभुला खेड़ा। अब देखा गर्मी इतनी होते है तो पुराने सब होत रहे गर्मी ना, अब पुरानिया अपन कम थोड़ो ना रहे। तो जब भुलभुला खेड़ा नाम की बारी आई तो कोनो देखो पहले चप्पलो नहीं होत रहे हैं तो ऐसे पैदल नंगे पाए जात रहे गांव में मैया। खूब जब गर्मी होत रहे तो मार पाए भुलभुलाए जात रहे हैं।
0: अच्छा गदगदाए भुलभुलाए जात रहे
1: हैं। जब पाँव भुलभुलाए जात रहे तो फिर जो पुरानिया रहे कहा लाई क्या नाम रख दो भुलभुला खेड़ा।
0: अच्छा तो यही थे ये नाम लेके आया हो।
1: हाँ
0: अच्छा
1: तो ये देखो भुलभुला खेड़ा है और देखो अपने गाँव जवार मैया मने जब देखो परदेश जाते हैं वही क्या मन चाहे जितना परदेश में लाग हो लेकिन वो आग तना तेरे लाग जो है अपने गाँव है घर में रहा थे।
0: हाँ अपन घर की अपन गाँव की माटी अपन घर की खटिया अपन लोग यू सब कहूँ कहूँ दिल से नहीं जावत।
1: हाँ, हाँ। अब देखो गर्मी चल रही है
0: हाँ,
1: तो गर्मी मैया जब देखो यहाँ शहर में अपने दप देरे लाइट काट देते हैं।
0: हाँ। जानते हो जो बिजली कटे के जो बात करे हो आप ओम तो उमां का होते की कहूँ नियम बनावा गवा है।
1: हाँ।
0: हाँ, वो नियम के तहत का होते कि संध्या के 2 घंटा काटिब और इके बाद भोरे में 2 घंटा काटिब दोपहरिया में 2 घंटा काटिब ऐसा कुछ हम सुना है। ऐसा हमारे गांव में भी बहुत होता
1: है। अब है का देखो इतना ज्यादा सब पंखा मने बतावत नहीं भैया। जब अपन बाजा सुना जाते तो वहाँ पता चला थे कि भैया इतना वही पर लोड पर जाते हैं।
0: ये जो ठंडी बड़ी मशीन लागत है
1: ठंडी वाली जो मशीन बड़ी बड़ी के लागत है तो वही जब लोड पर तो भैया बत्ती तो कटते हैं। हाँ। लेकिन देखो अब जैसे सहार मैया है मनई परदेश मैया वहाँ कट गए तो मनई आग दूसरे बतियाऊ तो बहुत कम है। लेकिन अपने देखो गांव जवार मैया आए जाओ भैया चाहे जैसे बत्ती गए तो अपने ख्यातन तन चले जाओ है।
0: हाँ।
1: अपने चार सहेली हैं साथी हैं उनके साथ घूम के यहाँ खूब बैठो बतियाओ है
0: ठंडी ठंडी बयार के बैठ के तनिक भुट्टा वट्टा भून के आनंद उठाओ
1: आनंद उठाओ खूब चबाओ चुबरी बढ़िया तेरे खूब घूमो ताल तलैया देखो चिड़ैया और बाग बगीचा खूब घूमो टहलो और ये ब्यारा देखो मौसम इतना नीक चला मैंने ही कहा करत है ये गर्मी मैया गर्मी में आए जाते है सहार तेरे साथ है साथ छुट्टी हो जाती है बरत है कर लेती है जो सहालक होती है सब निपटा लेती है आके साथ मैया।
0: हाँ देखो सहालक सुई होवे वाली
1: हाँ। हाँ,
0: शुरू होवे वाली सहालक तो वही का बात करब लेकिन वही बाद में करब।
1: हाँ,
0: ठीक है
1: बाद में पहले आग गौनाई देखो वो झांक रही है इसी तरह।
0: हाँ गौनाई के साथ साथ हमको तनिक हमारा करिश्मा में एक बात उठत है तो हाँ। हमको बताइयो
1: बताओ पूछो हाँ। पूछो जेरा तो हमारा हाँ। धक्का धक्कर होते
0: हाँ, ना। तो ये बता दे हम कहते नहीं कि जामुन कौन बेरिया में खावे के मिली।
1: अरे जी जामुन हाँ। देखो फरेंदा लग ही रहा है ये हाँ। बेरा बाजारों में या सब जैसे देखो जामुनी मिल ही रही है हाँ। और इसके साथ साथ देखो फरेंदा तो खे है
0: फरेंदा में तो टाइम

0: लगा थे काहे से कि बड़ा बड़ा फरिंदा पाके में टाइम लगा थे
1: बड़ी
0: छोटी जमुनिया खवाई दे
1: बस यार मैं कसके भुसैला गिर जाए अब देखो पानी गिरी गया है अब सब मिठास और बढ़िया नीक ने अब की जब मिली हो देखो तुम का लेके आई बे खोल दे
0: हां यूं बहुत खाए के चाह रहे हैं कि
1: और सबसे बढ़िया देखो जमनी में आग चीज हमका लागत थी भैया खाओ और जब नीली नीली जुबान हो जाए और फिर दिखा दिखा दूसरे को ललचाओ
0: जैसे यहाँ लखनऊ शहर में कहा है कि बहुत तरह बेतरह के अलग अलग तरह के पान मिलते हैं तो पान खाए के जमान में जौन रंग चढ़त है बढ़िया पान के बीड़ा खाए के वही के दिखाए के और खवाए के एक दूसरे के सब मोहब्बत जताते हैं वही के साथ साथ ऐसे जमुनिया की बात कर दिया आप
1: अब देखो गाँव आवे खातिन कितना बेताब है आओ सुना
0: हाँ चलो यू बचाइए।

0: और ओम भैया
1: हाँ रत्नाजी जी
0: कहा इतना सुस्ता सुस्ता क्या तिनिक नहीं गवने ही हम सब सुनवा रहे हैं
1: सुस्ता है नहीं देखो इतना जो नए जमाने का अमृत नहीं बताओ थे चाय पिया दिन हो तो सुस्ती कहाँ लगी है
0: देखो आज हम तो का अदरक वाली चाय पिलाई है
1: हाँ।
0: ना तब फिर अब अदरक वाली चाय का एक मजा ही अलग होते है नहीं मौसम हाँ मौसम में भी फायदा करते है वही के साथ साथ अदरक वाली चाय
1: जी देखो जब हाँ। अपने कार्यक्रम मैया जो है अपने श्रोता पंचन मेल आ जाते हैं तो वही क्या मजा अलग हो जाता
0: दिल बाग बाग हो जाते हैं
1: अब देखो ये गुलबसा सिद्दीकी बनी भेजे हैं इन कहाँ तेरे संडीला तेरे
0: अच्छा
1: हाँ और इनके साथ रोशनी रावत समा परवीन साहिबा अंसारी साजे अंसारी निशा अंसारी

0: ममता और गौतम, हाँ लिखे हैं ना, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत नीक लाग रहा कार्यक्रम तो, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद करे के चाहिए, कहीं से किस बखत निकाल के और ये सब टाइप करके भेजत हैं, तो आपों को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ और देखो अब वकील अहमद भैया भेजे हैं, गुड मॉर्निंग आप दोनों लोगन का। माटी के सुगंध जो सुगंध माटी का कार्यक्रम अच्छा लागत है। और भैया आगे लिखा है बड़ा नीक लागत है, और लिखा है कहाँ से लिखा है, कटका हथुरी जिला सीतापुर तेरे।
1: अच्छा सीतापुर में लोग आनंद उठावत है ये कार्यक्रम का।
0: और आगे लिखा है कि भैया ये बेहरा देखो, हम अपने अरबी पर माटी चढ़ा रहे हैं ख्यात मैया, और मौसम हमारे यहाँ बहुत अच्छा हुआ है, और काले काले बादल छाए हुए, हवा मस्त चल रही है, एकदम आनंद आए जाते है भैया, वो जो है घुइया पर माटी चढ़ा रहे है, और ऐसे मौसम मैया भैया घुइया पत्ता के जो सब्जी
1: पकौड़ी, अब बहुत बहुत चीज के अब हम का करी, फिर मुँह में पानी आए लगे।
0: हाँ
1: तनिक रुक रुक के नाम ले भैया। तो अब यू बताओ कि आगे हम अगर मेल शामिल करें तो के का नाम लिए जा रहे हो आप?
0: हाँ भी देखो विजयपाल यादव भैया ललहुआ सिरे भेजा हैं, और ये लिखे हैं आदरणीय अंजू दीदी एवं ओम भैया जी पांच हुई। अरे भैया
1: तो अंजू दीदी भी सुना थी है ना, तो अंजू के तो हर बात पहुंच गई है, अंजू जीजी के तीर। हाँ। और अंजू जीती भी तुम्हारे लगे आइये,
0: और देखो इतने दर बताए हैं कि रत्ना जीजी है वे, तो रत्ना जीजी का भैया प्रणाम तुम्हारा वाला वैसी थी ऐसी भेज
1: हमके हमारे लगे पहुँच गया, तुम्हार प्रणाम बहुत बहुत खुश रहो।
0: और भैया लिखे हैं आगे कि कार्यक्रम बहुत मस्त लाग रहा हुआ है, और हमरे यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है, और मौसम सुहाना हुआ है, फली तोड़ी जा रही है ख्यात मैया, काहे कि भैया उड़द केरी तो भैया। अच्छा। हाँ खेती कामों कर रहे हैं, देखो यह है तो अपने बाजा के आनंद हुए भैया, क्या तुम रख लो मैड बढ़िया है। हाँ। और कार्यक्रमों चल रहा, बाजा बाज रहा, अपन कामों चल रहे हैं, और ये देखो लिखा है नो भैया जब आप घर से चले रहो।
1: हाँ।
0: तो छाता लिए रहो कि नहीं? अरे भैया छाता था पूरा लड़के सब चली था, देखो पूरी व्यवस्था दे रहे।
1: अरे हाँ। सबसे हमारे लिए बहुत अच्छी बात यू रही कि हमारे झोरा बचा के लाई छाता लगे।
0: हाँ
1: भेजने मोहम्मद आसिफ का लिखी नहीं
0: है,
1: लिखे ने मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहा हूँ। ओम भैया और रत्ना मैम मेरा सादर नमस्कार, आप लोगों की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर लगती है और लोगों की बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं। हैदराबाद से प्रोग्राम सुन रहा हूँ और रहने वाला राजा कटरा अहमदपुर बाराबंकी का हूँ। साहेब अंसारी, सादिया अंसारी, समा अंसारी, गुलफ साहब अपी, अहमद नवाब अपी, सभी लोग अपन बाजा लगाए के आप लोगों के कार्यक्रम सुन रहे हैं।
0: अरे भैया इतनी दूर मेल भेजे हो। हाँ। सुन रहे हो अपन कार्यक्रम हम अपन चंद क्या आपो के बड़ा पसंदीदा हुए। हाँ। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद है,
1: बिल्कुल बहुत।
0: और देखो ये सिमरन स्वरांजलि भेजे हैं, लिखा है नमस्ते ओम भैया और रत्ना दीदी। हाँ। प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हाँ कार्यक्रम बहुत है ये देखो,
0: और आगे लिखा
1: नाम सुना तेरे सुगंध माटी की। हाँ,
0: आगे लिखा है नूम भैया जल्दी आवा करो, बहुत दिन बाद आए हो।
1: हाँ अरे हम नियोत के आए नहीं, और बहुत मुश्किल से वक्त निकाल के हम कह रहे चले आओ, श्रोता पंच से सब बात कही करे खाते श्रोता का नाम सुन के धड़ा के चले आए हूँ भैया। हाँ और कोमल तिवारी लिखे ने गुड मॉर्निंग रत्ना दीदी और ओम भैया, शुरुआत का सांग बहुत प्यारा सुना, बहुत अच्छा लगा, और बातें आप सभी के लच्छेदार हो ही रही
0: है।
1: हमार मम्मी यू कार्यक्रम सुन रही हैं, उनका बहुत अच्छा लगा थे, और हमारा परिवार के सभी लोग कार्यक्रम का बहुत इंतजार करते यू कार्यक्रम का। और कोमल तिवारी कैसरगंज बहराई से यू लिखिन है, आपों के बहुत बहुत पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद दे दो, हमारे धन्यवाद पठे दो
0: माता जी का देखो चरण स्पर्श, और आपों के यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखो रोशनी रावत बहनी भेजे हैं, लिखा है राम राम प्यारी रत्ना दीदी और ओम प्रकाश भैया, और आप दोनों कैसे हैं? अरे हम लोग तो एकदम देखो नीक हैं, चाय हो चल रहा है चटनी के साथ, सब टिकोरा खा खाए चुकी हैं रत्ना जी।
1: और लिख देने लच्छेदार बात तो बहुत करेजा में हिलोर उठ रहा है।
0: और वही के साथ साथ देखो लिखा है हमारा नाम जो है रोशनी रावत हुए, गाँव हमारा बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव हुए, और चंडीगढ़ तेरे कार्यक्रम सुन नहीं है, और इनके साथ इनकी बड़की दीदी नीलू शर्मा दीदी, गुलपसा दीदी और छोटकी बहन बबीता राव सुन रही हैं, झूम रही हैं। अरे वाह
1: बहुत सजाए बजाए के लिखित हैं, लिखिन है कत्ती स्याही इस्तेमाल कर रहे हैं रोशनी रावत है ना, नीली
0: तना के रहे
1: हैं। हाँ कही तो बहुत बहुत धन्यवाद आप कह रहे हैं। मोइनुद्दीन अंसारी लिखिन है गुड मॉर्निंग मैम एंड सर, देखो हम अंग्रेजी बोला था कहूँ गलत हुई तो हमको ठीक करो है।
0: हाँ, हाँ।
1: लिखिन है हाउ आर यू, आई एम उमरा अंसारी, हजबा अंसारी, श्रीनगर श्रृंगार नगर लखीमपुर खीरी से लिखिन है, मेल करें है।

0: कि आज आप लोगों की जोड़ी धमाल मचा रही है और थैंक यू सो मच। हम सीख ली इन अंग्रेजी पट पट पट पट करे
1: मोइनुद्दीन।
0: हाँ थैंक यू अंसारी जी, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपके हम पठे थे।
2: और ये देखो नीलू शर्मा भाई ने लिखे हैं, रूप चंदेला सिरे लिखा है, रत्ना जी ओम भैया का मेरा नमस्कार, राम राम प्रणाम। अरे अच्छा। आपको कहिया राम राम प्रणाम। और लिखा है ओम भैया आज हमारे बड़के जिज्जी नीलम शर्मा जी के एनिवर्सरी है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी एनिवर्सरी पर। यहाँ
0: यू पूछ रहे हो कि सालगिरह में क्या करते हैं, कौन कौन जश्न मनावे में कौन कौन पकवान बनाए रही है और कौन कौन कितने लोगों के बुलाई है आमंत्रित किए हैं।
2: और हम हो पंचम बुलाए ले।
0: अरे यही खाते तो हमारी सारा है।
2: और मेरी दोस्त हमें सारा पीहू स्नेहा सोनी रोशनी बबीता मनु वंदना कौशल पूर्णिमा आरती और बहुत जने हैं है? और अब देखो रत्ना जी आज गौना ही हो जाए फिर वही के बाद संदेश पढ़े जी है।
0: अच्छा चलो हाँ। गौना हो जाए तो गौनो तनिक बजा दे वही के बाद हाँ। दूसरा गौनो भी इंतजार करते
2: हैं।
0: अरे 10:55 हुई गवा तो जल्दी सुनवाई दो।

0: हाँ देखो चरे के बेरी आ गई कहे से कि 10:58 हुई गवा है और ओम भैया आवे खातिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करें कि ना ही करें कहे से कि आप जोरिया में बहुत बहुत सामान लेकर आए हो एफएम रेनबो की टीम के लिए तो का करी बता।
1: अरे जज्जी देखो समय क्या पता ही नहीं चला कितनी जल्दी चला जाते हैं एकदम ऐस लागत है कि
0: मुट्ठी में पकड़ के रखो देखो बचाते कि नहीं
1: रस्सी बांध के वही मैं बांध के रखे लेकिन देखो समय अब नहीं अनुमत दे रहा है कि हम पंचे और ज्यादा आगे बढ़ाए जो देखो आप तो रहबे करियो तो सब श्रोता पंचन का यह है कि भैया देखो अपने लड़का लदन का सबका ध्यान रखो।

0: अपने बूढ़ बुजुर्गन का सबका ध्यान रखो और अपनो ध्यान रखो, इस मौसम बदल रहा है। और अब देखो चले खो रहे बिरिया अपन भुलभुला घेरे वाले ओम भैया, एक दो अनुमति
1: फिर आइयो।
0: अरे
1: कैसे श्रोता पंद्रह सब इंतजार कर रहे थे, देखो लिखिन है पार्टी में भेजे नहीं कि नहीं, तो ओम भैया के हम आज के बहुत बहुत धन्यवाद दे दे, कैसे अपन वक्त निकाल के अच्छे मौसम का आनंद उठाई के स्टूडियो में आके आप सब लोगों के बीच में आई के बत कही कहीं। और उसके बाद हम रत्ना शुक्ला ओम भैया के धन्यवाद कर रहे थे कैसे कि खेड़ा से बहुत मुश्किल से वक्त निकाल के फटफटिया से आए हैं।
0: तो सब श्रोता पंचायत राम जोहार प्रणाम नमस्ते भैया हो रो,
1: बहुत बहुत राम राम जोहार। और चलो भैया इनके चले के आ गई, ओम भैया तो निकल गए अब वही जा रहे हैं वही के साथ। अब रत्ना शुक्ला कहते हैं कि हम हो दे इजाजत ये कार्यक्रम से मिला समाचार के साथ, तो तोरे लोगों से तो रहो बने रहो सुनत रहो 100.7 FM रेनबो।

0: मार के आप सब लोगों के बीच में आए के बाद कही कहीं और उई के बाद हम रत्ना शुक्ला ओम भैया के धन्यवाद कर रहे थे कहे से खेड़ा से बहुत मुश्किल से बखत निकाल के फटफटिया से आए हैं।
1: हाँ तो सब श्रोता पंचायन राम जुहार प्रणाम हाँ। नमस्ते भैया हो रो
0: बहुत बहुत राम राम जुहार। और चलो भैया इनके चले के तो मेरी आ गई ओम भैया तो निकल गए अब वही जा रहे हैं उई के साथ। अब रत्ना शुक्ला कहते हैं कि हम को दे इजाजत ये कार्यक्रम से मिला समाचार के साथ तो तोरे लोगों से तो रहो बने रहो सुनत रहो 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, 11 बज रहे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। श्री मोदी एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। वहीं कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत की युवा शक्ति नए आत्मविश्वास, नए अवसरों और नई आकांक्षाओं के साथ राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया और रोजगार मेलों जैसी पहलों ने युवाओं की प्रतिभा, कौशल और नवाचार को नई उड़ान दी है। खेलो इंडिया जैसी पहलों ने खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर अवसर और विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यही अमृत पीढ़ी विकसित आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कल आगरा में विजय दिवस के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। ये आयोजन भरतपुर के महाराजा सूरजमल द्वारा मुगलों को हराकर आगरा के किले पर विजय प्राप्त करने की याद में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि महाराजा सूरजमल का जीवन साहस, सुशासन और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। जौनपुर में उपजी सब्जियां अब सिंगापुर और दुबई में निर्यात की जाएंगी। जिला उद्यान विभाग और प्रगतिशील किसानों के साझा प्रयास से किए गए सफल ट्रायल के बाद ये कामयाबी मिली है। ट्रायल के तहत भेजी गई 12 क्विंटल सब्जियों को दुबई और सिंगापुर की क्वालिटी की मांगों के अनुरूप पाया गया। पहली खेप में भिंडी, कुंदरू, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, केले और मशरूम का निर्यात किया जा रहा है। निर्यात होने वाली सब्जियां सीधे इन किसानों के खेत से लेकर विदेशों में भेजी जा रही हैं और बिना किसी देरी के भुगतान किया जा रहा है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए, जुड़े रहिए 107.7 FM रेनबो के साथ।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
6: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
7: समझे जनाब याली।
6: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

वेल, वक्त के साथ अगर चलते हैं तो 11:12 होने वाले हैं प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे आपके बीच आ चुका 100.7 FM रेनबो पर। हमें पता है आप लोग कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो के साथ जुड़े हैं और अपने कामों को भी अंजाम दे रहे हैं। भाई आज वीकेंड भी है तो कई लोगों ने बहुत कुछ प्लान कर रखा, कई लोग मौसम को देखते हुए बाहर निकलने वाले हैं और कई लोग निकल चुके हैं क्योंकि उनको मौसम को एंजॉय करना है और अपने कामों को अंजाम देना है। तो कामों को अंजाम देते देते आपको पता है कि आपका ये प्रोग्राम है संदेश आपके गीत हमारे, इसमें आप हमें मेल करते हैं, एक प्यारा सा संदेश लिखकर भेजते हैं या फिर आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो मेल की अगर बात करते हैं तो मेल आईडी आपको बता दें, fmakashwanilakhnow@gmail.com ये वो आईडी है जिस पर आप अपना प्यारा सा संदेश, अपना कहाँ से आपने भेजा वो सब जगह का नाम, अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। सुबह से बहुत ही खूबसूरत मेल का सिलसिला चल रहा है, वो हम अब शामिल करने वाले हैं। उसके साथ साथ जब डायल कर सकते हैं आप हमारे, हमारे लखनऊ का कोड है 0522। इसके अलावा 2238845 ये है फ़ोन नंबर, 2238845। इसके अलावा एक और नंबर है 2238852। इन दोनों नंबर को डायल करके आप सीधे कनेक्ट हो सकते हैं FM रेनबो के प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में। आपकी होस्ट एंड दोस्त रत्ना शुक्ला है आपके साथ, जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल ये ट्रैक हम आप तक पहुँचा रहे हैं, सॉन्ग, उसके साथ साथ आप लोगों की मेल भी शामिल करेंगे, फोन से आपसे बात भी करेंगे।

हेलो हेलो हेलो। देखिए, अभी तक हमारे साथ प्रीति जी कनेक्ट हुई थी फ़ोन लाइन से, और लेकिन किसी वजह से उनका लाइन डिसकनेक्ट हो गई है। तो चलिए, कोई बात नहीं, उनकी हम उनसे हो सकता है वो फिर से कोशिश करें और हमारी बातचीत हो जाए। लेकिन फ़िलहाल जितने भी मेल आए उनमें से हम आपका मेल शामिल करना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग बराबर मेल करते जा रहे हैं। तो हम अरुण कुमार जी का मेल शामिल करते हैं। अरुण कुमार कुशवाहा घमोइया हरदोई से इन्होंने मेल किया है। रत्ना, आपको और ओम भैया को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज सोच रहा हूँ था कि मेल नहीं लिखेंगे।

और इतना अच्छा लोक संगीत और इतनी अच्छी बातें सुनकर मैं आपको धन्यवाद देने से हम अपने आप को नहीं रोक पाए। अरुण कुमार जी, बस यही तो बात होती है कि मोहब्बत निभाते हैं अगर आप चैनल के साथ, तो FM रेडियो पर जितने भी प्रोग्राम होते हैं, अगर आपको कोई भी प्रोग्राम पसंद आता है, आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहिए, अपने उद्गार हमसे शेयर करते रहिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और अपनी बात हम तक पहुँचाई। इसके साथ कौन आ गए हमारे बीच में, राजेश यदुवंशी जी भी आ गए, लिखते हैं लवकुश यदुवंशी जी भी हैं हथरोहना ज़िला अमेठी से। बारिश के मौसम में बिजली के खंभे से दूरी बनाकर रखें, कभी कभी उसमें अर्थिंग उतर आती है जिसके कारण दुर्घटना हो सकती है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी, आज की दिन की तो खास ज़रूरत है ये, और बिजली के खंभे से दूरी बनाकर रखने में कभी कभी अच्छा अर्थिंग। उसके साथ लिखा है आज हमारे बारिश हुई, हम लोग खेत में धान की बेरन की देख रेख कर रहे हैं। इतना अच्छा सर आपने फ़ोटो भी भेजी है, अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर से लहलहाते हुए खेत और वो पानी और वो थोड़ा सा बस हंस से मुस्कुराते हुए पेड़। तो राज स्टूडियो जो आपने, राजेश यदुवंशी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यारा सा मेल और फोटो भी सेंड करने के लिए, और आपने बहुत अच्छे संदेश के साथ अपना मेल भेजा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हम कहेंगे कि आप तक एक गाना पहुंचा देते हैं, और गाना पहुंचाने के बाद देखते हैं कौन हमसे फोन लाइन से कनेक्ट हुआ है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद FM रेनबो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: और काफी देर से हम कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं अब किसका फोन हमसे कनेक्ट हो चुका है। प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैम मैं अर्पित, मैम अर्पित बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जिला इटावा से।
0: इटावा से अर्पित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितनी बार आपका फोन कनेक्ट हो चुका है एफएम रेनबो पर?
1: मैम मैं पहली बार लगाया हूँ मैम, मैं हॉस्टल में पढ़ता था।
0: हाँ,
1: हॉस्टल से मैं लगा नहीं पाता था।
0: अच्छा अच्छा, तो चलिए मुझे भी आपकी आवाज़ लगा कि शायद आपकी नई आवाज़ है। और अर्पित आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो के प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में। आज की तारीख याद रखिएगा, ठीक है?
1: जी मैम
0: जी। और अर्पित बताइए क्या करते हैं आप पढ़ाई में?
1: मैम मैं सेवेंथ में पढ़ रहा हूँ।
0: अच्छा, क्लास सेवेंथ के स्टूडेंट हैं आप? अरे वाह। तो लेकिन एफएम रेनबो कितना सुन पाते हैं आप?
1: मैम स्कूल टाइम में तो मैम छुट्टी हो जाती है, तो मैम 2 से लेके 5 बजे तक मैं सुनता रहता हूँ।
0: सुनते रहते हैं? नहीं, आपको अगर आप सुनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको ये इंफोटेनमेंट प्रोग्राम इसमें बहुत आते हैं, आपको इंटरटेनमेंट के साथ साथ काफ़ी नॉलेज मिलती है इस चैनल से।
1: जी मैम, यही मैम बहुत अच्छी चीज़ है।
0: जी जी, तो चलिए आप अभी से एक अच्छे सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो इन बातों के साथ हम आपसे जानना चाहेंगे प्रोग्राम में क्या संदेश आप

0: हैं, छोटा सा कोई संदेश।
1: मैम मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे डीजल की अभी डीजल पैसे इनकी जो कमी है
0: जी जी,
1: तो वो लोग जो है ना गाड़ी चालू कर ही छोड़ देते हैं, तो इससे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कहीं रुके हैं तो आप गाड़ी को कृपया करके बंद कर दें ताकि डीजल की बचत हो सके।
0: ओके ओके, तो चलिए आपका बहुत अच्छा सा संदेश, और चूंकि हमारा विशेष कार्यक्रम जाना है इसलिए अर्पित आपको आज फोन करने के लिए आपसे हम थैंक यू कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।
1: मैं कहना चाह रहा हूँ मैम
0: जी,
1: मैं मेरे इटावा में कभी कभार रेनबो नहीं चलता है
0: जी,
1: और इसके साथ साथ मैं दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ
0: जी। अभी आपको हम आपके दोस्तों को यहीं से कहेंगे, अर्पित की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत विशेष, चूंकि हमारा विशेष कार्यक्रम जाना है इसलिए आपसे माफी चाहते हैं अर्पित। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हम आपसे बताना चाहेंगे कि अब हम आपको अपने विशेष कार्यक्रम की ओर लेकर चलते हैं।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रत्ना शुक्ला आपके साथ 100.7 एफएम रेनबो पर। ये प्रोग्राम जो सिर्फ और सिर्फ आपसे सजता है और आपके बातों से आपके संदेश से ये प्रोग्राम सजता है। फिलहाल राजेश कुमार जी ने मेल किया है, लिखते हैं, मन की खेती। मन एक खेत की तरह है, यदि इसमें क्रोध ईर्ष्या और लोभ के बीज बोए जाएंगे तो दुख की फसल उगेगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात।

आपने लिखी, यदि उसमें क्रोध ईर्ष्या और लोभ के बीज बोए जाएंगे तो दुख की फसल उगेगी, यदि करुणा धैर्य और सद्भाव के बीज बोए जाएंगे तो शांति का फल मिलेगा। बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों को नहीं अपने मन के बीजों को बदलने का प्रयास करता है। बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया राजेश कुमार जी आपने, और FM रेनबो पर संदेश भेजने और मेल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी तरफ हमारी नज़र पड़ती है तो देखिए बहुत ही सजा सा, बहुत कलरफुल येलो कलर, पहले ग्रीन कलर है, फिर ब्लैक कलर है, और येलो कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर, बहुत सारे प्यारे इमोजीज हैं। और ये लिखने वाली हैं, लिखते हैं राम राम जी, आदरणीय रत्ना मैम जी, और इन्होंने ओम भैया, अच्छा इन्होंने कुछ देर पहले मेल किया था। बबीता राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेल के ज़रिए। लिखती हैं, पता है बेली कला पोस्ट, सठवारा गाँव, गोसाईगंज, नवाबों का शहर, लखनऊ, यूपी से। लिखती है, आपकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, आपका प्रोग्राम हमेशा ही काबिल तारीफ़ होता है। मुझे अवधि बहुत पसंद है, इसलिए मैं सुगंध माटी के प्रोग्राम कभी सुनना नहीं भूलती हूँ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि वीक में दो दिन आता है ये प्रोग्राम, बुधवार और शनिवार को। आपका प्रोग्राम मम्मी पापा भाई रजनीश, बहन विनीता, रोशनी रावत जी, नीलू दी, गुलफशा सिद्दीकी जी, और बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं और प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे हैं, और तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। अगर मेरा मेल आप शामिल करती हैं, जी आपका मेल पूरी तरह से शामिल कर लिया है। सभी के मेल शामिल करने का मेरी पूरी कोशिश होती है, बस बात यही रहती है कि कितना समय है। तो ब्रिजेश सिंह दीपू इठौआ कैसरगंज बहराई से जुड़ गए हैं, इन्होंने मेल किया है, राम राम ओम भैया एंड रत्ना मैम जी। अच्छा जी, आप क्या लिखते हैं, इनका मेल है कि सुगंध माटी के सुनकर एकदम मन प्रसन्न हुआ, सभी गीत बहुत लोकप्रिय लागत रहे, और खेतों में अभी दवाई से स्प्रे कर रहा हूँ, टाइम निकाल कर ईमेल भेज दिया क्योंकि कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। तो इन बातों के साथ आप तक एक गाना भी पहुँचाना है हमें, चूँकि इंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहना चाहिए और कहीं भी मन निराश नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये गाना आप तक पहुँचाते हैं, उसके बाद फिर जुड़ते हैं इसी प्रोग्राम में।

0: बारिश में बहुत ज़्यादा छम छम होगी, लेकिन सेहत का भी ख्याल रखिए। और बस सेहत के साथ साथ आपसे कहना चाहेंगे, किन की आवाज़ हमसे जुड़ सकती है फ़ोन लाइन के जरिए? हेलो जी, अभी तक हमारे पास बिल्कुल फ़ोन कनेक्ट हुआ, उनकी आवाज़ आई, लेकिन इस वक्त वो कहाँ हैं? हेलो, चलिए कोई बात नहीं, बारिश का मौसम है, थोड़ी सी लाइन में डिस्टर्बेंस है, तो उनका संदेश और उनकी बात तो हम आप तक नहीं बता सकते चूंकि वो कनेक्ट है, लेकिन अचानक लाइन डिसकनेक्ट हो रही, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, कोई बात नहीं। और हम मेल की ओर बढ़ते हैं चूंकि वक्त बहुत कम रह गया। तेज बहादुर यादव जी का मेल आया है, और तेज बहादुर जी क्या लिखते हैं? रत्ना शुक्ला दीदी और ओम प्रकाश भैया के राम राम प्रणाम, कैसन है आप दुईवन जने, और बहुत बहुत स्वागत है आप दुईनव जनेन के, बहुत सुंदर सुंदर बतकई कर रहे हैं आप, सुंदर सुंदर और जबरदस्त गीत गाँव नहीं सुनवाए रहे हैं। सेतुआ और काला नमक के तो नाम हमरे मुंह में पानी आ गया, एक के नाम से तेज बहादुर यादव, ममता यादव, बच्चे रोनित यादव और बेबी वानिका, गांव मऊ शर्की, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश से, अभी हम गुरुग्राम हरियाणा में सुन रहे हैं। आप लोग इतनी मोहब्बत निभाते हैं चैनल से, इसका हमें बहुत, हम सभी को बहुत खुशी होती है। और अब तालिब अंसारी जी ने मेल किया है, ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, मेरा मैसेज सभी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए है कि टाइम से पहले पहुंचने का प्रयत्न करें, और क्योंकि एक शख्स को देखा था अभी हाल ही में 5 मिनट पहले, वो लेट हो गए थे तो क्लोज़ हो गया था गेट, तो ये तो वाकई में आज सुबह भी मॉर्निंग में भी एग्ज़ाम था, काफ़ी भीड़ लगी थी और लोग अंदर एंट्री मिली थी, बारिश में लोग भीग भी रहे थे जैसा कि मैंने भी ये नज़ारा देखा। तो ये बहुत अच्छा सा संदेश है, अगर आपका कोई एग्ज़ाम है या आपको टाइमली कहीं पहुंचना चाहिए तो आप टाइम का ज़रूर थोड़ा ख्याल रखिए, चूँकि कभी भी रास्ते में आपको ट्रैफिक मिल सकता है, आप कहीं ना कहीं ट्रैफिक से आपका टाइम आगे पीछे हो सकता है। तो बस इस संदेश के साथ हम आपसे कहेंगे कि प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में, रत्ना शुक्ला आपसे कहेगी कि बस यहीं तक ये प्रोग्राम रहेगा, और एक प्यारा सा ट्रैक भी आपके बीच में हमने भेज दिया है। उस गीत के साथ हम आपसे कहेंगे कि कहीं मन चाहिए सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो, चूंकि ये वक्त कह रहा है कि आपको अभी भी अगले भी प्रोग्राम में जुड़े रहना है। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी, देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: करियर पर है ध्यान,
5: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
6: पॉजिटिव है फैशन,
5: क्रिएटिव है पैशन,
6: टेक्नोलॉजी में रुचि,
5: बने पर्सनालिटी ऊंची,
6: फॉलो करें ट्रेंड्स,
5: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
6: ओनली ऑन यूथ वेव,
5: यूथ की बात यूथ के साथ,
6: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
5: धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, 12 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खेलों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि

कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खेलों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 39 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री योगी गोरखपुर के बढ़लगंज में 295 करोड़ रुपए से अधिक की 319 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वह एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान करेंगी। उत्तराखंड में हुई बारिश के कारण पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। अत्यधिक पानी के चलते नदी के धनारा घाट पेंटून पुल पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने पुल से आवागमन न करने की चेतावनी जारी की है। इससे ट्रांस शारदा क्षेत्र की करीब 1.5 लाख की आबादी का संपर्क जिला और तहसील मुख्यालय से कट गया है। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के आजमगढ़ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कार सामने चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। राजधानी लखनऊ, उन्नाव, अयोध्या, सुल्तानपुर समेत आसपास के जनपदों में आज सुबह से तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 घंटों में जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर जनपदों में मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान जताया है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

बहुत ही प्यारा सा गाना है, लेकिन ये तो कह रही थी कि जा रही पवन, तो मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी प्यारी सी हवाएं चल रही हैं और उसमें एफएम रेनबो पर 100.7 एफएम रेनबो पर प्रोग्राम आ चुका है, जिसके शत्रुपा के तहत आज का जो सेगमेंट होता है वो है फैमिली फन, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और आज फैमिली फन प्रोग्राम करते वक्त बहुत ही खुशी के साथ सुबह से हम इनफैक्ट इस खुशी को मना रहे हैं, वो खुशी ऐसी कि रिमझिम फुहारे हैं, पकौड़े हैं, परिवार है, आप हैं, हम हैं, और उसके साथ साथ लजीज फेवरेट सी डिश भी है जिसका मन पूरी तरह से आपने प्रिपेयर कर लिया है कि उस डिश को हम बनाने वाले हैं। और फैमिली में फन को बरकरार करने के लिए कुछ आपने सेलिब्रेट करने के लिए सोच के रखा है, क्योंकि मौसम जब बहुत ज़्यादा साथ देता है ना, तो मौसम में कोई भी मौसम अगर आपका फेवरेबल कुछ चीज़ हो सकती है तो उस मौसम में आपको उसको करने में एक

अलग ही मजा आता है, एक अलग ही अंदाज के साथ उस काम को, या चाहे आपने कुछ ट्रिप प्लान कर रखा, कुछ भी आपको करना है, मौसम अगर फेवरेबल है तो बस बल्ले बल्ले हो जाती और इन सब चीज़ों के लिए आप काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं और कभी कभी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए भी ये दिन आपको उत्साहित करता है। तो हम आपसे क्या कहेंगे कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं कि आप खिड़की खोल के अपनी बालकनी पे, अपने टेरेस पे, अपने आंगन में या घर के बाहर कहीं भी जहाँ पर आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ करिए और आप अपने फैमिली में या अपने पड़ोसियों के ज़रिए कुछ किस तरह का एंजॉयमेंट कर सकते हैं, ये आप आज के दिन पूरी तरह से प्लान कर सकते हैं। और हाँ, आपके मेल के ज़रिए आप अपने फैमिली में फ़न आज के दिन कैसे विशेष तौर पर ला सकते हैं, वो आपके मेल का इंतज़ार हम करेंगे। FM रेनबो आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं हमें। रत्ना शुक्ला है आपके साथ प्रोग्राम फैमिली फन में। आप कहीं मत जाइए, मेल करके बताइए आप किस तरीके से अपनी फैमिली में आज फन को लाने वाले हैं, या आपने कुछ ऐसा कुछ सरप्राइज तो नहीं रखा है जो आप सिर्फ हमसे रेडियो पर शेयर करिए, और अपने घर वालों को बिल्कुल मत बताइएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप घर वालों को बता देंगे तो फिर शाम का या दोपहर का जो सरप्राइज़ आपने प्लान किया वो कहाँ चल पाएगा, है ना? तो उसको आपको बताने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको हमें मेल करना होगा। तो मेल करिए, आपके मेल का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और प्रोग्राम फैमिली फन में रत्ना आपसे कहती है बस सुनते रहिए, जुड़े रहिए, कीप लिसनिंग।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

वेल प्रोग्राम चल रहा है फैमिली फंड 12:19 हो गए हैं और इस प्रोग्राम के साथ साथ हम आपसे क्या कहना चाहते हैं पता है आपको, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप कहाँ भी हैं जो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन प्रोग्राम फैमिली फंड में जुड़े हैं, इतना मुझे विश्वास है। चूँकि देखिए आलोक साहू जी का मेल आ गया और लिखते हैं मैं रायबरेली उचहार धमधमा से हूँ, हेलो मैम सर आप कैसे हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ 8:30 बजे से मूसलाधार बारिश आंधी आई है और उचहार में वहाँ पर बारिश आंधी आई है और या नहीं मैं मुझे तो पता नहीं लखनऊ ऐसा है कि नहीं। और इन्होंने लिखा है कि ये फैमिली में फ़न करने की जो बात है ना, तो हमारे आगे जो पार्क बनाया है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से कीचड़ सा हो गया है और बारिश के साथ साथ कुछ आसपास की नालियाँ भी हमारी भर गई, तो हम मोहल्ले वाले मिलकर एक कुछ ऐसा हम लोग ने प्लान किया फ़ोन से और उसके बाद हम सब लोग बारिश हल्की सी थमी है तो हम लोग बाहर आकर उस पानी को बाहर निकाल कर यानी कि उसकी जो निकासी बना सकते हैं उस पानी की निकासी बना करके और पानी इतना उसको उसका फ्लो बना दे रहे हैं जिससे हम लोग सब मिलकर ये मोहल्ले वाले सब काम कर रहे हैं जिससे किसी भी घर में किसी भी तरह के मच्छर पनपना या किसी तरह की कोई बीमारी ऐसा कुछ भी पनप ना पाए और कोई भी बैक्टीरिया हानिकारक वहाँ पर पनप ना पाए, ऐसे हम आज

के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारी सभी की फैमिली में सारे मेंबर जो जो आ सकते हैं जुड़ सकते हैं सब आए हैं और हम लोग बाहर कुछ अच्छा सा माहौल बना अच्छे से वेदर में कुछ खाने पीने की भी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग को इस काम को करने के बाद क्या आगे करना है। ये तो बहुत अच्छा सा संदेश आपने, बहुत अच्छी सी प्यारी सी बात आपने कि इस तरीके से आप फैमिली फंड कर रहे हैं और सब लोग मोहल्ले वाले मिलकर इस अच्छे से काम को भी कर रहे हैं और एक फंड भी आपके बीच में क्रिएट हो रहा है। वैसे यूं भी बरसात का मौसम आते ही कुछ घर का माहौल एकदम से बदल जाता है ना, जैसे पहली बूंद जब गिरती है तो लगता है कि अरे इतनी सुंदर सुंदर खुशबू मिट्टी की जो होती है, चाहे आपके घर में आपके बालकनी में प्लांट्स लगे हों या आपके छत पे प्लांट्स लगे हों या आपके आंगन में प्लांट्स लगे हों या फिर बाकायदा बाग बगीचा हो कहीं भी हो, तो वो जो सुंदर खुशबू है वो कुछ आपके दिल में ऐसे जज्बात उठाती है कि कुछ हमें अलग सा करना है और कुछ आज के दिन या इस मौसम को हमें किस तरीके से सजाना और सेलिब्रेट करना है ना। बस आप मम्मी को कहते हैं और थोड़ी आपको हेल्प भी करनी चाहिए अगर फैमिली में फंड चाहिए ना, कि मम्मी से आप कहते हैं कि वो बेसन का डिब्बा उठाइए मम्मी और बेसन को पेस्ट बनाकर एक अच्छा सा एक बढ़िया वाली जो टेस्टी वाली पकौड़ी होती है उसकी तरफ बढ़ी मम्मी प्लीज़ आज खाने वाने के चक्कर में नहीं पड़ी, थोड़ी सी पकौड़ी, थोड़ी सी चाय, थोड़ी सी कॉफ़ी अब या फिर कुछ आपका शरबत वगैरह कुछ जो आप पसंद करते हो, इस तरीके का फंड भी आप क्रिएट कर सकती हैं। आप कुछ बस फैमिली में खुशी की मुस्कान और वो दौर जब एक बार शुरू हो जाता है तो सभी एक दूसरे को कोऑपरेट करने लगते हैं और कहीं ना कहीं हम बस इंजॉय करते हैं और फैमिली में फन अगर है, मुस्कुराहट है, इंजॉयमेंट है तो बस क्या ही कहने, एफएम रेनबो है ना साथ आपके।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और देखिए फैमिली फन का सफर यहां तक आ गया है, यानी कि 12:29 हो गया। प्रोग्राम फैमिली फन 100.7 एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं रत्ना शुक्ला के साथ, और हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि बच्चों की, नन्हे मुन्ने बच्चे जो होते हैं ना, उनके क्या ही कहने का, उनके माइंड में क्या चलता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ छुट्टियों में जब समर वेकेशन होती है तो उनको लगता है कि बस खेल, ये वाला खेल, वो वाला खेल, उसके घर जाना, उसको बुलाना है। और ऐसे में पेरेंट्स कहने की मम्मी पापा की ड्यूटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि उनका भी मन करता है कि पानी के गड्ढे हो, हम उसमें छई छप छई छपा कि छई ऐसा कुछ करें। और उसके साथ साथ लेकिन बरसात जब होती है तो हमें उसी के दूसरी तरफ बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना पड़ता है, उनको कहीं ना कहीं बारिश के पानी से या बारिश से होने वाले नुकसान से बचाना पड़ता है। लेकिन हाँ, उनके साथ बैठ कर आप बच्चों का फेवरेट डिश जो है ना, उसको आप ज़रूर प्रेफर करिए, क्योंकि आप जो अपने मन का कुछ पकौड़े बना रहे हैं, तहरी या जो भी आप डिश बना रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चों की जो फेवरेट डिश है आपके घर में, उसको आप ज़रूर बनाने की कोशिश करिए, उनका भी इंटरेक्शन आपके साथ बढ़ेगा।

साथ में उसको आप भी इंजॉय कर पाएंगे। अगर वो आप वाली सेम डिश को नहीं पसंद करते हैं तो उनकी प्रेफरेंस को आप सामने रखिए और कुछ अच्छी सी प्यारी सी जो बच्चों की फेवरेट डिश हो, अब मैं नाम तो नहीं लूँगी, जो उनको पसंद हो आपके घर के बच्चों को, उन बच्चों उस डिश को बनाना और उनको पैक करके अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसको भी साथ में लेकर जाना। और साथ में अगर बच्चे थोड़े से छाते के साथ शरारत करते हैं ना कि छाता बारिश में लेके घूमते हैं या छाता लेकर के थोड़ी शरारत करते हैं, थोड़ा सा छाता लगाया फिर थोड़ा सा हटाया और उसके बाद आगे पीछे दौड़ रहे हैं, तो वो उनको करने दीजिए, क्योंकि बहुत नुकसान नहीं होना चाहिए, बारिश से बहुत ज़्यादा भीगे ना ये, लेकिन हल्का फुल्का थोड़ी तो जो कहते हैं ना कि एक उनकी जो शरारत होती है, बच्चे तो बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमसे आपसे अलग ही होते हैं और उनको कुछ ना कुछ उनके मन का थोड़ा बहुत ज़रूर करने दीजिए, बस हाँ किसी तरह का हार्मफुल नहीं होना चाहिए।

इन बातों के साथ आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि मोबाइल कनेक्शन से बच्चों का जो नाता है ना, इस मौसम में आप कहीं ना कहीं उनको सेव कर सकते हैं। इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक कई लोगों का फेवरेट सॉन्ग है, उसको आप तक पहुंचाते हैं।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
1: श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
3: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: अपनी फैमिली में फन को, यानी कि फैमिली में किसी कुछ भी ऐसा करके कि आपकी फैमिली खुश हो जाए, आपके परिवार वालों के लबों पर मुस्कुराहट है, आप किस तरह से ऐसा कुछ आज मौसम को देखते हुए नया कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सब बातों के लिए हमें काफ़ी सारे मेल भी आ रहे हैं। आपको मेल आईडी फिर से बता देती हूँ, fmakashwani@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। तो हमें तालिब अंसारी जी ने भी मेल किया है और राजा कटरा बाराबंकी से इनका मेल आया है और इन्होंने कहा है कि बारिश के मौसम में बहुत कुछ आज हम लोगों ने प्लान किया है और उसके करने के साथ साथ हम FM रेनबो को सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया तालिब जी, आपने ये मेल किया। और इसी के साथ साथ कई लोगों का और मेल आया है, हम उन शिव प्रकाश जी का भी मेल आया है, उन्होंने भी बहुत लिखा है कि कार्यक्रम बहुत प्यारा लग रहा है और नमस्कार उन्होंने भेजा है। इसके अलावा कई लोगों का और मेल आया, लेकिन मेल के साथ हम अपनी बात को कंप्लीट करते हैं कि बच्चों को हम जहाँ तक बात करते हैं कि छुट्टियों में बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत कुछ पढ़ाई से के थोड़ा सा लोड कम रहता है, तो वो सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें, बहुत कुछ करें, लेकिन हाँ कुछ उनको अपना रूटीन भी फॉलो करना होता है। मैंने बात की थी घर में अगर वाईफाई का कनेक्शन है या आप डाटा से अगर बच्चे मोबाइल से बहुत ज़्यादा टाइम उस पर स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा है, तो ये मौसम आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपके बच्चे स्क्रीन से काफ़ी दूर रह सकते हैं। क्योंकि अगर आप सब मिलकर कुछ प्लान करते हैं, फैमिली में फ़न को थोड़ा सा मज़ेदार बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो आपका दिन आपका कुछ स्पेशल सा हो जाता है और बच्चे अपने आप स्क्रीन से दूर होकर आप जो उनके लिए स्पेशल सा तैयार करते हैं उससे आगे बढ़कर उसमें जुड़ जाते हैं। तो बच्चे आपके सबसे ज़्यादा किस चीज़ की फरमाइश करते हैं ऐसे प्यारे से मौसम में, या कुछ ऐसा फ़न ऐसा क्या उन तक आप ले जाना चाहते हैं, या आज आज है या आगे की छुट्टियां भी हैं उनमें आप लखनऊ जू उसमें आप उनको ले जाने का ज़रूर प्लान करिएगा, क्योंकि वो नई नई चीज़ों को देखेंगे वहाँ पर, नए नए तरह के एनिमल्स देखेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ देखेंगे, उनके क्या खान पान रहता है वो सब देखेंगे, तो एक उनकी लाइफ में एक नई चीज़ जुड़ेगी और इस तरह के चीज़ों को बच्चों से एक आप लर्निंग प्रोसेस भी हो जाएगा और आपकी फैमिली में फ़न और खुशी का भी एक दौर जुड़ जाएगा। तो बहुत देर से सोच रहे थे कि बच्चों के लिए कोई गाना सुनाए, लेकिन पहले से ही गाना क्यों करके रखा था, तो पहले तो ये गाना आप तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद फिर कुछ और आपसे बातें लेकर आपके बीच जुड़े रहेंगे। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम फैमिली फन।
1: अगर कोई मुझसे ये पूछे
2: क्या

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: देखिए बारिश के मौसम में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं और इसके साथ साथ हम प्रोग्राम फैमिली फन में आपसे बात कर रहे हैं कि आपके मेल भी आ रहे हैं। मेल की पहले बात कर लेते हैं, हमें रोशनी रावत जी ने मेल कर दिया है और इनका गुड आफ्टरनून भी हम तक पहुंच गया। हम बहुत अच्छे हैं, आपने जैसा कि पूछा, और आप सुबह से प्रोग्राम सुन रही हैं, जुड़ी आप हमेशा प्रोग्राम सुनती रहती हैं। फैमिली रेनबो पर आने वाले जितने भी प्रोग्राम हैं, उन्नाव जिला उन्नाव से गाँव बहमना तहसील सफीपुर से इन्होंने मेल किया है, चंडीगढ़ से इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रही है और लिखा है कि यहाँ बारिश होने वाली है, बस कुछ देर में घर जाकर पकौड़े चाय बनाकर खाएंगे, प्रोग्राम बहुत कास लग रहा है। भाई हम लोगों की कोशिश रहती है जितने भी आरजेस आपसे जुड़ते हैं कि प्रोग्राम में कुछ ऐसी बात रहे कि आप सबको अच्छा लगे। अब हम अच्छा लगने की बात करते हैं, हमने बच्चों की बात अभी की कि आप उनका स्क्रीन टाइम कैसे कम कर सकते हैं, लेकिन अब हमने स्पेशली इनवाइट किया है और बुलाया है, पता है किनको, तो आप केवल हेलो कह के चुप हो जाइए जरा जनाब
3: जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सभी, 12:49
2: जी। तो इनको आप पहचान तो गए होंगे या नहीं पहचान पाए, बस हमने इनसे केवल इतना ही पूछने के लिए बुलाया है कि आप कैसे हैं, पहले तो ये पूछना चाहो, दूसरा कि आप जब बचपन में बारिश होती थी या पहली बारिश होती थी उसको किस तरह से इंजॉय करते थे और क्या करने का बहुत ज़्यादा मन करता था, ये बताने के लिए हमारे बीच में आ चुके हैं अगले कई घंटे तक रहने वाले आपके साथ शिवम। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम फैमिली फन में
3: जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको बताते चले कि

0: ये जो अभी आपने पूछा कि बारिश में लोग क्या करते, देखिए हम लोग के टाइम में स्क्रीन होती ही नहीं थी, और जो स्क्रीन
1: बिल्कुल
0: होती थी
1: हाँ
0: वो सैटरडे संडे को सिर्फ कुछ टाइम के लिए हम लोगों को मिलती थी, घर वालों से बड़ा लड़ झगड़ के मिन्नतें करने के बाद कुछ प्रोग्राम देखने को मिला करते थे। और बारिश जब होती थी तो बारिश में सिर्फ एक काम कि घर में सभी लोग सो रहे हो, हम लोग छत पे चल के घूमे, और वो भी सर पे पन्नी लगा के। और
1: वाह
0: अभी के लड़के जो मतलब अभी के बच्चे जो आंधी आती है तो वो होता है ना, घर के लोग बुजुर्ग कहते हैं कि चलो आंधी आ रही है बच्चे घर में चलो,
1: हाँ
0: हम लोग आम लूटने के लिए बागीचे में पहले जाते थे, कौन सबसे
1: वाह
0: ज्यादा आम मतलब लूट के लिए आएगा,
1: हाँ
0: मतलब हम लोग उस टाइप वाले थे। और अभी भी इसीलिए मैं घर में बदनाम हूँ कि जब भी बारिश होता है तो ये घर में दिखता ही नहीं है।
1: हाँ वाकई में अगर बारिश में घर में कैद होके रहे तो फिर क्या बारिश का मजा कहाँ आ पाएगा। कुछ नहीं तो आपके घर में जो भी खुला स्पेस है उसमें आप जरूर जाइए, क्योंकि बारिश का मौसम खुले ही मौसम है। और शिवम ने तो फिलहाल बताया कि मैं खेत खलियान में निकल जाता था या फिर आम बीनने निकल जाता था, छोटी छोटी अमियाँ हो चाहे फिर वो बड़े पक्के आम हो, ये सब कुछ इनकी शरारत हुआ करती थी। इसके साथ वही यही कहेंगे कि छोटे बच्चे हैं तो चलो कुछ
0: बिल्कुल
1: अवॉइड कर देते हैं, उनको एंजॉय करने देते हैं। तो शिवम ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना फैमिली फन,
0: जी
1: तो इसमें कई सारे मेल भी आ रहे हैं,
0: बहुत
1: हमने
0: सारे
1: लोगों
0: मेल आए हैं और बड़े इंटरेस्टिंग मेल, अपने जो है निजी विचार जो लोग साझा करते हैं ना तो वो बिल्कुल लगता है कि एकदम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो रहा है।
1: देखिए एमा नवाब जी ने तुरंत आपकी आवाज सुनी और नाम बता दिया कि ये शिवम भाई हैं।
0: हाँ ये तो बात है, बिल्कुल सही जवाब,
1: बिल्कुल सही जवाब है भाई। और एमन जी के साथ साथ कई और भी मेल आए हैं, लेकिन शिवम आपसे कहेंगे कि मेरे तो जाने का वक्त आ रहा है, ठीक है?
0: बिल्कुल
1: हाँ।
0: तो हम अब जो आगे का साथ रहेगा वो भी इसी पे बरकरार रखेंगे। और आपने जो अभी भी जो गाना बजाया ना,
1: हाँ।
0: मतलब उसकी मैं तारीफ जरूर करूंगा कि बेहतरीन गाने। और ये जो बाहर मौसम हुआ है,
1: हाँ।
0: अभी आप सुबह से स्टूडियो में हैं लेकिन अभी आप जब बाहर जाएंगे तो बिल्कुल एकदम शानदार वाला मौसम आपको देखने को मिलेगा। और हाँ खास बात ये भी है कि आज लखनऊ में कई जगह आपको भंडारे भी देखने को मिल जाएंगे,
1: यानी कि जो आप बेहतरीन सी सब्जी और पूड़ी खाकर आए हैं जिसकी खुशबू आपने यहाँ पर केवल बताई है लेकिन उसके जायका तो मिल ही नहीं पाए क्योंकि आप लेकर नहीं आए।
0: क्योंकि जब हम आ रहे थे तो अभी आरती वारती हो रही थी, पूजा हो रहा था, तो अभी 1:30 बजे 2 बजे के बाद मिलने का प्रोग्राम था।
1: अच्छा तो आपने थोड़ा सा वहाँ पर चखा है तो वो हमें अच्छा लगा सुनकर। लेकिन इसके साथ हम आपसे कहेंगे कि भाई 12:52 होने प्रोग्राम फैमिली फंड में आपने जो कुछ भी आज प्लान करके रखा है आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए या कुछ अच्छा महसूस कराने के लिए अपनों को, तो उसको जरूर करिएगा, बिल्कुल भी टालिएगा मत, बिल्कुल भी आलस मत करिएगा। और 100.7 FM रेनबो अपने कार्यक्रमों के जरिए आप तक कुछ ना कुछ आपको आगे बढ़ाता रहता है कि आप कहीं ना कहीं प्रेरित हों और कुछ अच्छा करने की सोचें। तो आपको एक गाने के साथ छोड़ के जाते हैं और शिवम को तो हमने सौंपी दी है कमान, तो शिवम आपके साथ अगले प्रोग्राम में रहेंगे। इसके साथ जितने भी लोगों का मेल आया उन सबका हम दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं। और प्रोग्राम में शिवम
0: जी
1: ये बताइए कि आप अगला प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप लोगों के मेल भी शामिल करेंगे,
0: जी हाँ प्रोग्राम
1: एक बढ़िया सा टॉपिक भी देंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, तो जो
1: जी टॉपिक भी देंगे,
0: जी हाँ, तो आज का जो मैं टॉपिक देने वाला हूँ वो थोड़ा सरप्राइज है, तो अभी एक बढ़िया सा गाना सुनिए उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या है। लेकिन हाँ ये टॉपिक जरूर रहेगा कि आपके जो सीने में कहीं दबी सी वो जो एक शिकन है वो जरूर आज बाहर निकल आएगी।
1: यानी कि कुछ अलग सा करने का अगर मन है तो वो तो हम इतनी देर से बात कर ही रहे हैं लेकिन आपके दिल में दबी सी जो चिंगारी है उसको भी आप निकाल सकते हैं, अपने मेल के जरिए प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। बाकी आगे आपको शिवम बताने वाले हैं। तो ये गाना तो मैं प्ले कर देती हूँ चूंकि मैंने वादा किया था बच्चों के लिए ये गाना जरूर आने वाला है। फिलहाल रत्ना शुक्ला कहती है 100.7 FM रेनबो से आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, मौसम को इंजॉय करते रहिए और शिवम के साथ अगले कुछ घंटे FM रेनबो पर जुड़े।
0: बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना जी।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख

स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खेलों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 39 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम से पहले उन्होंने एक जिला एक उत्पाद के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। आजमगढ़ के बाद श्री योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री बड़हलगंज में आयोजित कार्यक्रम में 295 करोड़ रुपए से अधिक की 319 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान वह एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं कल वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।

के दौरे पर रवाना होंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री बड़हलगंज में आयोजित कार्यक्रम में 295 करोड़ रुपए से अधिक की 319 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान वह एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं कल वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कल वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। श्री वैष्णव ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को तेज, कुशल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए अधिक टैबलेट आधारित परीक्षाएं शुरू की जानी हैं। वाराणसी में आज से किसान भारत के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और वैदिक विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में देश विदेश से लगभग 1200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा उद्घाटन में सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि इस अधिवेशन का उद्देश्य समसामयिक वैज्ञानिक और सामाजिक चुनौतियों पर विमर्श करते हुए वैज्ञानिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य योजना तैयार करना है। और इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सपने बड़े हैं,
1: स्टाइल अलग है,
0: तो ये शो है आपके लिए।
1: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
0: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
1: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: मैं हूं मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ, 1:05 हो गया और आपका दोस्त शिवम आज आपके साथ है। प्रोग्राम का नाम होठों पे तेरी बात, और होठों पे तेरी बात में बात आपकी होती है और हमारे जबान से होती है। तो फिलहाल हर बार यही होता है कि हम एक टॉपिक देते हैं, उस पर अपने विचार आप हमसे साझा करते हैं। वैसे आज है सैटरडे और लखनऊ में भाई साहब कई जगह भंडारे लगे हुए हैं। भंडारे मतलब कि बिल्कुल एकदम रिलैक्स वाली जगह, कि आप जाइए, बढ़िया गाड़ी किनारे खड़ा करिए, पूड़ी सब्जी बूंदी रायता रसना और न जाने क्या क्या खाने को वहां पे मिलेगा। और सैटरडे वैसे वीकेंड है, अगर वीकेंड है तो थोड़ी सी लापरवाही लोग खाने पीने में जरूर कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि भाई हम पूरे वीकेंड मतलब इंतजार करते हैं कि भाई सैटरडे आएगा, संडे आएगा तो मुझे स्पेशल खाने को मिलेगा, मैं ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगी। ऐसे तो होता है ना कुछ कि लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, डाइट कॉन्शियस होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं भाई चावल पूरे हफ्ते नहीं खाना है, सैटरडे को चावल खाना है और संडे को बढ़िया मीठी वाली चाय पीनी है, बूंदी खाना है, खस्ते छोले भटूरे खाने हैं, है ना। बहुत सारी तमाम सारी प्लानिंग हो रही होती है हम लोगों के दिमाग में। तो आज जो होठों पे

मेरी बात पे हम बात करने वाले हैं, कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली बात। तो अक्सर जब हम अपने जो मील होती है उससे जब चीट कर रहे होते हैं, तो आप स्पेशल सैटरडे संडे को ऐसा क्या करते हैं कि खाने को लेकर डाइट में क्या अलग से ऐड ऑन करते हैं? अक्सर होता है ना कि भाई आज हम जैसे हर हफ्ते जो है हम रूटीन फॉलो करते हैं कि सुबह उठते हैं, ओट्स वगैरह खाते हैं या स्प्राउट वगैरह खाते हैं या पराठे सब्जी खाते हैं और खा के हम ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, शाम को नॉर्मल वही। तो अक्सर ऐसा होता है भाई सैटरडे को कुछ स्पेशल बाहर खाने को जाते हैं या घर पे कुछ स्पेशल बना लेते हैं। तो इस पे अगर आप सैटरडे या संडे को कुछ स्पेशल करते हैं तो वो आपकी लाइफ में क्या ऐसा स्पेशल करते हैं जो हमें भी जानना चाहिए और लोगों को भी जानना चाहिए? और ये बातें आप कहां बताएंगे? वहीं बताएंगे fmakashwani@gmail.com पर। आपकी ईमेल का बेसब्री से इंतजार। कौन कर रहा है? जी हां, हम कर रहे हैं। मेरा नाम शिवम है और ये 90s स्पेशल का थड़कता भड़कता एकदम गाना सुनिए। और ये जो बाहर मौसम है ना, धूप छांव वाला, उसको भी थोड़ा इंजॉय करिए, क्योंकि गर्मी के बाद ये वाला मौसम जो है बड़ा स्पेशल होता है।

ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान के नौजवान साइंस और टेक्नोलॉजी, एयरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे शोबों में नुमाया कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आज दुनिया के सरकर्दा स्टार्टअप हब में शामिल है और उसकी कामयाबी में छोटे शहरों और गाँव के नौजवानों ने कलीदी किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने खेलों में नौजवानों की शानदार कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने बैन-उल-अक़वामी मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन किया है। उन्होंने नोट किया कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसे इकदामात ने इख्तराई और कारोबारी शख्सियत को फरोग दिया है। जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों से एनडी

0: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 1090 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
1: समझे जनाब अली।
0: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
2: जी हाँ, वैसे धड़कन लखनऊ की तो है ही, और इसके साथ हम आपको एक खास बात ये बताते चले कि जब धड़कन में ढेर सारे गाने और ढेर सारी बातें घुल जाए तो वाह, पूछिए मत। फिलहाल मोहम्मद आसिफ जी हमें ईमेल कर रहे हैं, हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं, और ये टॉपिक पे लिख के बोले हैं कि भाई हम जो है महीने में एक बार हैदराबादी बिरयानी जरूर खाते हैं दोस्तों के साथ, और केले के पत्ते पर इडली सांभर डोसा का मजा जरूर लेते हैं। हमें भी इनवाइट किया है, भाई आप भी जरूर आइए, जब आइएगा तो हमें जरूर बताइएगा। और कुछ नाम लेने के लिए बोले हैं, सादिया अंसारी, साहिबा अंसारी, समा अंसारी, गुलफसा आपी, एमन आपी, इन दोनों लोगों का सबका नाम लेने के लिए बोला है। राम राज जी ने हमें लिखा है, श्री गणेश आय नमः, होठो पे तेरी बात, जिला रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से राम राज, राजू भानु, शंकर भैया,

जो बड़ी वाली प्लेट होती है ना, उस पूरी उस प्लेट के साइज से भी बड़ी पूरी होती है। तो कुछ ऐसे होते हैं खाने पीने की स्पेशल चीज़ें होती हैं, कुछ स्पेशल मिठाइयाँ होती हैं या स्पेशल पकवान होते हैं जो तमाम ज़िलों में अपने अपने जो उनकी फेमस होती है वो बनती है। तो उसके लिए भी हम बहुत सी चीज़ें बड़ा उसके लिए तमाम तरह की मान्यताएँ होती हैं अपनी अपनी। जैसे हमारे यहाँ बलिया में क्या होता है कि अगर शादी ब्याह में बलिया वाली पूड़ी नहीं बनी तो जो गाँव के जो लोग बूढ़े पुरनिया लोग हैं, लोग बड़ा नाराज़ हो जाते हैं कि भाई देखिए फलाना के घर गए थे और बड़ी वाली पूड़ी खाने को नहीं मिली। सब चीज रहेगा लेकिन वो सिर्फ बलिया वाली पूड़ी से जो लोग थोड़ा सा रह जाती है कसर। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आप लोगों के पास भी होगी कहने को बताने को कि भाई हमारे यहाँ कभी ऐसा कुछ हुआ हो, तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा fmakashwadilakhnow@gmail.com पर। कर रहे हैं इंतजार इस सुहाने से मौसम में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये बेहतरीन सा गाना आपके रेडियो सेट पर।

जी हाँ, और रफ्ता रफ्ता ईमेल भी ढेर सारे आने लगे हैं, और कई सारे ऐसे ईमेल हमारे लिए भी ऐसे होते हैं ना जिन्हें देख के लोग बड़े प्रभावित होते हैं, जैसे कि कभी कभी लोग सुन के भी प्रभावित होते हैं। अच्छा, ऐसा ही कुछ मेरे पास ईमेल आया है संजय निगम करके। ये एफएम के सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार, और ये लिखते हैं कि रविवार को मेरा ब्रेकफास्ट रोज से अलग होता है। 65 वर्ष का होने के कारण रोज तो डाइटिशियन के बताए हुए मील को फॉलो करता हूं, परंतु रविवार को ब्रेकफास्ट जो उनका होता है वो लखनऊ की बेहतरीन चाय के साथ होता है, जहां पर ये चाय और बंद मक्खन के साथ सब परिवार लुत्फ उठाते हैं। संजय निगम नाम है इनका, और विवेक खंड गोमती नगर लखनऊ से इन्होंने ईमेल किया है। अच्छा देखिए, कई बार लोग जो है सच में प्रभावित हो जाते हैं। अब ये 65 वर्ष के हैं और ये पूरे हफ्ते जो है अपने जो मील है अपने हेल्थ को लेके बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और संडे को विथ फैमिली इंजॉय करते हैं। क्या आप बाहर निकलते हैं लखनऊ में थोड़ा सा बाहर फैमिली के साथ, वो भी जाते हैं घूम के आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम वर्क प्रेशर के चक्कर में या और भी चीज़ों के चक्कर में हम नहीं निकल पाते। आप चाहे किसी भी शहर में हो, चाहे किसी भी राज्य में हो, कहीं भी हो, तो कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने लिए वक्त निकालिए। ये किसी उम्र के एक लिमिट में नहीं बांधा गया है आपको कि नहीं आप इतने उम्र हो जाएंगे तब करेंगे। बहुत से लोग ये होता है ना कि अरे हमारी ये तो अभी एज ही कहाँ है ये। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ की कुछ भी करने की एज नहीं होती। आप अपने लिए टाइम निकालने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं एज होती। अपने लिए समय, अपने आप को खुश रखने के लिए समय निकालने के लिए तो बिल्कुल भी कोई एज लिमिट होती नहीं। ये 65 वर्ष के हैं और बाकायदा ये अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, लेकिन संडे को ये फिर भी अपने फैमिली के साथ जाते हैं। आधा घंटा, एक घंटा, जो भी ये वक्त चाय पीने में अपना वहाँ पे लगाते होंगे, लोगों के साथ घूमते होंगे, तमाम तरीके के चेहरे देखते होंगे और एक्सपीरियंस होता होगा, तो ये इनकी पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इसको देख के बहुत सारे लोग वो है जो संडे के दिन भी लोग घर ही में पड़े रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा सा घर में से निकलिए, बाहर निकलिए। अक्सर लोग जो है घर में कैद होने के अलावा दिमाग में भी कैद हो जाते हैं, भाई कैसे निकल लें, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है, आपकी घर से निकलने की देरी है, बाकी सब वो सब होता चला जाता है, रास्ता बनता चला जाता है, खुलता चला जाता है, और बेहतरीन सा गाना आपके रेडियो सेट पर चलता चला जाता है। 100.7 FM रेनबो पर सुन रहे हैं होटो पे तेरी बात शिवम के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

1:36 और रंग देने का मन तो ये है कि आज जो बारिश हुई है हल्की फुल्की, जो भी जहां भी जहां कहीं भी हुई है, थोड़ा बहुत तो राहत जरूर मिली है। फिलहाल लखनऊ में जो इतने टाइम से बिल्कुल एकदम चिलचिलाती धूप में झुलस रहे थे लोग, तो अभी जाकर थोड़ा सा मतलब राहत मिली हुई है और आगे भी उम्मीद है कि थोड़ा बहुत राहत और मिल जाए। राहत से बात यही दाया कि जो ये जो राहत मिल रही है ना, इसका शुक्र मनाइए, वरना जो धूप जो निकल के और जो कड़ाके की जो उमस होती है ना, वो तो क्या ही बताएं। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति का महत्व समझिए, पेड़ पौधे थोड़ा सा लगाइए और ये जो आदत हम सबने बना रखी भाई, तुरंत एसी के चक्कर में जो है कि भाई कुछ भी हो एसी खरीद लेंगे, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब यहां सोचने की जरूरत है कि या पेड़ या एसी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म। फिलहाल 1:37 होटो पे तेरी बात, शिवम आज आपके है साथ। ढेर सारी बातें कर चुके हैं और बहुत सारी है पिटारे में बात। फिलहाल रामेश्वर जी का ईमेल आया है, लिखते हैं होठों पे तेरी बात कार्यक्रम की तारीफ की है, नमस्कार बोला है, बहुत बहुत नमस्कार। और इन्होंने लिखा है कि शिवम भाई जी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सबसे पहले मेरा जो इनका ब्रेकफास्ट होता है वो चाय और पराठे से होता है। मेरी उम्र 60 साल की है और मैं ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से हूँ। रामेश्वर कटियारा, उमाकांत कटियारा, कमलेश कटियारा, पुत्रवधु निशा कटियारा, प्रज्ञा कटियारा, प्रतिमा कटियारा, बेद बाबू कठियारा, समस्त कठेरिया परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भाई जी। तो आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं भाई, बिल्कुल एकदम देसी टाइप वाला, एकदम बिल्कुल ये भी नहीं है तो बाहर भी नहीं जाते, अब तो घर में ही बिल्कुल एकदम देसी वाला घी वाले।

लगे पराठे और चाय खा लेते हैं। तो अच्छा ये बताइए, सैटरडे संडे को अगर आपके घर में खाना बढ़िया मिल जाए, मतलब आपके फेवरेट वाला, तो मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसे कुछ करारे करारे नोट निकाल के ऐसे बहू को या जो खाना बना रहा हो उसको ऐसे देते हैं कि नहीं, ये जरूर इनाम देते हैं कि नहीं? क्योंकि देखिए खाने के लिए तो सभी लोग मतलब होता है कि हाँ ठीक है खा लिए, तो इनाम देने वाले भी, हाँ तुमने खाना अच्छा बनाया भाई साहब, बहुत शानदार, ये लो आज चलो तुमको घुमा के लाते हैं, बाहर कुछ खा के आते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम आमतौर पे महिलाओं को जो है थोड़ा सा कम आंक लेते हैं, भाई संडे उनका भी तो होता है, सैटरडे उनका भी तो होता है, हर रोज तो खाना वही बनाती हैं, हर रोज तो सारी चीजें वही करती हैं। तो कभी आप भी ऐसा कुछ करिए कि मतलब सभी लोगों की बात कर रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कभी सैटरडे संडे उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स हो कि मतलब वो सो को उठे, उनके लिए चाय ब्रेकफास्ट बन मक्खन चाय पराठा बिल्कुल एकदम रेडी टू ईट हो, है ना? तो मतलब लगे कि हाँ कुछ मतलब घर में एकदम टक्कर का कुछ हो रहा है, भाई आज तुमने छोले भटूरे बनाए तो आज हमने तहरी बना दी बढ़िया वाली, है ना? 1:40 का होने को है और ये बेहतरीन सा गाना सुनिए।

0: सपने बड़े हैं,
1: स्टाइल अलग है,
0: तो ये शो है आपके लिए।
1: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
0: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
1: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
3: जी हाँ, 1:48 हो गए हैं और ये भागते हुए सेकंड।

तो होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल प्रोग्राम की तारीफ की है और गीतों की भी इन्होंने तारीफ की है। अमन नवाब, इनका भी ईमेल आ गया है। फिलहाल ये हमसे बड़ी नाराज है, कह रही हैं कि शिकायती मेल है, लेकिन चलिए ठीक है, आपको माफ़ किया तो भाई अच्छी बात है। देखिए, मेरे माफ़ी मांगने से पहले ही लोग मुझे माफ़ कर दें तो ये शायद मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आगे लिखती हैं कि दादाजी को डॉक्टर के रिकमेंडेशन डाइट पर एकदम, मतलब ये अपने दादाजी को जो डॉक्टर इन्होंने बोला है कि भाई आपको ये खाना है ये खाना है, तो उस पर ये बिल्कुल बिल्कुल कड़ाई से अमल करती हैं। उनके खाने पीने का हिसाब किताब सब यही रखती हैं। और हाँ, ये भी आगे लिख रही हैं कि वैसे तो आजकल दादाजी की कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी चल रही है, तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ स्पेशल उनके लिए ज़रूर बनाती हूँ। भाई देखिए, जब स्पेशल लोग होते हैं घर में तो भाई कुछ ना कुछ तो बनना होता ही है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम घर में बड़े बुजुर्गों के लिए उनके ध्यान में रख के कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बनाते हैं भाई, उनके फेवरेट हो, मन पसंद हो बिल्कुल एकदम, कि लगे कि हाँ डिब्बा खुले और एकदम आँखें एकदम ऐसे चौंधिया आ जाएगा, अरे वाह आज तो खाने में मेरा वाला फेवरेट वाला मिला है मील। तो कुछ ऐसी कुछ बातें अगर आपके पास भी हैं दबी कहीं तो लिख के भेजिए भाई साहब, हम भी बैठे हैं बेकरार आपके जानने के लिए कि भाई आपकी दिनचर्या में कौन कौन सा खाना, कौन कौन सी स्पेशल डिशेज जो है आप शामिल करते हैं सैटरडे और संडे को स्पेशल। 1:50 हो गए और महेंद्र दीपन का ईमेल वापस आके पढ़ूंगा। फिलहाल टोपी सीधी कर लीजिए अपनी।

जी हाँ, अब 1:55 हो गया है, प्रोग्राम को वाइंड अप करो, लेकिन उससे पहले जो आपके ईमेल हम तक पहुंचे हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा जरूर। और अब मैं जो मेल पढ़ने वाला हूँ वो अरुण कुमार जी का है। लिखते हैं कि वैसे तो मैं वर्कआउट सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह और शाम दोनों टाइम करता हूँ, लेकिन रविवार के दिन केवल केवल केवल सुबह का ही वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि संडे के संडे अपने मनपसंद डिश खाता हूँ और कल इनके यहाँ संडे को बाटी और चोखा खाने की पार्टी है। और फिलहाल हमको भी इनविटेशन मिला हुआ है कि भाई ऐसा है कि आप भी चले आइएगा खाने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ईमेल करने के लिए कि भाई आपने हमें इनवाइट किया। और अगला मेल जो मैं पढ़ रहा हूँ सतीश अनेजा जी का है। रविवार का दिन बहुत ही अहम होता है क्योंकि परिवार के साथ बिताया जाता है। रेनबो लखनऊ मनोरंजन करता हुआ साथ है परिवार के साथ। मैं रविवार के पास की पहाड़ियों में चले जाते हैं। वैसे ये जब चंडीगढ़ में रहते हैं तो आसपास जो होंगे जो घूमने के लिए बढ़िया वहां ये चले जाते हैं और थोड़ी मस्ती भी करते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। रेनबो लखनऊ के लिए बेशुमार मोहब्बतें, चंडीगढ़ सिटी, सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ने यह बेहतरीन सा ईमेल आप तक पहुंचाया है, यानी हम तक पहुंचाया है। जावेद अख्तर भाई का भी ईमेल आया है, कार्यक्रम की बहुत ही तारीफ की है। गुलफ्ता सिद्दीकी ने लिखा है भाई ये हरदोई संडीला के रहने वाली हैं और कह रही हैं कि भाई क्या हमारे लिए संडे और क्या हमारे लिए सैटरडे, हर रोज हमें उठ के खाना बनाना पड़ता है, लेकिन आपका प्रोग्राम के साथ साथ काम जो है बहुत ही हल्का हो जाता है। देखिए ये होती है बिल्कुल दोस्ती। अच्छा, बसंत कुमार सिन्हा ने हमें ईमेल किया है और ये दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हैं और साथ में सिन्हा, बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी हैं, अजय कुमार हैं और बहुत सारे नाम इन्होंने हम तक पहुंचाए हैं। तो सहनवाज अंसारी, सतीश, उत्तम कुमार और बोधराज खोरवाल, बहुत सारे ईमेल आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईमेल करने के लिए। फिलहाल हम आपसे लेते हैं बाय बाय, टाटा करते हैं, अगले फ्रेम में आते हैं। बढ़िया एकदम सुनिए गाना और अगला प्रोग्राम जो आप जानते ही हैं, FM हॉटमेल।

नमस्कार, 2 बज रहे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खेलों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 39 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजमगढ़ आज विकास और समृद्धि के पथ पर लगातार अग्रसर है। यहां एयरपोर्ट और फोर लेन की कनेक्टिविटी है। श्री योगी ने कहा कि सरकार की योजनाओं के द्वारा अब बेटी के जन्म से स्नातक की पढ़ाई की व्यवस्था दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम से पहले उन्होंने एक जिला एक उत्पाद के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। आजमगढ़ के बाद श्री योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री बड़हलगंज में आयोजित कार्यक्रम में 295 करोड़ रुपये से अधिक की 319 परियोजनाओं की सौगात देंगे। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन

केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। स्वतंत्रता भवन में आयोजित 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान कृषि MSME पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विस्तार से अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री ने कहा, विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य लोक कल्याण है। दुनिया के जिन देशों ने प्रगति की है उन्होंने विज्ञान को समाज और मानवता के हित से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत कृषि और MSME क्षेत्र है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। श्री वैष्णव ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की तेज कुशल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनने के लिए अधिक टैबलेट आधारित परीक्षाएं शुरू की जानी चाहिए। वाराणसी में आज से विज्ञान भारत के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और वैदिक विज्ञान केंद्र में संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में देश विदेश से लगभग 1200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचार उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार वर्मा ने बताया कि इस अधिवेशन का उद्देश्य समसामयिक वैज्ञानिक और सामाजिक चुनौतियों पर विमर्श करते हुए वैज्ञानिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक कार्य योजना तैयार करना है। और इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: मैं हूँ मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

ईमेल ज्यादा होंगे या एक से अधिक होंगे, तो हो सकता है कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो ईमेल मैं ना पढ़ पाऊं। तो मुझे मौका दीजिए आपका ईमेल पढ़ने के लिए, अन्यथा अगर वो ईमेल नहीं पढ़े जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों का ईमेल एकदम एक ही ईमेल कॉपी पेस्ट हुआ जा रहा है। तो प्लीज थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए, और भी नए श्रोता हैं हमारे जो जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी मौका दीजिए। और हाँ, अपनी तरफ से हम इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं कि आपका कोई भी ईमेल मैं छोड़ूंगा नहीं, आपके जो भी फरमाइशी गीत हैं, आपके जो भी फरमाइशी मैसेज हैं, वो मैं ज़रूर पढ़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन थोड़ा सा सहयोग मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप प्लीज़ एक ही ईमेल करें, मैं कोशिश करूंगा कि सारे ईमेल मैं आपके पढ़ लूं। फिलहाल एक धमाकेदार गाने के साथ आपका स्वागत करूंगा। हो सकता है बहुत से लोगों की ये गीत जो बज रहा है वो बहुत से लोगों की फरमाइश में भी हो, तो ये गाना सुनिए और ईमेल भेजिए फटाफट। लेकिन हाँ, अपील का ध्यान जरूर रखिएगा।

दोस्तों दोस्तों दोस्तों 2:05 हो गया है और एक बार फिर से दिल से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम जिसे आप कहते हैं हॉट मेल। जी हाँ, मेरा नाम शिवम है और लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट कार्यक्रम हॉट मेल। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का ईमेल बिल्कुल एकदम टिमटिमाते हुए ईमेल सिस्टम से बाहर आने को हो रहा है। तो आपको एक बात ये भी बता दे कि अगर आपको अपने फरमाइशी गीत या अपने सुझाव या अपने कोई संदेश हम तक पहुंचाना है या किसी और तक खास मैसेज पहुंचाना है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। और एक स्पेशल अपील, प्लीज़ इस बात पे गौर कीजिएगा कि आप जो ईमेल भेज रहे हैं कृपया करके सिर्फ एक ही ईमेल भेजें, अन्यथा की स्थिति में आपका ईमेल अगर नहीं पढ़ा जाता है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। सूचना एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर आपके

अजीब फुर्सत से तो आपने ईमेल हम तक पहुंचाया है और बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार बरसाने के लिए। 138 ईमेल मैं देख पा रहा हूं अभी फिलहाल जो हमारे पेज पे खुला हुआ है वो आप सबकी फरमाइशी गीतों के जो है रिक्वेस्ट जो है हमारे पास आ चुकी है। तो अब इसको फुर्सत ही बोलेंगे कि भाई आप जो है फुर्सत से हमें ईमेल भेजी तो अब फुर्सत से हमें पढ़ने दीजिए। ढेर सारे ईमेल हम आपको पढ़ के आपको तक पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि एक ही ईमेल भेजे तो ज़्यादा अच्छा है। उत्तम कुमार भगत जी ने हमें ईमेल किया है, गाने की फरमाइश है। और श्वेता भगत, किसु ताशु, अर्णव, आनंद, सत्यम, बुहड़ा, गाक्षी, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत ने ये मिलके ईमेल किया है और हमें गाने की फरमाइश भी साथ में की हुई है। और अगला ईमेल जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो है दिलीप कुमार जी का। दिलीप कुमार जी हमें गाने की फरमाइश के साथ मुंदी चक भागलपुर बिहार से यह हमें ईमेल कर रहे हैं। साथ में नाम इन्होंने लिखा है दिलीप कुमार सोनी। नरेश जी का ईमेल आया, नमस्कार जी, और आप किसी भी गीत के साथ हमें ऐड कर ले दीदी जी, प्लीज़ पूरा नाम पढ़िएगा। और नरेश जी है इनका पूरा नाम जो साथ में और भी नाम लिखे उसके लिए। खैल बाजार पानीपत से है नरेश मल्होत्रा ईटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयला मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिव जी कॉलोनी रोहतक से, पीयूष सिक्का हैं, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का, शुक्रिया हमें शामिल करने के लिए। तो भैया आपका ईमेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेहर अरोड़ा जी हमें ईमेल कर रही हैं श्रीगंगानगर राजस्थान पद्मापुर ज़िला से। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति, भूमिका और गाने की फरमाइश भी ये हम तक पहुँचाई हैं। अगला मेल बोधराज खोरवाल जी का है, गाने की फरमाइश के साथ लिखते हैं उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज, भानु और गीतिका खोरवाल पूरी फैमिली के साथ। जय जी ने हमें फिर से मेल किया है होली चौक से और गाने की फरमाइश के साथ इन्होंने नमस्कार भी भेजा है। तो बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए। नरेश जी आपका ईमेल हमने पढ़ दिया है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात का। बोधराज का भी ईमेल हमने पढ़ दिया है। उत्तम कुमार भगत इनका भी हमने ईमेल पढ़ दिया। देखिए यही होता है कि जब ढेर सारे लोग जो है एक ही ईमेल ढेर सारे लोग करने लगते हैं तो फिर दिक्कत होने लगती है और लोगों का। दिग्दर्शन गौर करके हैं, ये मेरठ कैंट से लिखते हैं। दिग्दर्शन और कविता गौर फिल्म का नाम इन्होंने लिखा हुआ है और किसी भी सदाबहार गीत में हमें ज़रूर शामिल कर लीजिएगा और प्रोग्राम की इन्होंने बहुत बहुत प्रशंसा की है। मूसा शेख भाई साहब ने लिखा है प्यार भरा आदाब, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल मैं खैरियत से हूँ, आप बताइएगा। दुआओं में याद रखना, फिल्म और गाने की फरमाइश है सनवाद से शेख मूसा मोहसिन। ये बेहतरीन सा ईमेल हम तक इन्होंने पहुंचाया है। नीतीश देवगन, नीतीश कुमार देवगन, दुर्गा प्रसाद, पराग ट्रेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन, सप्रीम नमस्कार, पता है पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश देवांगन जी ने हमें ईमेल किया है। और बाबू अंसारी जी ने लिखा है गुड आफ्टरनून शिवम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, गाना जरूर सुनवा दीजिएगा। भाई हम गाना जरूर सुनवाएंगे क्योंकि हम गाना ही सुनवाना है, हमारा काम है गाना सुनवाना। और एक रेडियो

जो दोस्त हैं इनके, कुलदीप गुप्ता, फैज अंसारी और महेंद्र दीपन, गौस मोहम्मद अंसारी जी का भी इन्होंने बोला है जिक्र करने के लिए कि प्लीज इनका भी नाम आप जरूर ले लीजिएगा। सतीश अनेजा जी, नमस्कार शिवम भाई जी, और आपके प्रोग्राम का और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। फेस पर स्माइल की और जिंदगी में स्टाइल की कमी नहीं होनी चाहिए। गाने की फरमाइश के साथ चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा बिमला जनेजा ने हमें ये ईमेल किया है। और उदय भान पाल कार्यक्रम आदरणीय प्रस्तुत करजा जी, सादर नमस्कार। किसी भी गीत में शामिल करें, ग्राम रजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से श्रोता है उदय भान पाल, जयपाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश, दिव्यांश बघेल परिवार की तरफ से ये बेहतरीन सा ईमेल हम तक पहुंचाया है। और अब जरूरी हो जाता है एक बेहतरीन सा गीत आप ही लोगों में से किसी एक की पसंद का आप तक पहुंचाने की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: दो बजकर 25 मिनट और ये 27 सेकंड हो गए दोस्तों। प्रोग्राम आपका फेवरेट, जिसे आप कहते हैं हॉटमेल, और हमारे मोनू भैया लिखते हैं, भैया जी नमस्ते, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत नीक होंगे। बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं। और गाने की फरमाइश के साथ इन्होंने लिखा है, गणेश भगवान ने माता पिता को परिक्रमा करके सब कुछ जीत लिया, और हम सभी अगर माता पिता की सेवा कर लेते तो भगवान का भी आशीर्वाद देना ही पड़ता है, क्योंकि माता पिता भगवान का स्वरूप ही तो है। मोनू सेठ खालिसपुर भेल अमेठी से इन्होंने हमें ईमेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए। और अब मैं जो मेल पढ़ने वाला हूँ वो है अक्रम हुसैन साहब का ईमेल है। सलाम नमस्ते, प्लीज अपनी पसंद के किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। निगम वार्ड संख्या 28 नाज मंजिल महसौली सीतामढ़ी अक्रम हुसैन प्रिंस, जो डाक बाबू है, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, अरीज वसीम, नदीम अक्रम और शमीम अक्रम साहब ने ईमेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया ईमेल करने के लिए। हीरामणि वर्मा जी का सुप्रीम नमस्कार आया है दात्रेगी भाटपारा छत्तीसगढ़ से, साथ में

नाम है हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र वर्मा, नोखेलार वर्मा और बेहतरीन सी गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। तुलसी मस्कीन का ईमेल आया है, होस्ट जी गुड मॉर्निंग। तो भैया गुड मॉर्निंग नहीं है, ये है गुड आफ्टरनून। किसी भी प्यारे से रोमांटिक गीत में शामिल करें जी, थैंक्स। और गोवर्धन विहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चेतन मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, राजचित खुराना, केशु और रिधाना खुराना ने मिलकर ये बेहतरीन सा ईमेल हम तक पहुंचाया है। और अगला मेल है शाहजी बोटके, शाहजी बोटके, श्रीमती नंदा बोटके, हनुमान बोटके, उत्तम जमदाड़े, गाने की फरमाइश के साथ प्रसारक जी को नमस्ते। और हालांकि हिंगोली महाराष्ट्र से ये हमें सुन रहे हैं, वाह क्या बात है। राजकुमार जी ने लिखा है, ग्राम फ्रांसी हिसार से राजकुमार दाऊदी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, कोई भी गीत में हमें शामिल करें, बहुत शुक्रिया ईमेल शामिल करने के लिए। और अगला मेल मैं सिद्धार्थ गोंडाने जी का पढ़ रहा हूँ, एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ, अर्चनाताई, हीरा मणि, प्रणय, प्रतिभा गोंडाने परिवार की तरफ से बहुत ही बेहतरीन से गाने की फरमाइश के साथ इन्होंने हमें ईमेल पहुंचाई है। और रहमान इन्होंने अपनी बड़ी शानदार आईडी से ईमेल किया है, आपकी पसंद का कोई भी गीत, सुरीला सदाबहार गीत, सहेली रेडियो श्रोता शंग, बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से, बेबी शालिया, बेबी हलीमा, जिक्रा, आयशा और घूंघट रेडियो श्रोता संघ की तरफ से, जिला है धार, धर्मपुरी से इन्होंने ईमेल किया है। देखिए इन्होंने अपना एक मतलब एक संघ बनाया है, कितना बढ़िया सा काम है। रामेश्वर जी सादर नमस्कार, आपका हॉट मेल मैं ज़रूर सुनता हूँ और मेरे गीत ज़रूर सुनवा दीजिए, कई बार मैंने आपसे फरमाइश की है। अच्छा चलिए ठीक है, बढ़िया है आपका, हम ज़रूर ये गाना जो आपने हम तक भेजा है ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा जो है ये गाना आप तक पहुँचे। प्रिय आरजी जी नमस्कार, सुर सुगम रेडियो श्रोता संघ वीर गामम गुजरात से अजीत भावासार, प्रेमिला बेन भावासार, भावेश सनी, जैमिन कुमार, हेतल जैन, कृष्ण जैन, राकेश जैन, और फिल्म का नाम उन्होंने लिखा है और बहुत ही बेहतरीन सा ईमेल हम तक पहुंचाया है। कमल कांत भैया हमें ईमेल कर चुके हैं, किसी भी गीत में शामिल करें, पिपरिया से हैं ये, कमल कांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता समडील नौपारा से हैं, मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक, अंकुर राघव गुप्ता जी ने हमें ये ईमेल हम तक पहुंचाया है। ताज मोहम्मद का ईमेल पढ़ दिया है मैंने, अकरम हुसैन और मैक्सिमम लोगों का पढ़ लिया है मैंने, हरजिंदर शिंदे का ईमेल पढ़ के फिर हम गाना आप सभी का पसंद का सुनवाते हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए हमें। जी हाँ आपके पसंद का गीत आपके रेडियो ट्रैक पर लीजिए, ये रहा

भाई अपनी मोहब्बत में आप जो खो गए हैं वापस आ जाइए, 2:35 हो गया है। जी हाँ, मोहब्बत क्या चीज़ होती है ये हम और आप के समझ के शायद ये बाहर है। हम इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मोहब्बत की परिभाषा क्या है, मोहब्बत के दायरे कहाँ तक हैं, या उसकी सीमित जो उसकी लिमिट है वो शुरुआत कहाँ से होती है। ऐसा कुछ भी कहीं भी किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुराण में, कहीं भी किसी भी किताब में नहीं लिखा है। मोहब्बत जो चीज़ है वो बस एक एहसास है। ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेता हूँ ना, जैसे आप लोग अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। आपसे ही देख देख के, आपको ही पढ़ पढ़ के मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब आपको एक बार फिर से बताते चलिए कि 2:36 प्रोग्राम चल रहा है हॉटमेल। मेरा नाम शिवम है और मैंने बहुत से लोगों का ईमेल पढ़ लिया है, बहुत से लोगों के गाने बजा भी चुके हैं, और अब जो मैं मेल पढ़ रहा हूं तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं कि प्लीज़ एक ही ईमेल भेजिए, तो प्लीज़ एक ही

सुनिए, मेरा भी एक थोड़े दिन के लिए मतलब सुन लीजिए। आप लोगों को लगता है कि मतलब मैं 300 मैसेज भेज दूंगा तो वो क्या 300 बार ही गाने बजाए जाएंगे आपके? एक ही तो बार बजेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए प्लीज। समझदार हैं आप? तो अब जो मैं मेल पढ़ने वाला हूँ उनका नाम है शमशुल कमर राही जी का है और बहुत सारे मेल इन्होंने भेजा है। आपको बता दें कि आरजे जी आदाब, एनी सॉन्ग गंज डूवारा से है शमशुल कमर राही। शाहीन फातिमा अदनाम खान अनु खान साहब ने ये हमें ईमेल भेजा है, किसी भी मेल में शामिल करने के लिए बोला है। दीपेश जी जो हमें ईमेल कर रहे हैं वो ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से है। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांश और गाने की फरमाइश के साथ साथ इन्होंने बड़ी ही शानदार सी ईमेल भेजी है। शमशुल जी का ईमेल हमने पढ़ लिया है, आपको एक बार फिर से बता दें कि आपका ईमेल पढ़ दिया गया है। मायोसिन हाशमी जी ने हमें ईमेल किया है। प्यार भरा आदाब, आप अपनी पसंद के किसी भी गीत में शामिल कर लें, मेरा एड्रेस ज़रूर पढ़ दें। नई बस्ती गुंजुवारा से इन्होंने ईमेल किया है मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसिफ हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी जी ने ये ईमेल हम तक पहुँचाया है। और सैफुद्दीन अंसारी बक्सर बिहार से, शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीता रमेश साहू डुमराव बिहार से, डॉक्टर डब्लू अंसारी और डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी गोला बाजार बक्सर से इन्होंने ईमेल किया है। श्रद्धा नंद आर्या, अभय नंद आर्या और परमानंद आर्या सारिमपुर बक्सर से, राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी जी ने हमें ईमेल किया है और कहा है कि किसी भी गीत में हमें जरूर जरूर शामिल कर लें। डीके साहब का ईमेल आया है कि तुम्हारी यादों के झोंके मुझे सोने नहीं देते, भिगा देते हैं पलकों को मगर रोने नहीं देते। मैं अक्सर भूल जाता हूँ जरूरी काम सब अपना, वो बीते पल मुझे तुमसे जुदा होने नहीं देते। वाह क्या बात है। जैसे आकाशवाणी रेडियो नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु ने हमें ये ईमेल किया है और बड़ी ही प्यारी सी फरमाइश हम तक पहुंचाई है। अहमद फूल वाले का क्या मैसेज आया ये भी पढ़ लेते हैं। डियर होस्ट जी आदाब नमस्कार, आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है, हमें निराशा और नजर अंदाज कतई न करिएगा, मेरा मेल जरूर शामिल करिएगा। और गाने की फरमाइश के साथ छोटी बलिया करजत मुंबई से इन्होंने ईमेल किया है। और अहमद भाई फूल वाले, दुखीना सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद, काप सहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया अमन, अमाना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली की तरफ से ये गाना बेहतरीन सा इन्होंने जो भेजा है। शिव प्रकाश जी ने हमें एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जो अभी भी ओपन नहीं हो रहा है, ये ब्लैक हो गया है और इन्होंने लिखा है, हालांकि मैं इसे कन्वर्ट करके पढ़ लेता हूँ। श्री प्रकाश त्योजा खाग फतेहपुर, गुड आफ्टरनून सर, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और किसी भी गीत में श्री प्रकाश जी के ईमेल को शामिल करने के लिए कहा गया है। संजय ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से, नमस्कार जी, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, शानदार गीत, लाजवाब प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यस्मीन बानो ने लिखा है, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बिस्वा सीतापुर से हैं, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए और डेडिकेशन। अच्छा, सनीला शबनम काजल अवस्थी, इन तीनों लोगों को ये गाना सुनवाने के लिए बोला है। तौहीन रियान और लिखा है कि कागज की किस्ती थी, यादों का किनारा था, जो गुजर गया वो कल भी प्यारा था, जो आज है वो भी हमारा था। गुड आफ्टरनून शिवम सर, कैसे हैं आप, मलिहाबाद से हूँ और इन्होंने आम भेजा है, मेरा प्रोग्राम बहुत, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ किसी गाने में मुझे शामिल ज़रूर कर लीजिएगा। अगला मेल जो मैं पढ़ने वाला हूँ उनका भी नाम बताते चलूँ आपको, इनका नाम है रविंद्र मोहनदास, किसी भी गीत में शामिल कर दें, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और बहुत सारे नाम इन्होंने हम तक पहुंचाए हैं। तो चलिए अब वक्त है एक बेहतरीन सा गाना आप तक पहुंचाने का।

हाँ जी, तो कहाँ कहाँ बारिश हो रही है ये तो आप लोगों ने बताया नहीं कि भाई किनके यहाँ बारिश हो रही है और कितनी बारिश हो रही है, ये अगर पता चल जाए तो हम भी थोड़ा सा तर बतर हो जाए। और एक शिकायत की है जय जी ने हमें कि भाई शिवम जी, आपने तो हमारा मेल शामिल किया ही नहीं, ना ही मेल शामिल किया, ना ही नाम लिया। तो जय जी, आपका हमने दो बार नाम लिया है और अगर आप फोन रख के या अगर रेडियो छोड़ के अगर कहीं दूर चले गए होंगे तो आपको सुनाई नहीं दिया होगा। फिलहाल मैंने आपका ईमेल पढ़ा था तो इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। और शैलेश कुमार, नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से इन्होंने ईमेल किया है, लिखती हैं शिवम भैया को मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आज मेरी दीदी का की एनिवर्सरी है और मुझे अपनी मुझे गाना सुनाना है दीदी और जीजा जी के लिए, सुनाना चाहती हूँ। फिल्म की फरमाइश, गाने की फरमाइश दी है और दीदी नीलम, जीजा अमित शर्मा, सारा पीहू, रोशनी, बबीता संडीला से, गुलबसा दीदी, सबको ढेर सारी मुबारकबाद। भाई साहब, ऐसे ही सूखी सूखी एनिवर्सरी मिल रही है, मतलब बताइए, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें भी केक खाने को मिल जाता। फिलहाल रेडियो लखनऊ, नमस्ते जी, सेव वाटर एनी सॉन्ग, लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज बेगम इमरान नाज साहब ने हमें ईमेल किया है। नवाजिश शेख और दानिश शेख साहब हैं, अमन अफरीदी हैं, राधा नामदेव जी ने हमें ईमेल किया है, बहुत ही बेहतरीन। सोमदत्त ने हमें नाभा जिला पटियाला से ईमेल किया है, सोमदत्त कैरो ज्योति रानी कौर मनु, और लिखती हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और बहुत सारे ढेर सारे ईमेल आए उनको भी पढ़ते हैं। मोहम्मद सादिक खत्री साहब ने लिखा है, आपको दिल से आदाब, आप किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, शकीर अलकमान खत्री साहब हैं, अल्तमश हैं, रमेश गोंड, मोहम्मद शादाब खत्री साहब ने ईमेल हम तक पहुंचाया है। और संदीप मक्कर जी हैं, फिल्म के नाम के साथ, अच्छा देखिए, जो आपने अभी भी जो गाना लिख के भेजा, ये गाना जस्ट अभी बजा हुआ है, तो आपका ये जो नाम लिखा है वो भी बोल दे रहे हैं, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर और भरत कमल सैनी और जालंधर पंजाब से ये हमें ईमेल कर रहे हैं। संतोष जी हैं और ये बघेरा दुर्ग से हैं, संतोष नामदेव, सामर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव ये ईमेल किए हैं। अंकित खगरे जी हैं, हमें थैंक यू बोल रही हैं हरियाणा से, मोना कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम साहिल और ढेर सारे नाम इन्होंने हम तक पहुंचाए हैं। रोजी डिकेस्ट्रो हमेशा की तरह जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विली डिकेस्ट्रो के साथ ये गाना और ये ईमेल हम तक पहुंचाए हैं। राधे कुमार विद्यार्थी जी हैं, हमें ईमेल किए हैं बड़ी ही प्यारी सी, लिखते हैं कि आशा भोसले जी का गाना अच्छा ठीक है और ओम कुमार विद्यार्थी, राजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी और कुमकुम साक्षी, अच्छे लाल राय, बुलाकी वाले, फलाना झां, वाह क्या बात है। मनोज बंसल हरियाणा से सिर्फ नमस्कार इन्होंने लिख के भेजा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सरीफुद्दीन अंसारी, क्या बात है साहब, मैंने क्या बात है, बहुत ही शानदार लाइन लिखा है और गोरे रंग पे इतना गुरूर, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। आफ्ताब अंसारी साहब लिखते हैं, आज शिवम भाई को मेरा प्यार है नमस्कार, शेरवानी स्कूल, आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, आकाशवाणी रेनबो, हमारे दिल के बहुत करीब है। जी हाँ, हमारे भी बहुत करीब है। तेज बहादुर यादव जी ने लिखे हैं कि भाई शिवम जी, मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, अगर हो सके तो मुझे गीत सुनवा दीजिएगा। गांव मऊ शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से ये अभी हमें सुन रहे हैं, तो अब जल्दी से एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद लौट के आते हैं और भी कुछ ईमेल पढ़ लेते हैं।

जी हाँ, ये जन्मों जन्मों का बंधन तो है ही और प्यार का बंधन तो है ही, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और मुनेश कुमार राज ग्राम भानपुर हरोवा से ये हमें ईमेल करते हैं और ये लिख रहे हैं रेनबो हॉटमेल आरजी को शुभ दोपहर। खाली ईमेल ही पढ़ा जाएगा कि मेरा भेजा हुआ गाना कल बजाया नहीं गया था। अरे भैया, तो गाना तो लिख दिए होते, इतना ढेर सारा ईमेल किए, गाना लिख भी नहीं किए उसमें। अब बताइए इसमें हमारा गलती कहाँ है भैया। और ये नाम लिख बोले हैं कि भैया ले लीजिएगा, इनके घर में भी कोई शिवम है, शिवानी है, राधा रानी है, अनुराधा के साथ लक्ष्मी जी भी हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रही हैं। और अब ये जो मेल मैं पढ़ रहा हूँ, ये बहुत सारे ईमेल, सीताराम खगड़े, अहमद फूल वाले, सहारन नूर अंसारी, संदीप मक्कर, शहनाज अंसारी, सीताराम खगड़े और शीलू मौर्य जी ने भी हमें ईमेल किया है। शीलू मौर्य फैजुल्ला गंज लखनऊ से, सर पहले एफएम पर घर अखबार में रेडियो पे सुनती थी। अच्छा, घर पर ये सुनती थी, रेडियो सुनती थी, अब मैं अपने ससुराल में फ़ोन पे सुनती हूँ। और सर आज मौसम बहुत अच्छा है, मुझे आज गाना सुनवा दीजिए, ये मेरे हस्बैंड शोभित मौर्य जी की डेडिकेटेड है, एफएम के सभी लिस्नर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है, देखिए कितने ढेर सारे ईमेल है। रविंद्र जी, आलोक जी, रविंद्र अहमद, रवि कुमार जी का ईमेल आया है और जितेंद्र नामदेव, तुलसी जी का, लाल गिरी जी का भी मेल मैंने पढ़ दिया था आपको बता दे। और अब चलते चलते एक बेहतरीन सा गाना तो ज़रूर हम आपको सुनवा के जाएंगे। जावेद अख्तर साहब हैं, लवकुश यादव भाई, मैंने तो एक ही मेल किया था, मुझे भी शामिल कर लेते। लवकुश यादव जी, आपका ईमेल शामिल कर लिया गया, बिल्कुल भी नाराज ना होइएगा। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह कला कालका से, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, और ये इन्होंने बड़ा ही शानदार सा ईमेल भेजा है। मोहम्मद शादाब खान साहब ने विलेज बलिया संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई से इन्होंने गुड आफ्टरनून बोला है, किसी भी गीत में शामिल होने के लिए ईमेल किया है। तो जितने भी लोगों ने ईमेल किया, बहुत बहुत शुक्रिया।

और जिनका ईमेल नहीं पढ़ा गया भाई, हम उनसे हम क्षमा चाहेंगे। अगला जब कभी मौका मिलेगा तो आपका ईमेल और आपके गाने जरूर आप तक पहुंचाए जाएंगे। 2:56 हो गए हैं प्रोग्राम हॉटमेल से, शिवम को दीजिए अनुमति। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, भाई साहब कहीं जा नहीं रहे, सतरंगी में मिलेंगे आपको और एक बेहतरीन गाने के साथ छोड़े जा रहे हैं।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। इसके साथ ही उनकी फ्रांस और स्लोवाकिया की दो देशों की यात्रा शुरू होगी। फ्रांस में प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद वे स्लोवाकिया जाएंगे, जहां दोनों देशों के संबंधों को विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय, स्टार्टअप उद्यमियों और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां भी की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक की 319 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। श्री योगी ने कहा कि बंद पड़ी चीनी मिल में CNG प्लांट लगाकर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संकट के बीच देश में नियंत्रण की स्थिति बनाई है। उन्होंने कहा, प्रदेश में

लगातार हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें सीमेंट फैक्ट्री, आधुनिक पेंट और अत्याधुनिक मेडिसिन निर्माण का काम जल्द शुरू हो जाएगा। इससे पहले श्री योगी ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 39 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम से पहले उन्होंने एक जिला एक उत्पाद के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर

वर्ष भारत के लिए विकास, विश्वास और जन कल्याण का सबसे सुनहरा दौर साबित हुए हैं। सरकार की नीतियों और योजनाओं ने देश के हर वर्ग के जीवन के सकारात्मक परिवर्तन लाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। स्वतंत्रता भवन में आयोजित 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, MSME, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विस्तार से अपने विचार रखे। अधिवेशन में देश विदेश से लगभग 1200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। विज्ञान भारती के संगठन मंत्री ने बताया कि अधिवेशन का उद्देश्य वैज्ञानिक और सामाजिक चुनौतियों पर विमर्श करते हुए सशक्त आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य योजना तैयार करना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, 3:04 हो गया है और ये जो मौसम आप बाहर देख रहे हैं, कहीं धूप कहीं छांव, किसी ज़िले में बारिश हो रही है, किसी ज़िले में थोड़ा इंतज़ार हो रहा है, या किसी ज़िले में बारिश हो के बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। तो ये जो मौसम की संभावनाएं हैं, जो अदलता बदलता मौसम है, जिससे हम उम्मीद कहीं कभी अक्सर ज़्यादा लगा लेते हैं, कभी कभी उम्मीदें हम नहीं लगाते हैं। तो ऐसा अक्सर होता है कि जब हम उम्मीदें ज़्यादा लगा लेते हैं और उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो शायद हमारे और आपके जीवन में ऐसा एक मोड़ आता है कि जब हम उम्मीदें हमारी टूटती हैं तो तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो उम्मीद उतनी ही रखिए जितनी लोगों से आप कर सकते हैं। कोशिश करिए, उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है, खुद पे भरोसा रखिए और चल पड़िए अपने ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए उसी रास्ते पर। 3:05 सतरंगी दुनिया में शिवम आज आपके साथ है और एक बेहतरीन सा गाना आप तक ये रहा।

जी हाँ, बस इतना ही जानना जरूरी है कि बस आप अपने हैं, बाकी उसके बाद क्या है क्या नहीं है ये फर्क नहीं पड़ता। दोस्ती में ये सबसे बड़े मायने यही होते हैं कि आप हमको जानते हैं, हम आपको जानते हैं, बस। अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना है, अब के लोग को, मतलब अभी की हम ये बात नहीं कर रहे, बहुत पहले के लोग जब कभी फ़ोन पे ये बात होती थी या कभी मिलना मुलाकाना मुलाकात होती थी तो कहते थे लोग ऐसे बातों में, कह रहे भैया हमारे यहाँ भी आइएगा, भैया जो नमक चटनी नमक रोटी जो भी खाने को मिलेगी हम आपको खिलाएंगे, लेकिन आप आइएगा ज़रूर। तो दोस्तों ये एक मोहब्बत की वो एक अंतिम छोर होती है कि आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जो मेहमान आएगा, जिस परिस्थिति में है, जहां भी हैं, आप बस हमारे यहां आइए, जितना हमारे से बन पड़ेगा हम वो सेवा भाव जरूर आपके लिए रखेंगे और हम आपके लिए जरूर करेंगे। फिलहाल आज हम जो सतरंगी दुनिया में बात करने वाले हैं दोस्तों, वो हम आज आपके दैनिक जीवन से जुड़े चीज़ों पे बात करेंगे और थोड़ा हम ये भी कोशिश करेंगे आपके मन को टटोलेंगे कि आपके लेके इस बात को जो हम बात कहने वाले हैं आज, जिस पे बात होने उसकी, उसको लेके आपके मन में क्या विचार या क्या आप कहना चाहेंगे, इस पे ज़रूर हम बात करेंगे, क्योंकि हम सतरंगी दुनिया में जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम में भी आप अपने ईमेल के माध्यम से हमें ज़रूर अपना विचार हम तक भेजें। दोस्तों जैसे गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, बहुत से लोग घूमने निकल चुके हैं, बहुत से लोग घूम के आ चुके हैं बाहर आउट ऑफ स्टेशन, या बहुत से लोगों की अब भी प्लानिंग चल रही है कि भाई जून जुलाई और लोग अगस्त तक निकलते रहते हैं घूमने के लिए। तो ऐसे में जब हम छुट्टी मनाने कहीं जाते हैं, किसी राज्य में, किसी ज़िले में या देश में अगर हम जाते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का हमें इस बात का हिसाब किताब रखना चाहिए कि अगर हम किसी देश में जा रहे हैं, वहाँ के रस्म रिवाज, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के मॉन्यूमेंट की इज्जत, वहाँ की साफ सफाई, वहाँ की तहजीब और वहाँ के

कल्चर का, वहाँ की संस्कृति का कैसे ख्याल रखना चाहिए, क्या हमें हिसाब किताब रखना चाहिए, उस बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो रहिए तैयार, एफ एम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर हम करेंगे इंतजार आपके क्या भाव, आपके क्या विचार हैं, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया देख रहे हैं, तमाम तरीके की वीडियोज़ आपके पास भी आती जाती रहती हैं। आप भी एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, सभी अपनी अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, तो जब आप कहीं ऐसी जगहों पर जाते हैं और अव्यवस्था या वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा इतना बेहतरीन स्वागत करने के बावजूद जो हमारे लोग घूमने जाते हैं जाने अनजाने में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, कूड़ा करकट फेंक देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लगता है कि हाँ ये यहाँ नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? 3:13 शिवम आज आपके साथ है सतरंगी दुनिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, एक समझदार जागरूक नागरिक के लिए ये जरूरी हो जाता है कि जब आप किसी देश राज्य या जिले में हों तो तहजीब आपकी भी बनती है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: 3:22 प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में आपका दोस्त शिवम आज आपके साथ। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि अगर हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, किसी देश में जा रहे हैं, किसी राज्य में जा रहे हैं या किसी जिले में जा रहे हैं, तो हमें किस तरीके की कौन सी बातों का ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कहीं घूमने निकलते हैं और प्रोग्राम बनता है कि भाई इस बार जो है हम घूमने के लिए अगर जाएंगे तो अपनी कार से ही जाएंगे या अपनी टू व्हीलर से ही जाएंगे, तो अक्सर हम इस खुमारी में हम ये भूल जाते हैं कि किस राज्य में जा रहे हैं, किस जिले में जा रहे हैं, किस देश में जा रहे हैं और वहां के ट्रैफिक नियम क्या क्या है। और उस चक्कर में हम वहां के ट्रैफिक नियम जो है ओवर रूल कर जाते हैं। तो ऐसे में हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर हम अपने फोर व्हीलर से जा रहे हैं तो वहाँ के ट्रैफिक नियमों के बारे में जान लें, वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ लें, जान लें। आजकल तो इंटरनेट पर सारी चीज़ें उपलब्ध है और अगर उससे बेहतर यही होगा कि अगर आपको कोई जानने वाला परिचित अगर वहाँ कोई गया हुआ हो तो उससे हम जानकारी ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कभी जा रहे होते हैं कहीं घूमने के लिए और बढ़िया तेज़ वाला म्यूज़िक, एकदम खूब भयंकर वाला म्यूज़िक हम बजाते हुए जा रहे हैं, गाड़ी के चारों शीशे खुले हुए हैं, भाई पीछे वाली गाड़ी में फैमिली है, वहाँ के लोग भी हैं, जो वहाँ के लोग हैं वो भी आपके आने जाने से परेशान हो रहे हैं, या टू व्हीलर लेके जा रहे हैं, तेज़ आवाज़ वाली पटाखे वाली गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो वो जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो माहौल है, आपको नहीं लगता कि शायद कहीं ना कहीं ये हमारे आने जाने से प्रभावित होता है? अक्सर ऐसे तमाम सोशल मीडिया हैंडल पर ऐसे दिखाया जाता है कि पर्यटक जब वहाँ घूमने जाते हैं कहीं भी अच्छी जगहों पे, तो तमाम तरीके की जो पॉलिथीन लेके जाते हैं, प्लास्टिक बॉटल लेके जाते हैं या गार्बेज बैग लेके जाते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ छोड़ के चले आते हैं। तो सुकून तलाशने की चक्कर में आप वहाँ जाते तो हैं, लेकिन आप शायद जाने अनजाने में वहाँ के लोगों को, वहाँ के स्थानीय लोगों को, वहाँ के स्थानीय कल्चर को आप शायद कहीं ना कहीं दुख तकलीफ पहुंचाते हैं। सोचिएगा जरूर, बात बहुत गंभीर है और ये करनी जरूरी है आपसे।
1: जगाती है कयामत कोई।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से महकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

3:37। जी हाँ, कुछ कुछ होने लगता है जब हम कहीं बाहर वादियों में घूमने जाते हैं या किसी आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, तो अक्सर ऐसा हमारे साथ होता है कि भाई यहाँ हम आए हैं तो हम क्या क्या खाने पीने का ध्यान रखेंगे। फिलहाल हम आज बातें कर रहे थे इस टॉपिक पर कि अब जो समय चल रहा है, जो वेकेशन हम मनाने जाते हैं, समर वेकेशन मनाने जाते हैं या विंटर वेकेशन मनाने जाते हैं, कहीं बाहर किसी देश, किसी ज़िले में या किसी राज्य में घूमने जाते हैं, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो हम वहाँ पे भी जाके फास्ट फूड ही खाने के लिए बिल्कुल लालायित रहते हैं। तो कोशिश किया कीजिए कि वहाँ के लोकल फूड ही खाने को ट्राई करिए, क्योंकि फास्ट फूड वगैरह तो आपके घर भी मिल जाएगा, आपके ज़िले में भी मिल जाएगा। तो कोशिश करिए कि वहाँ का जो लोकल फूड है वो ट्राई करिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग जाते हैं ट्रैकिंग पर जाते हैं, तो क्या होता है कि हर 2-4 किलोमीटर पर नूडल्स मिल रहा होता है। भाई हम नूडल्स खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, नूडल्स खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। देखिए, आप जिस पर्पस पे गए हैं, सुकून ढूंढने गए हैं, घूमने गए हैं, वादियों के नज़ारों को देखने गए हैं, वहाँ की चीज़ों को एंजॉय करने गए हैं, तो उस चीज़ को लेके आप बिल्कुल फोकस रहिए। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने जब ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ में इतने ढेर सारे खाने पीने के आइटम ले लेते हैं, प्लास्टिक बैगेज ले लेते हैं इतने ढेर सारे, कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वो एक तरीके से कूड़े के ढेर में वहाँ छोड़ के आते हैं। तो जानते हैं ऐसा क्या होता है, एक तो नेचर पे बहुत बुरा ही प्रभाव पड़ता है, दूसरा ये है कि ये भी होता है कि वहाँ के लोग आए थे और वो गंदा करके गए। आपको पता है जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो आपका जो बिहेवियर है, आपके जो संस्कार हैं, आपका जो कल्चर है, वो बहुत मायने रखता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। जब आप किसी देश में हो, किसी अलग राज्य में हो, तो बहुत मायने रखता है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी भी देश में हो, लखनऊ वाले उनकी बातों से, उनके हाव भाव से, उनकी तहजीब से लोग पता कर ही लेते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं। 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। जी हाँ, ये लखनऊ है जनाब, यहाँ हर चीज़ मुस्कुरा के बड़े ही अदब, बड़ा ही नज़ाकत के साथ पेश की जाती है। तो हर एक ज़िले की, हर एक राज्य की अपनी एक पहचान होती है, तो उस पहचान को आप कहीं भी जा रहे हों तो उसको साथ ज़रूर लेके जाएं, तहजीब के साथ।

जी हाँ, अल्लाह तो जान ही रहा है सारी चीजें, भगवान तो जान ही रहा है चीजें, लेकिन आपको भी बताते चले कि 3:45 हो गया है इस बात को करते करते। और ब्रजेश सिंह दीपू इटहुआ कैसरगंज बहराइच से हमें ईमेल किए, गुड आफ्टरनून शिवम भैया, आज कार्यक्रम ज्यादा था इसलिए अब ईमेल कर पाया हूँ, कार्यक्रम एकदम जबरदस्त चल रहा है। भैया कार्यक्रम जबरदस्त चल रहा है लेकिन हमने जो बातें बताई वो आप सब तक पहुंच रहा है कि नहीं, मैं क्या बातें कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम जब घूमने जाते हैं कहीं, किसी मॉन्यूमेंट पे जाते हैं, किसी ऐतिहासिक स्थल पे जाते हैं, स्मारक पे जाते हैं, तो उसकी वैल्यू हम अपने दिमाग में रख के तो जाते हैं, लेकिन जब वहाँ का माहौल, वहाँ की वाइब थोड़ी अलग हो जाती है तो हम उस चीज़ को तुरंत ही स्किप कर जाते हैं कि भाई हम किस मूड में आए थे, क्या देखने आए थे और क्या मूड में हमारे चल रहा होता है। अक्सर मैंने देखा है कि किसी स्मारक पे, किसी मॉन्यूमेंट पे हम जाते हैं तो हम कई सारी लापरवाही करते हैं। अब जैसे देखिए, अब एक वीडियो सामने आया था, बहुत पहले की बात है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो किसी बहुत ही पुरानी जगह पे गए होते हैं, जैसे पाषाण काल के जो अवशेष मिले होते हैं उस तरह की इमारत होती है, या हड़प्पा सभ्यता कालीन की जो होती है ना, कि आप इस नगर को देखिए, इस शहर को देखिए, कोई मॉन्यूमेंट होता है लगभग, तो वहाँ जब गए होते हैं तो जो वहाँ की मिट्टी की दीवारें होती हैं उसको देख के लोग देखने जाते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं कि उन दीवारों को गिरा रहे होते हैं। तो ऐसा करना क्या आपकी नज़र में कहीं सही है? किसी की नज़र में सही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें जो न जाने कितने हजारों सालों से वहाँ बनी हुई हैं, बनाई गई हैं,

तरीके से क्या रखा गया है वो हमें देखने के लिए होते हैं। हमें उससे कुछ सीखने को होता है कि जब लोहे नहीं थे, जब पत्थर के घर बनाया जाए, जब सीमेंट नहीं होता था तब किस तरीके से घर बनते थे, जब उतने सामान हमारे पास, उतनी सुविधाएं नहीं थी, उसके बावजूद वो चीज़ें बनी, तो हमें वो देखने के लिए भेजा गया है। हम वो देखने के लिए आए, वो मेहनत, वो कारीगरी, वो एक कुशलता हमें देखने को मिली है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे खिलवाड़ कर रहे होते हैं। हम वहाँ चौक लेके और कोयला लेके हम वहाँ डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं, नाम लिखे जा रहे हैं और किसी के प्रति संदेश लिखे जा रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी मॉन्यूमेंट पर जा रहे हैं, तो उस मॉन्यूमेंट के बारे में जाने, उसकी तहजीब, उसके बारे में पढ़ें, ये ज़रूरी हो जाता है। और भी बातें ढेर सारी हैं। 3:48, ये बेहतरीन सा गाना आपके लिए। और हाँ, फिलहाल सावन तो नहीं है, लेकिन इस मौसम को देखते हुए ये गाना मैं जरूर आपको सुनाऊंगा।

जी हाँ भैया, तो अगर आप सावन में छमछम नाच लिए हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि बीमारियां भी आपके आस पास वो बिल्कुल एकदम मौका ताड़ में रहती हैं कि आप कब छमछम नाचिए और हम कब कब व्यवस्था हम जो है आपकी तबीयत पे अटैक करें। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगली बार जब आप बारिश में नहाइएगा तो थोड़ा सा संभल के नहाइएगा। फिलहाल गुलाबसा सिद्दीकी जी ने हमें ईमेल किया है कि जी जी शिवम भाई, हम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, आप जो जानकारी दे रहे हैं वो बड़ी बहुत बहुत काम की है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, देखिए लोग जागरूक हैं और इस बात को ध्यान रख रहे हैं कि हमने क्या बोला और किस तरीके से आपको समझना है। फिलहाल 3:53 हो गए हैं, प्रोग्राम सतरंगी दुनिया से हम वाइंड अप करेंगे और अलका जी आ गई हैं बेहतरीन सा प्रोग्राम लेके। और हाँ, ये जाते जाते ज़रूर कहेंगे आपसे कि कहीं भी आप घूमने जा रहे हैं, ये ज़रूर कोशिश करिएगा कि आपकी वजह से कोई और फैमिली, कोई और परिवार असहज ना हो और आप खुश रहें, स्माइल करते हुए जाएं और वहाँ पे जो वहाँ की संस्कृति है, जो वहाँ का कल्चर है, उसको ज़रूर देखें और अपनी संस्कृति का भी प्रचार प्रसार करें। बिल्कुल एकदम शालीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना मुझे लगता है कि बेहतर है, ये मेरा निजी विचार है। लेकिन फिलहाल मैं आपसे कहूंगा टाटा एंड बाय बाय, एक गाने के साथ आपको छोड़ जाऊंगा, फिर मिलूंगा किसी और दिन किसी और प्रोग्राम में। तब तक सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, चार बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। इसके साथ ही उनकी फ्रांस और स्लोवाकिया की दो देशों की यात्रा शुरू होगी। फ्रांस में प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद वे स्लोवाकिया जाएंगे, जहां दोनों देशों के संबंधों को विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक की 319 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। श्री योगी ने कहा कि बंद पड़ी चीनी मिल में CNG प्लांट लगाकर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संकट के बीच देश में नियंत्रण की स्थिति बनाई है। उन्होंने कहा, प्रदेश में लगातार हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें सीमेंट और आधुनिक पेंट फैक्ट्री और अत्याधुनिक मेडिसिन निर्माण का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इससे पहले श्री योगी ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 39 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री विभिन्न जनपदों में पत्रकार वार्ता कर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में आज महोबा में श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बीते 12 वर्ष भारत के लिए विकास, विश्वास और जनकल्याण का सबसे सुनहरा दौर साबित हुए हैं। वहीं गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया संवाद करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास को शासन का मूल आधार बनाया है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने वाराणसी में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सोच बदली है और मोदी है तो मुमकिन है का नारा देश दुनिया में चरितार्थ हुआ है। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान

AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम का निधन हो गया। वायुसेना के ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वो उनके साथ मजबूती से खड़ी है। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जांच जारी है।

अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान कृषि एमएसएमई पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विस्तार से अपने विचार रखे। अधिवेशन में देश विदेश से लगभग 1200 प्रतिनिधि शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीएचयू परिसर स्थित निर्माणाधीन अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता के साथ परियोजना पूर्ण करने के निर्देश दिए। बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निर्माण कराया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं समय हूँ और मैं हरीश बिमानी हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

ब्यूटीफुल ट्रैक, एक मजबूत प्लेटफॉर्म और आरजेएल का आपके साथ 100.7 एफएम रेनबो पर आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आज का यूथ वेव अलका के साथ। तो बस इस तरह के खूबसूरत गानों को एंजॉय करेंगे और बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट के बारे में आज यूथ वेव में।

सो माय डियर लिसनर्स, अगर हम आज के दौर की यानी कि 2026 के हिसाब से इस समय की बात करें या इस दौर के हिसाब से देखें, तो स्किल डेवलपमेंट का जो पूरा नजरिया है वो एक्चुअली बदल ही चुका है। कुछ ऐसी बातें जिन पर आमतौर पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, जैसे इनमें से एक है मेटा स्किल। कौशलों को सीखने का भी एक कौशल, यानी कि ये भी एक आर्ट है कि आप कौशल को कैसे सीख रहे हैं या कौशल को किस कौशल से सीख रहे हैं। आजकल किसी भी एक स्किल को सीखकर जिंदगी बिताना बेहद मुश्किल है, क्योंकि तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो बहुत तेजी से बदल भी रही है और आगे भी बढ़ रही है। इसीलिए सबसे बड़ी स्किल जानते हैं क्या है, लर्निंग हाउ टू लर्न, यानी कि कैसे आपको सीखना है, ये भी एक बहुत बड़ा सीखने का तरीका है, यानी जल्दी कैसे सीखना है। अब इसे हम दो भागों में डिवाइड जरूर कर सकते हैं, कि इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। आपको बता दें कि अनलर्निंग यानी कि भूलना, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि पुरानी पड़ चुकी जो भी तकनीक है या फिर जो तौर तरीके हैं उनको दिमाग से आपको फौरन रिमूव करना होगा, एज सून एज पॉसिबल। जी हाँ, पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसे आप जब तक अपने ब्रेन से रिमूव नहीं करेंगे, नई को जगह नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अनलर्निंग इसका सबसे पहला पॉइंट है। और दूसरी बात होती है स्पीड लर्निंग, यानी कि अब बात आती है नई तकनीक को अडॉप्ट करने की और उसे सीखने की। किसी भी नए सॉफ्टवेयर टूल या किसी भी नई भाषा के बेसिक्स को आप कितनी जल्दी सीखते हैं, इसमें आप कितनी जल्दी मास्टर होते हैं, इस कला को कितनी जल्दी सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आपने सुना होगा ना अक्सर कि 20 घंटे में इस कोर्स को आप कंप्लीट, 12 घंटे में, 25 घंटे में। तो ये जो स्पीड लर्निंग होती है, इससे आप बहुत तेजी के साथ जो नया स्किल है, नया कौशल है, उसको सीख सकते हैं।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
2: शाम होने को है।
1: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूं। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहां हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब अली।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: Autonomous body under the Ministry of

0: Stay tuned.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड दूर संचार संवर्ग में कनिष्ठ दूर संचार अधिकारी जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के पद हेतु प्रत्यक्ष भर्ती योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी और नवीनतम अपडेट के लिए BSNL की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका पता है www.bsnl.co.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। चिकित्सा अधीक्षक, नर्सिंग सहायक, परीक्षा सहायक नियंत्रक, उप नर्सिंग अधीक्षक, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, लेखा अधिकारी, सहायक भंडार अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, चालक ग्रेड 2। इसके अतिरिक्त अनुबंध के आधार पर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, सीनियर प्रोग्रामर, जनसंपर्क अधिकारी, सहायक ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, विधि अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सहायक अभियंता, स्वच्छता अधिकारी, बायोमेडिकल इंजीनियर, लॉन्ड्री मैनेजर और परफ्यूजनिस्ट। इच्छुक उम्मीदवार एम्स देवघर की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.aimsdevghar.edu.in। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पुस्तकालय अध्यक्ष, अधीक्षण अभियंता, उप पुस्तकालय अध्यक्ष, उप कुल सचिव का

0: कार्यकारी अभियंता, सहायक कुल सचिव, सहायक कार्यकारी अभियंता, खेल अधिकारी और उप कुल सचिव। अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए देखिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता की वेबसाइट apply.iiserkol.ac.in। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है जिनमें विशेषज्ञता के आधार पर निर्धारित विभाग हैं: एनाटॉमी, एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पेडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, फिजियोलॉजी, साइकियाट्री, रेडियो डायग्नोसिस, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। वेतन संरचना, आयु, योग्यता शर्तें, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, शोध प्रकाशन और अन्य शर्तों के बारे में विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.esic.gov.in। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 27 जुलाई 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

वक्त हुआ है 4:30 और 50 सेकेंड और इस वक्त आरजे अलका आपके साथ है और आप इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त यूथ वेव 100.7 एफएम रेनबो पर। और बात क्या हो रही है? बात हो रही है स्किल डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल ये

माय डियर लिसनर्स, बात कर रहे हैं इस वक्त स्किल डेवलपमेंट की और कुछ बेसिक बातें मैंने शुरू की थी इस प्रोग्राम के शुरुआत में आपके साथ और आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं माइक्रो स्किल की। भाई देखिए, माइक्रो स्किल का जमाना है, छोटा पैक बड़ा धमाका। आपको किसी फील्ड का बहुत बड़ा एक्सपर्ट बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज का समय है, आज का ये जो दौर है, इसमें माइक्रो स्किल की बहुत ज्यादा डिमांड है और ये एक ऐसी छोटी और एक ऐसी स्पेसिफिक स्किल होती है जिसे कुछ ही हफ्तों में आप बहुत ईजिली सीख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको वन बाय वन बताते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, AI, जैसे कि चैट GPT या कुछ अन्य टूल्स जिनसे आप हेल्प लेते हैं। इनसे सही और सटीक काम एक्चुअल में कैसे करवाना है, इसके लिए सही निर्देश सीखना एक बहुत ही माइक्रो स्किल होती है जिसे आप सीख सकते हैं, क्योंकि AI का इस्तेमाल करना इजिली बहुत ही कॉमन तरीके से हर किसी को नहीं आता। अब इसका इस्तेमाल, आपको इन टूल्स का इस्तेमाल सटीक तरीके से कैसे करना है, इसको भी सीखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये बहुत शॉर्ट पीरियड लर्निंग होती है, इसे आप बहुत कम समय, विद इन अ वीक, आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। उसके बाद कुछ आते हैं क्यूरेटिव कंटेंट। जी हाँ, इंटरनेट पर बहुत जानकारी आपको पता है अवेलेबल होती है, बहुत सारा जानकारी का समंदर होता है, लेकिन उसमें डूबना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बिखरी हुई ये जो जानकारियां हैं इंटरनेट पर, गूगल पर, इन सब पे आपको इनको समेट कर बहुत आसान भाषा में आपको लोगों के सामने इसको पेश करना है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल होती है। एक बड़े से समंदर से आप पानी को निकाल कर ला रहे हैं और उस पानी का इस्तेमाल कैसे लोगों के लिए किया जा रहा है, किस काम आ रहा है, ये बहुत मायने रखता है। उसके बाद आती है माइक्रो वीडियो एडिटिंग, सिर्फ एक मिनट की रील्स को। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा बहुत शॉर्ट पीरियड की जो रील्स होती हैं या फिर जो शॉर्ट्स होते हैं, इनको एक ऐसा तरीके से एडिट करना कि लोग उसे देखने में खुद को रोक ना पाए। मतलब होता है ना कि आपकी उंगलियां बहुत तेज़ी से चलती हैं आपके फ़ोन पर, तो एक ऐसी रील जो बहुत कम समय की है लेकिन आपको बांध कर रख सकती है, इस तरह से आप एडिटिंग करें किसी रील की या किसी शॉर्ट्स की, ये बहुत मायने रखता है। तो ये जो माइक्रो एडिटिंग होती है, वीडियो एडिटिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसे सीखना और इस पर काम करना जो है एक बहुत अच्छी स्किल के नज़र में देखा जाता है, स्किल के तौर पर इसे देखा जाता है।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: अरे चिंटू तुम समोसे का खाली आलू आलू क्यों खा रहे हो?
2: अरे भाई बहुत बीमार चल रहा हूँ मैं और डॉक्टर ने बाहर का खाने को मना किया है, बस इसीलिए अंदर का आलू खा रहा हूँ।
3: अरे रीमा सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
7: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
8: और दोस्तों अब बात करते हैं स्किल स्टैकिंग की। जी हाँ, स्किल का कॉम्बो पैक। अगर आप सिर्फ एक चीज में अच्छे हैं तो कंपटीशन आपके लिए बहुत तगड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप दो या तीन अलग अलग स्किल को मिला देते हैं तो आप यूनिक बन जाते हैं। जी हाँ, यानी कि अनोखे बन जाते हैं और इसी को कहते हैं स्किल स्टैकिंग। फॉर एग्जांपल चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपको रेडियो या पॉडकास्टिंग का शौक है, साथ में आपकी हिंदी की जो व्याकरण है, हिंदी ग्रामर जो है वो आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पकड़ है आपकी, और आप बच्चों की मनोविज्ञान भी थोड़ी बहुत समझते हैं, संभाल लेते हैं, तो इन तीनों को मिलाकर आप बच्चों के लिए एक बेहतरीन और एक बहुत ही अच्छा ऑडियो एजुकेटर आप बन सकते हैं या फिर स्टोरी टेलर आप बन सकते हैं। तो ये हो जाता है एक ऐसा कॉम्बो पैक जो जनरली मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आपके अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज हैं तो उन्हें मिक्स मैच कर दीजिए और बना दीजिए एक बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर, या अगर आप ऑडियो एजुकेटर हैं तो आप वो भी बन सकते हैं, एक बहुत अच्छा कॉम्बो पैक तैयार कर

अब चूंकि बात स्किल डेवलपमेंट की हो रही है तो उसमें ह्यूमन स्किल की अगर हम बात करें, ह्यूमन ओनली स्किल, तो इसका एक अपना अलग ही पार्ट होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे रोबोट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है ह्यूमन ओनली स्किल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे जो स्किल है उनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जो सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है। इन्हें फ्यूचर प्रूफ स्किल भी आप कह सकते हैं। स्टोरी टेलिंग इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपनी बात को आप इस तरीके से सामने वाले के सामने रखते हैं कि वो उसके दिल को छू जाए, चाहे वो रेडियो पर आप बोल रहे हो, चाहे वो क्लासरूम में बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, या फिर किसी बिजनेस में बड़ी डील कर रहे हो, उस वक्त आपका प्रेजेंटेशन का जो तरीका है, स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपने किस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट किया है, किस तरीके से अपनी बात को रखा है, क्योंकि कभी कभी वही सेम बात आपके रखने का तरीका अलग होता है, सामने वाले का रखने का तरीका अलग होता है, किसी और की बात समझ में आ जाती है लेकिन आपकी बात उतनी प्रभावी नहीं हो पाती है। तो ये होता है एक प्रेजेंटेशन का तरीका। ये भी अपने आप में एक बेहतरीन स्किल है। अभी और भी करेंगे बातें आपके साथ शेयर। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो RJ Alka के साथ। आप एंजॉय कर रहे हैं यूथ वेव।

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: वेल फ्रेंड्स, टाइम हो गया 4:54 और वक्त ये कह रहा है कि प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम तो हो गया है, लेकिन लेकिन लेकिन आपको थोड़ी सी बातें बतानी रह गई थी। जो बात हम कर रहे थे ह्यूमन ओनली स्किल के बारे में, उसके बारे में तो अगला जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एक्टिव लर्निंग। जी हाँ, जो लोग अक्सर जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं सुनते हैं, सामने वाले की ज़रूरत और उनकी जो भावना है उसको समझ पाना आज के दौर में ये बहुत ही कठिन स्किल होता है। यानी कि सबसे पहले जो है वो एक्टिव लिसनिंग के आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट बनना है, यानी कि आपको एक एक्टिव लिसनर बनना है। सुनना बहुत ज़रूरी है, सामने वाले की भावनाओं को समझना बेहद ज़रूरी है, ये एक बेहतरीन स्किल के तौर पर काम करता है। सो फ्रेंड्स, स्किल डेवलपमेंट जो है इसका मतलब हमेशा कुछ नया, कोई नया सर्टिफिकेट या कोई नया कोर्स हासिल करना नहीं होता है। कभी कभी किसी बहुत ही जटिल विषय को एकदम सरल और मज़ेदार बनाकर किसी भी के सामने रख देना, किसी बच्चे को समझा देना, ये भी अपने आप में एक बेहतरीन कमाल की स्किल होती है और इसे हम फिनमैन टेक्निक भी कहते हैं। जी हाँ, इसे हम फिनमैन टेक्निक भी कहते हैं। तो अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बनाइए, ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी स्किल है। और बहुत सारी बातें ऐसे ही शेयर करते रहेंगे आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम यूथ वेव में। फिलहाल वक्त हो गया इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का और आपको लेकर चलेगा नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सा गाना सभी के लिए।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक की 319 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नया भारत सुरक्षा का माहौल देता और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम भी करता है। उन्होंने कहा कि धुरियापार में बंद पड़ी चीनी मिल में सीएनजी प्लांट लगाकर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संकट के बीच देश में नियंत्रण की स्थिति बनाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनका निर्माण का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इससे पहले श्री योगी ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 39 विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री विभिन्न जनपदों में पत्रकार वार्ता कर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में गोरखपुर में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया संवाद करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास को शासन का मूल आधार बनाया है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने वाराणसी में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सोच बदली है और मोदी है तो मुमकिन है का नारा देश दुनिया में चरितार्थ हुआ है। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अमरोहा में मंडलीय समीक्षा बैठक की। महाराजगंज में राज्य मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र दयालु और बदायूं में डॉ अरुण कुमार सक्सेना, वहीं हापुड़ में वन पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमा राम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम वीरगति को प्राप्त हुए हैं। वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वो उनके साथ मजबूती से खड़ी है। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जांच जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। स्वतंत्रता भवन में आयोजित 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परम्परा पर विस्तार से अपने विचार रखे। अधिवेशन में देश विदेश से लगभग 1200 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक के अलावा बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। बीते 24 घंटे में राजधानी लखनऊ, उन्नाव, अयोध्या समेत आसपास

के जनपदों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी कई जनपदों में मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान जताया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सौदर्शन रसात में गहत सफ़ेम रेनबो पर आई सुनते हैं विशेष कार्यक्रम।
3: विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सरकार ने इस अवधि में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से देश के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में व्यापक बदलाव लाने का कार्य किया है। गरीब, वंचित, ग्रामीण, महिला, युवा और छोटे व्यवसायियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई योजनाओं ने आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
5: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है।
4: उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल पूरे होने पर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 5 जून को एक पेड़ माँ के नाम और बृहद वृक्षारोपण अभियान के साथ इसकी शुरुआत हो गई है, जबकि अभियान का समापन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बड़े स्तर पर योग कार्यक्रमों के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि ये कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन न होकर जन भागीदारी और जन जागरण का व्यापक अभियान बने। लखनऊ आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया बदले हुए भारत को देख रही है।
6: मैं समझता हूं कि उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊंचा हुआ है, और यह बात केवल एक उनके मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सच्चाई है। सारी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है कि भारत अब पहले का भारत नहीं रहा, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, बल्कि भारत एक ताकतवर भारत बन गया है।
4: प्रदेश सरकार की कोशिश है कि लोगों तक सरकार के कामकाज और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता हो। इन्हीं योजनाओं और उनके प्रभाव की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ने बड़े पैमाने पर सामाजिक सुरक्षा देने का काम किया है। गाजियाबाद के रहने वाले पवन कौशिक ने बताया कि पहले वो किराए के मकान में रहते थे और हर एक दो साल में उनको मकान बदलना पड़ता था। बापू धाम योजना में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना मकान लेने का सपना देखा, जो पूरा भी हुआ। उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों के खुद के घर की आशा को पूरा किया है।
7: गरीब आदमी है जो मकान नहीं ले सकते, इतने साल से किराए पर रह रहे हैं, कम से कम उनके पास अपना मकान होगा और वो इधर उधर नहीं भटकेंगे। जैसे मैं अभी बार बार बदलता रहा मकान, अब कम से कम एक स्थायी होगा मेरा और मैं वहाँ आराम से रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं कहूँगा कि मोदी जी ने भी बहुत अच्छा करा कि भाई इन्होंने ये गरीब आदमी के लिए चलाया।
4: केंद्र सरकार द्वारा 6 वर्ष पूर्व शुरू की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर रेहड़ी पटरी ठेला लगाने वाले और छोटे दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने में बेहद मददगार साबित हुई है। इस योजना से अमरोहा में हजारों लोग अपना व्यवसाय शुरू कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। यहां के रहने वाले रोहित का कहना है कि योजना में धनराशि बेहद आसान तरीके से बिना गारंटी के मिल जाती है।
8: जो मुझे स्वनिधि योजना के तहत जो मुझे लाभ मिला है और जिस तरीके से मुझे लोन दिया गया है कारोबार करने के लिए, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। मैंने सरकार से 10,000 का लोन पहले लिया था, जो मैंने पहले छोटी दुकान करी थी, उसके बाद 20,000 का दिया था, फिर आप 50,000 का लोन दिया है मुझे। सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ और आगे जो जनता है उनसे भी यही कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार की जो स्कीम योजना चल रही है आप इसका फायदा उठाएं और ताकि हम गरीब लोग अपने कारोबार में बिजनेस में आगे बढ़ सकें।
4: महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आर्थिक प्रगति में सहभागी बनाने में लखपति दीदी योजना बड़ी

0: प्रभावी साबित हुई है। इस पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक करना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तर प्रदेश में 31 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर सामाजिक विकास का हिस्सा बन रही हैं। गोरखपुर की रहने वाली संगीता पांडे ने बताया कि वो पैकेजिंग का काम 2013 से कर रही हैं। लखपति दीदी योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को न केवल स्वरोजगार मिल रहा है बल्कि आर्थिक विकास को भी मिल रही है।
1: मैं पैकेजिंग का काम करती हूँ जिसकी शुरुआत मैंने 2013 में 1500 रुपए से की थी, लेकिन उन दिनों परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मुझे ऋण लेने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसीलिए मैंने अपनी ज्वेलरी रख के गोल्ड लोन लिया और अपने काम को आगे बढ़ाया। लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि इतनी आसानी से ऋण मिल रहा है और महिलाएं अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ा रही हैं। हमारी संस्था को भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 करोड़ का प्रोजेक्ट ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के विकास के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए दिया है, जो कि 4 करोड़ के प्रोजेक्ट से हम टेराकोटा की पैकेजिंग करेंगे, जिससे टेराकोटा हमारा ब्रांड एम्बेसडर भी बनेगा और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो हम सभी महिलाएं मिलके अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।
0: लखपति दीदी योजना के बाद बात पर्यटन विकास की करें, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रसाद और हृदय योजनाओं ने प्रदेश की धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत नगरियों के विकास को नई दिशा दी है। प्रसाद योजना के तहत वाराणसी, अयोध्या, मथुरा और नैमिषारण्य जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में पर्यटन सुविधाओं, घाटों, मार्गों, प्रकाश व्यवस्था और यात्री सुविधाओं का विकास किया गया है, जबकि हृदय योजना ने वाराणसी सहित ऐतिहासिक शहरों की विरासत संरचनाओं के संरक्षण और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा दिया है। वाराणसी में भारत पर्यटन के उपनिदेशक पावस प्रसून ने बताया कि इन योजनाओं से यहां पर काफी कार्य कराए गए हैं, जो यहां आने वाले पर्यटकों को बरवसी आकर्षित करते हैं।
2: वाराणसी में लगभग 100 करोड़ की पर्यटन विकास परियोजनाओं अपनी स्वदेश दर्शन, प्रसाद तथा असिस्टेंस टू सेंट्रल एजेंसीज स्कीम्स के तहत स्वीकृत किया है। इन परियोजनाओं का में रिवर क्रूज पर्यटन, घाटों एवं स्मारकों का सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था, वाराणसी बाई नाइट, पंचक्रोशी परिक्रमा मार्ग विकास, साउंड एंड लाइट शो तथा पर्यटक सुविधाओं का विस्तार शामिल है। और यह बताते हुए भी काफी खुशी का अनुभव हो रहा है कि इनमें से अधिकांश परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है, जिसमें वाराणसी और सारनाथ की आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन पहचान को नई मजबूती मिली है।
0: गरीबों को आवास, छोटे व्यापारियों को पूंजी, महिलाओं को आत्मनिर्भरता, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को नई पहचान, पिछले 12 साल में ये वो क्षेत्र हैं जहां सरकार की योजनाओं और प्रयासों से समावेशी विकास की अवधारणा को बल मिला है। इन योजनाओं ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को न केवल मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बल्कि सामाजिक न्याय के साथ ही विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लक्ष्य को साकार भी किया है।
3: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई

0: रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स, 5:14:18 हो चुके हैं और फाइनली हमारी आपकी मुलाकात इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हो ही गई है। तो आज टॉप 10 में आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त सलका। आपको बता दे भाई कि 2021 को आज हम शामिल करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। 2021 का वो साल एक ऐसा साल था जब हम सब घरों में बंद थे, पर हमारा जो दिल था और हमारी जो प्लेलिस्ट थी वो बिल्कुल आज़ाद घूम रही थी। तो चलिए रिवाइंड का बटन दबाते हैं और बात करते हैं उन गानों की जिन्होंने हमारे दिल की धड़कनों को कंट्रोल करके रखा हुआ था। और शुरू करते हैं नंबर 10 से, मूवी तड़प का ये खूबसूरत सा गाना जो था उस वक्त नंबर 10 पर।

और दोस्तों काउंटडाउन का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। नंबर 10 आप एंजॉय कर चुके हैं और 2021 में एक ऐसी फिल्म भी आई थी जिसने एक नहीं कई पायदानों पर अपनी जगह बनाकर रखी थी। फिलहाल ये बातें और इनका सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन अब हमें पहुंचना है जल्दी से नंबर 9 पर और ब्यूटीफुल ट्रैक छोड़ देंगे। इसको एंजॉय कीजिए नंबर 9 पर।

सो फ्रेंड्स 5:24 हो चुके हैं और आगे बढ़ना है हमको नंबर 8 की तरफ. तो आपको याद होगा शायद एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आया था बारिश बन जाना. जी हाँ, बारिश बन जाना 2021 में ये ट्रैक सबने खूब इंजॉय किया था और इस ट्रैक को जगह मिली थी जाकर नंबर 8 पर. तो आइए इस ट्रैक को हम नंबर 8 पर इंजॉय करते हैं. 107 FM रेनबो पर आप इंजॉय कर रहे हैं टॉप 10 अलका के साथ.

0: ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सुनिए,

0: कहिए कहिए ना,
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: घर से लेकर ऑफिस तक, बच्चों से लेकर बॉस तक, फैमिली से लेकर फैंटेसी तक, फैशन से लेकर फन तक, अगर आपको चाहिए इन चीजों की लेटेस्ट अपडेट, सो डोंट बी लेट।
1: सुनिए नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम शत्रुपा, सोमवार से गुरुवार दिन में 12 से 1, 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
2: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और दोस्तों देखिए 5:30 कब हो गए पता ही नहीं चला है ना, और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं नंबर, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, नंबर 7 पर। तो नंबर 7 पर इस वक्त जो ट्रैक है फिलहाल, तो मोहब्बत खूबसूरत ट्रैक इसने अपने पैरों को जमा रखा था नंबर 7 पर। तो चलिए इसे एंजॉय करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे नंबर 6 की तरफ, जिसने 2021 के उस साल में अपने आप को जमा कर रखा था नंबर 6 पर।

दोस्तों वक्त हो गया है अब नंबर 6 पर पहुंचने का, और नंबर 6 पर था दिल टूटे लोगों के लिए बादशाह का पानी पानी और भी ब्रैक का वो सॉन्ग जो अभी आपने नंबर 7 पर सुना। तो कुछ ऐसे गाने जिसे भी आपने नंबर 7 पर इंजॉय किया और अब आप इंजॉय करेंगे नंबर 6 पर। इस तरह के जो ट्रैक्स हैं वो थोड़ा सा दिल टूटे लोगों के लिए ही 2021 में अपने अपने पायदानों पर जगह बना रहे थे।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरे लिख ले कहीं, चल निकले कहीं आ।

होता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

और फ्रेंड्स नंबर पांच पर वो गाना था जो फिल्म थोड़ा सा अलग थी और फिल्मों से, और ये फिल्म थी द कार्निवाल, और इसमें एंट्री थी एक अंडरग्राउंड स्टार की जो रातों रात स्टार बन चुका था। जी हाँ, मैं एक अंडरग्राउंड स्टार की बात कर रही हूँ जो रातों रात चमक चुका था, एक चमकता सितारा बन चुका था द कार्निवाल मूवी से। और ये जो ट्रैक था तू आके देख ले, इसने नंबर पांच पर जो है वो अपनी जगह बना रखी थी।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो
1: धड़कन लखनऊ की।
2: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
3: वो भूली दास्तां फिर याद आ गई।
2: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने,
4: ये

0: हुए दिलकश तराने।
1: खोया खोया चांद खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
3: सो फ्रेंड्स, जब बातें हो रही हैं धमाकेदार, तो सैड सॉन्ग के बाद अब कुछ और भी ट्रैक्स ऐसे हैं जिन्हें एंजॉय करना तो बनता है, थोड़ा सा डांस और थोड़ा सा ड्रामा भी हो जाए, क्योंकि श्रेया घोषाल और यार रहमान ने हमें मिलकर दिया परम सुंदरी, और जहां कृति सेनन के ठुमकों ने सबको नचाया और ये गाना पहुंच गया कहां, जी हां, नंबर 4 पर।

और अब टाइम को बिना वेस्ट किए हुए चलिए बढ़ चलते हैं नंबर टू की, नहीं नंबर थ्री की तरफ। भाई आपने नंबर चार का ट्रैक एंजॉय किया है और अब बारी आ गई है नंबर थ्री की, शेरशाह की। जैसा नाम वैसा काम, ये फिल्म ऊपर के जो पायदान थे उनके लिए ही बनी थी एक्चुअल में, और वहीं पर जाकर इसने अपनी जगह बना ली थी। और इसने नंबर तीन से जो शुरुआत की तो कहाँ पहुंची आपको बताएंगे जरूर। फिलहाल इस ट्रैक को करते हैं एंजॉय।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जय दोस्तों, अब नंबर आ गया है इस वक्त नंबर 2 पर जाने का। 5:51 हो चुके हैं दोस्तों, और नंबर 2 पर जो ट्रैक ट्रेंड कर रहा था उस समय, वो क्यों ना करता, क्योंकि जुबिन नौटियाल का ये लुट गया ट्रैक, इसने ऐसा जादू किया कि ये सॉन्ग सोशल मीडिया पर छा गया, बहुत ट्रेंडी हुआ। होता भी क्यों नहीं, इमरान हाशमी जो

और दोस्तों 5:55 24 सेकंड हो चुके हैं और वक्त ये कह रहा है कि जल्दी से आपको नंबर वन की तरफ ले चला जाए और बता दें भाई आपको कि वो मूवी जिसने कई पायदानों पर अपनी जगह बनाकर रखी थी वो थी शेरशाह। जुबिन नौटियाल और असीस कौर की आवाज में राता लंबिया। इस ट्रैक को सुनकर ऐसा लगता था उस वक्त कि जैसे कि वक्त थम सा गया हो, वक्त रुक सा गया हो। तो चलिए नंबर वन पर इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं और आज के टॉप 10 को यहीं पर स्टॉप करते हैं। लेकर आएंगे आपके लिए एक और टॉप 10। नेक्स्ट प्रोग्राम होगा आपके लिए शाम अवध और बहुत सारी लखनऊ से जुड़ी अपडेट्स, बहुत सारी और भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत के साथ उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का दर्शन कर रही है। श्री योगी ने कहा कि वैश्विक संकट से दुनिया त्रस्त है, लेकिन नए भारत ने ऊर्जा संकट से देश को बचाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में भी 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है, जो सुरक्षा का माहौल भी देता है और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम भी करता है। उन्होंने क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र के गांव धौलाकुआं के पास आज हुए एक सड़क हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक परिवार एक बाइक पर सवार था, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। चारों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जनभागीदारी के साथ सामूहिक योग के साथ विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सभी जनपदों आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ डंगवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे हैं। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम वीरगति को प्राप्त हुए हैं। वायुसेना ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वो उनके साथ मजबूती से खड़ी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: सुनिए,
4: कहिए,
3: कहिए,
4: सुनिए,
3: सुनिए,
4: कहिए, कहिए ना,
3: सुनिए, कहते, सुनते, बातों, बातों में प्यार हो जाएगा।
5: मैं हूँ गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

ऑफ कोर्स बेहतरीन प्रोग्राम बेहतरीन ट्रैक 100.7 FM रेनबो पर ऐप के साथ आरजे अलका और आप अभी पूरे एक घंटा एंजॉय करने वाले हैं शाम में अवध 100.7 FM रेनबो पर, क्योंकि बहुत सारी सिटी अपडेट्स शेयर करूंगी आप सभी के साथ जो आपके काम की जरूर होंगी। फिलहाल ये ट्रैक जो है ये थिरकने के लिए काफी है।

वेल फ्रेंड्स, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आपको जल्दी से बता देते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो शाम 6 बजे शुरू हो चुके हैं लखनऊ में। आपको बता दें कि योगेंद्रनाथ द्विवेदी के कविता संग्रह एक दीपक सब जलाए का जो विमोचन है वो कैफी आजमी अकादमी में शाम 6 बजे शुरू हो चुका है। इसके अलावा बायोस्कोप की ओर से संगीतमय संध्या 130 जेसी बोस रोड कैसरबाग में शाम 6:30 बजे से आयोजित होगी। बायोस्कोप की ओर से है, संगीतमय एक संध्या है और एड्रेस आपको बता दें 130 जेसी बोस रोड कैसरबाग, समय है शाम 6:30 बजे। इसके अलावा मदर सेवा संस्थान की ओर से चबूतरा थिएटर फेस्टिवल में सारा जहां हमारा है नाटक एक है, इसका मंचन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में शाम 7 बजे है। तो इस कार्यक्रमों का भी आप आनंद उठा सकते हैं जो कि हमारे शहर में इस वक्त हो चुके हैं, यानी कि शुरुआत भी हो चुकी है बहुत सारे कार्यक्रमों की। कुछ 6:30 बजे शुरू होने वाले हैं, कुछ 7 बजे भी शुरू होंगे, तो इस तरह से आप इन कार्यक्रमों का आनंद भी उठा सकते हैं अगर आप संगीत नाटक मंचन का शौक रखते हैं। और फिलहाल ये सिलसिला अभी जारी रहेगा 100.7 FM रेनबो पर। शाम या वक्त आप इंजॉय कर रहे हैं।

0: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: Purani haveliyon ki deewarein sunati hai nawabon ki dastaan. Chikankari ke booton se khilte galiyare, giloriyon ki khushboo se behakte paandan. Yahan har kona ek shayari, har gali ghazal. Ye Lucknow hai janab.
2: High tech malls, street food, 10-90 par gulzar hoti shaame. Chai ki chuskiyon se कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब यारी।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
0: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो।
4: धड़कन लखनऊ की।
1: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
5: शाम होने को है।
1: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: गुलाम ने नहीं, राजा ने मिला करे।

तो भाई बता दें आपको, जो अपडेट है हमारी वो कहां और कहां तक पहुंच चुकी है। तो ये जो है वो बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जो है वो आज आ चुका है। यूपी के नर्सिंग कॉलेजेस में प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आज यानी शनिवार को आ गया और इसकी तैयारियां अटल विश्वविद्यालय ने पूरी कर ली है। कॉमन नर्सिंग

एंट्रेंस टेस्ट जो है सीनेट जिसे कहते हैं, इसका परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो बीएससी नर्सिंग समेत जो है कई सारी नर्सिंग पाठ्यक्रमों की करीब 14,500 सीटों के लिए लगभग 1.44 लाख अभ्यर्थियों ने दावेदारी की थी और आपको अब इसके लिए जो है पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। ये बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट के बाद जो रिजल्ट आया है उसके बाद जो लोग सिलेक्टेड हैं उनको अपनी जो है वो काउंसलिंग करवानी होगी। फिलहाल वक्त हो गया है एक खूबसूरत से गाने का, इसे इंजॉय करते हैं फिर वापस आते हैं आपके पास।

सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं घूमने घुमाने की। जी हाँ, बात करते हैं IRCTC की। उन पर्यटकों के लिए खुशखबरी है कि IRCTC जो है वो 24 जून से शक्तिपीठ के दर्शन कराएगा। जी हाँ, IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा ये जानकारी दी गई है कि लखनऊ से हवाई जहाज से जम्मू ले जाया जाएगा, वापसी अमृतसर से होगी। होटलों में ठहरने की व्यवस्था होगी। IRCTC की जो कार्यालय है वहाँ से, जो इसकी वेबसाइट है वहाँ से आप इसकी पूरी बुकिंग करा सकते हैं और भी जानकारी जो आपको चाहिए वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आप कुछ नंबर्स हैं उन पर भी आप बुकिंग करा सकते हैं। तो ये नंबर वगैरह आपको सब वेबसाइट पर मिल जाएंगे। IRCTC की वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं, इनके कार्यालय में जाकर पूरी बुकिंग भी प्रोसेस करा सकते हैं। 24 जून से इसकी शुरुआत होगी शक्तिपीठ दर्शन की, और इसमें सभी जो व्यवस्था है हवाई जहाज यानी कि एयर टिकट से लेकर आपको अमृतसर में इसकी वापसी होगी, और भी विस्तृत जानकारी आपको मिल सकती है IRCTC की वेबसाइट पर और कार्यालय पर।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो,
2: धड़कन लखनऊ की।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: सुनिए,
6: कहिए,
5: कहिए,
6: सुनिए,
5: सुनिए,
6: कहिए, कहिए ना,
5: सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
7: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

वेल फ्रेंड्स, 6:35 हो चुके हैं और वक्त ये कह रहा है कि आपको अगली अपडेट बता दी जाए। आपको बता दें कि AKTU ने MTech, MCOM, MOK और MURP पाठ्यक्रमों की सत्र 2025-26 की जो मौखिक परीक्षा है इसका कार्यक्रम जारी कर दिया और इन पाठ्यक्रमों की मौखिक परीक्षा 12 से यानी कि शुरू हो चुकी है। 17 जून तक ये आयोजित होगी और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा कार्यक्रम जारी भी कर दिए गए हैं। अभी फिलहाल वक्त हो गया है 6:35:36, 100.7 FM रेनबो पर आप अलका के साथ इंजॉय कर रहे हैं आज का शामी अवध।

फ्रेंड्स, आपको अगली अपडेट भी बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने केंद्रीय प्रवेश प्रणाली के अंतर्गत सहभागिता शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 20 जून तक बढ़ा दी है। संयुक्त महाविद्यालय में संचालित सेल्फ फाइनेंस कोर्स केंद्रीय प्रवेश प्रणाली के तहत प्रवेश लेना चाहते हैं और वे जो कॉलेज पाठ्यक्रम है उसका विवरण सहभागिता शुल्क जो है वो जमा कर सकते हैं, जिसकी डेट बढ़ाकर अब 20 जून कर दी गई है आपकी सुविधा अनुसार। I'm ripping up on the mic, just swinging with the hip, the hop once again in effect. Feel the constant slamming of the bass line. Never mess around with the funk, because I'm sticking, kicking, always finger licking. I don't need Halloween just to be trick or treating, because I'm always on top. You're making the work of the jewelry, don't you tell you what's up.

0: देशन जाना है।
1: देख के देना पड़ेगा क्या? सुनाई नहीं पड़ता, सुनाई।
0: सॉरी सॉरी सॉरी।

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब अली।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: घर से लेकर ऑफिस तक, बच्चों से लेकर बॉस तक, फैमिली से लेकर फैंटेसी तक, फैशन से लेकर फन तक, अगर आपको चाहिए इन चीजों की लेटेस्ट अपडेट, सो डोंट बी लेट।
1: सुनिए नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम शत्रुपा, सोमवार से गुरुवार दिन में 12 से 1, 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज।

0: एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: मुझे जी ये वाली मुन्नी चलेगी।

सो फ्रेंड्स, 6:47 हो चुके हैं और अगली अपडेट आप सभी को बता दें कि कल यानी कि 14 जून 2026 को कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस में आप सुन सकेंगे एक विशेष कार्यक्रम। विषय होगा कल का वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और इस खास विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो में डॉक्टर अनिल कुमार जी, MBBS TCP। और आपको बता दें कि अगर आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं हमें 0522-223-8845 पर या 223-8852 पर, यानी कि 2238-845 या 2238-852 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम आप कल सुन सकेंगे 14 जून 2026 को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच। कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस में, विषय होगा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे।

ना जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्ताने,
3: वो भूली दास्तान लो फिर याद आ गई।
2: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने,

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।

0: रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ।
1: बजकर 55 मिनट 29 सेकेंड और वक्त ये इजाजत नहीं दे रहा है कि अब इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि कुछ ही देर में 7 बज जाएंगे और हो जाएगा नेक्स्ट प्रोग्राम, यानी आपके फेवरेट प्रोग्राम हेलो एफएम का टाइम। तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए और वापस जुड़ते हैं आपके साथ हेलो एफएम में। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो विद आरजे एलका।

नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और अब सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, देश आज नए भारत के रूप में दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहा है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में भी 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के बीएचयू में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई और पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार रखे। अधिवेशन में देश विदेश के 1200 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। सीएम योगी ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों की को परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जनभागीदारी के साथ सामूहिक योग के कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र के गांव धौलाकुआ के पास आज हुए एक सड़क हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक परिवार एक बाइक पर सवार था, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण 15 जून को गोरखपुर हवाई अड्डे पर यात्री सुविधा दिवस का आयोजन करेगा। कार्यक्रम के दौरान यात्रियों से संवाद स्थापित कर उन्हें और बेहतर सुविधाएं देने के प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से संवाद किया। वाराणसी में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सोच बदली है। फिरोजाबाद में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया। बस्ती में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सुपोषित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अमरोहा में मंडलीय समीक्षा बैठक की। महाराजगंज में राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु, बदायूं में डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, हापुड़ में वन पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने प्रेसवार्ता को संबोधित किया। नोएडा में राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं कल से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

7:04 और इंतजार हुआ खत्म और शुरू हो गया आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम हेलो एफएम आरजेएल का आपके साथ है। तो देर किस बात की, मिलाइए 2238852 या 2238845 और डायल कीजिए नंबर्स को, सुनिए अपनी पसंद के खूबसूरत पसंदीदा गानों को 100.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned, 100.7 FM Rainbow,
3: धड़कन लखनऊ की।
4: जी हाँ, धड़कन लखनऊ की, और आपके साथ जुड़ गई है आरजे अलका इस वक्त, और प्रोग्राम शुरू हो चुका है। हेलो FM, और देखिए इंतजार नहीं करवाएंगे, जो भी लाइन पर है चलिए उनसे सबसे पहले बात करते हैं। हेलो।
5: हाँ हेलो मैम, नमस्ते।
4: नमस्ते जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। क्या शुभ नाम है आपका?
5: मैं राम केवल मौर्य बोल रहा हूँ, ग्राम मंगोली पोस्ट जगदीशपुर डिस्ट्रिक्ट अमेठी से।
4: राम केवल मौर्य जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम में, और बताए आज क्या सुनना चाहते हैं, क्या पसंद है आपकी?
5: मैं गाना सुनना चाहता हूँ, थानेदार फिल्म का है।
4: हाँ हाँ,
5: जीना है तो हंस के जियो।
4: ओके, और किसको सुनवाना चाहते हैं ये गाना?
5: मैडम सब लोग जितने सुने, सारे लिसनर्स को सुनवाना चाहता हूँ।
4: ओके, थैंक यू सो मच राम जी कॉल करने के लिए, और आपकी पसंद का ये ट्रैक रहा आपके और हमारे सबके रेडियो सेट पर।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: भाई 7:13 हो चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉलर है लाइन पर, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हेलो
4: हेलो, गुड इवनिंग।
3: गुड इवनिंग जी, कौन बोल रहे हैं?
4: मोहम्मद तालिब अंसारी बोल रहे हैं, राजा कटरा बाराबंकी से।
3: तालिब जी बहुत बहुत वेलकम है आपका प्रोग्राम में।
4: थैंक यू,
3: काफी देर बाद आपसे बात हो रही है, मतलब काफी दिन बाद मेरी आपकी बात हो पा रही है।
4: जी, काफी दिन के बाद बात हो रही है।
3: और बताइए क्या है?
4: एग्जाम भी था हमारा, तो अच्छा, उसमें थोड़ा बिजी हो गए।
3: अच्छा ओके, नहीं एग्जाम में बिजी होना चाहिए तभी तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। ओके, तो बताए क्या है मौसम का मिजाज इस वक्त बाराबंकी में?
4: मौसम का मिजाज बाराबंकी में तो सुबह से काफी रेनिंग डे रहा है और हाँ अभी भी थोड़ा सा, लेकिन मौसम बहुत अब अच्छा हो गया है। मतलब वो जो गर्मी हो रही थी वो अब नहीं है, थोड़ी सी मतलब
3: राहत हो रही है।
4: जी
3: ओके,
4: और किसानों के लिए भी राहत है क्योंकि अब उनकी धान की रोपाई वगैरह के लिए भी तैयारी सब चीज ओके हो रही है।
3: तो बताएं तालिब आज क्या सुनना चाहेंगे?
4: हम औजार मुंह के गीत सुनेंगे, दिल के सौ टुकड़े की अलग गीत।
3: और किसको सुनवाना चाहते हैं?
4: मोहम्मद आसिफ भाई हैं तेलंगाना हैदराबाद से, और मोहम्मद साबिर भाई हैं कानपुर से, और अकबर भाई हैं चौखंडी से, और सभी सुनने वालों को।
3: ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
4: बाय बाय
3: बाय बाय।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है नए भारत का दर्शन। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जनपदों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपील की कि नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा। दुनिया त्रस्त है, लेकिन नए भारत ने वैश्विक संकट में भी ऊर्जा संकट से देश को बचाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का दर्शन कर रही है।
1: आज हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है। हम सब गौरवशाली हैं, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है जो गरीबों का कल्याण करता है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है। उन्होंने एक क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी।
1: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी, और प्रगति होगी नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विस्तार से अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों से नवाचार व अनुसंधान को राष्ट्र निर्माण तथा जन कल्याण से जोड़ने का आह्वान किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 7 मंजिला इस परियोजना के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएचयू प्रशासन के अधिकारियों को भी परियोजना की नियमित निगरानी करने और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बुजुर्गों को समर्पित यह अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग देश का तीसरा तथा उत्तर भारत का प्रमुख वृद्धावस्था चिकित्सा केंद्र होगा। केंद्र में बुजुर्गों के लिए मल्टी स्पेशलिटी जेरियाट्रिक वृद्धावस्था चिकित्सा ओपीडी संचालित की जाएगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ा

0: देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सभी जनपदों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वाराणसी में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से संवाद किया। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जनकल्याण को शासन का मूल आधार बनाया है। इसी क्रम में जनपद हापुड़ में प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के जन कल्याण के कार्य किए हैं।
1: आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, रोटी कपड़ा मकान, इनकी आम आदमी को जरूरत होती है, उस सारी व्यवस्था भारत सरकार उत्तर प्रदेश ने की है और पक्षपात के तहत नहीं, निष्पक्षता के साथ ही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने का काम किया।
0: वहीं डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
2: प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल रिफॉर्म का था, परफॉर्म का था, ट्रांसफॉर्म का था और जिसका परिणाम है कि पिछले 12 सालों में भारत के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो उससे ऊपर आए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र के गांव धौला कुआं के पास आज हुए एक सड़क हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं कल से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है नए भारत का दर्शन। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, 7:33 32 सेकेंड हो चुके हैं, माफ कीजिएगा 24 सेकेंड हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गई, और क्योंकि मुझे पता है कि एक कॉलर हमारे हैं जो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा कहीं ना कहीं जल्दी उन्हें लाइन पर लेने की और उनसे बात करने की। तो चलिए जानते हैं कौन है वो। हेलो
1: जी मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, नागेश कुमार बोल रहा हूँ, जिला सीतापुर से।
0: सीतापुर से नागेश बोल रहे हैं। नागेश जी, कैसे हैं आप?
1: मैम ठीक हैं।
0: बढ़िया हैं। तो बताइए, आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज मैम झुमका गिरा रे बरेली पे बजाने ओल्ड वाला,
0: पुराना वाला। वैसे एक बात तो है, रीमेक भले ही कितने भी बन जाएं गानों के, लेकिन जो बात तो पुराने गानों में है वो रीमेक में नहीं होती ना। मैंने इसका रीमेक भी सुना है, बट जितना प्यारा ये ट्रैक है आशा जी की आवाज में, मेरा साया मूवी से, बहुत बढ़िया। किसको सुनवाना चाहते हैं?
1: मैम अपने परिवार वालों के लिए।
0: सभी परिवार वालों के लिए
1: जी मैम।
0: ओके, थैंक यू सो मच नागेश। और कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी मैम, एक नाम ले लीजिए।
0: हाँ बिल्कुल, बताएं।
1: जी मैम, बड़े भाई का नाम ले लीजिए, कपिल कुमार।
0: कपिल कुमार
1: जी मैम।
0: ओके, तो कपिल जी को भी डेडिकेट है ये ट्रैक। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।

0: सो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल ट्रैक्स के साथ आज आप इंजॉय कर रहे हैं हेलो एफएम अलका के साथ, और हमारे साथ है बहुत सारे ऐसे कॉलर्स भी जो अपनी पसंद लेकर हाजिर हो रहे हैं। तो देखते हैं इस वक्त कौन है लाइन पर। हेलो,
1: गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग जी, कौन बोल रहे हैं?
1: तौहीद, मलिहाबाद से।
0: तौहीद
1: जी।
0: ओके तौहीद, बताएं कैसे हैं आप?
1: ठीक हैं, आप बताएं?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बताएं तौहीद, क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: हमें सुना दिए गुम है किसी से प्यार में से।
0: कौन सा ट्रैक?
1: गुम है किसी के प्यार में।
0: गुम है किसी के प्यार में, ये गाना आप नया वाला सुनना चाहते हैं या पुराना वाला?
1: नया वाला।
0: नया वाला, ओके। तो किसको सुनवाना चाहेंगे ये सॉन्ग?
1: सभी को।
0: सभी को सुनवाना चाहते हैं? ओके, वेरी गुड। मुझे भी। और बताइए कहाँ से कॉल किया आपने हमें?
1: मलिहाबाद।
0: मलिहाबाद से, क्या हाल चाल है इस वक्त? तो ढेर सारे आमों की खुशबू से भरा होगा मलिहाबाद
1: जी,
0: है ना
1: जी?
0: बिल्कुल। तो चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। और अब आपका जो ट्रैक है वो आप सभी के लिए, जिसको जिसको आप सुनवाना चाहते हैं। ओके

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: वेल फ्रेंड्स, 7:45 35 सेकंड हो चुके हैं और हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो चलिए करते हैं उनसे बात। हेलो
3: हेलो दीदी, नमस्कार।
2: नमस्ते जी। आप लोग इतना प्यार से दीदी बोलते हैं, दिल एकदम गदगद हो जाता है। कौन बोल रहे हैं जरा आपका शुभ नाम बताएं।
3: हीराम, हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
2: ओके भगवान सिंह जी, बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम में आपका। बताइए क्या हाल चाल है आपके।
3: अच्छे हाल चाल है दीदी, और आज हमारे इधर आंधी तूफान के साथ बरसात हुई है दीदी, और काफी आंधी तूफान चला है हमारे इधर।
2: ये तो है, अब बारिश थोड़ा शुरू हो चुकी है और ऑलमोस्ट मानसून जो है वो आ ही चुका है, तो गर्मी से काफी राहत बहुत सारे इलाकों में मिल चुकी है।
3: मिल गई दीदी,
2: बहुत ज्यादा। तो बताइए आज क्या सुनना चाहेंगे, गाना कौन सा
3: दीदी। फिल्म का नाम है वापसी साजन की, और गाने के बोले आया सपनों में कोई सहजादा, और सालनी आपके यहाँ से आरजे हैं, सालनी दीदी, चंद्रकला दीदी, मोना दीदी, अलका दीदी आप हो, प्रीति दीदी, तरन्नुम दीदी और शिल्पी दीदी, आप सभी को डेलीकेट रहेगा। और हमारे मित्र हैं प्रेम सिंह सिसोदिया जी, राजन गंगवार जी, मोनू राजवंशी जी और मिंटू तिवारी जी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी।
2: दैट्स वेरी गुड, सभी लोगों को डेडिकेट किया आपने ट्रैक, और चलिए खूबसूरत गाना सबके साथ मिलकर आप भी इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
3: धन्यवाद।

0: वेल वक्त हो गया अगले कॉलर से बात करने का, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, वेलकम है आपका, नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं
1: जी? नमस्ते मैम, मैं मेरा नाम है गुलाब कश्यप।
0: नमस्ते गुलाब जी, खुशबू आने लगी गुलाब की।
1: थैंक यू मैम।
0: एक्चुअली कुछ नाम ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होते हैं, मतलब कि आप जैसे ही उन नामों को लेंगे उनका जो असर है वो अपने आप शुरू हो जाता है ना।
1: जी मैम
0: बिल्कुल, जिसने भी आपका नाम रखा है बहुत ही प्यारा है, और इनफैक्ट माता पिता ही रखते हैं नाम वैसे तो कभी कभी।
1: ओके, थैंक यू मैम।
0: तो बताइए आज जी गुलाब जी क्या सुनना चाहेंगे?
1: मैम मुझे सॉन्ग सुनना है जीने लगा हूँ।
0: जीने लगा हूँ, ओके, किसको सुनवाना चाहते हैं?
1: मैम सुनने वाले सभी श्रोताओं को और मैम खासकर आपको।
0: थैंक यू सो मच गुलाब जी, तो चलिए आपकी बेहतरीन खुशबू के साथ इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम।

0: सो माय डियर लिसनर्स, 7:54 हो चुके हैं और इस वक्त हो गया है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। तो चलिए अपने आज के इस प्रोग्राम के लास्ट कॉलर से करते हैं बात और उनकी पसंद के ट्रैक के साथ इस प्रोग्राम को करते हैं वाइंड अप, क्योंकि सुनील आ चुके हैं अगले कुछ घंटे आपका साथ निभाने के लिए। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: आकाश मानी का जुनून दिल में रहता है हमारे हर पल, गंगा नदी के पास में घर है मेरा, जहाँ बहता है शीतल जल, नाम है मेरा राजेंद्र, गांव है पोस्ट गोतनी, तहसील कुंडा, जिला है प्रतापगढ़।
0: भाई वाह, शेरो शायरी काफी अच्छी आपने कर रखी है। थैंक यू सो मच, बड़ी प्यारी लाइंस लिखी है आपने। और बताइए नाम तो बता दीजिए, कौन बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र। मैंने तो शायरी में ही बता दिया था।
0: मैंने शायद मिस कर दिया। और बताइए राजेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: बस मैम, दुआ है आप लोगों की, आप कैसे हैं? हम तो एकदम अच्छे हैं,
0: सब बढ़िया। गाना कौन सा सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है वारिस और गीत के बोल हैं, घटा छा गई है बाहर, आ

0: और किसको सुनवाना चाहते हैं?
1: मैम सबसे पहले आपको
0: थैंक
1: और
0: यू,
1: जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं सबको डेडिकेट है।
0: गुड, वेरी गुड। तो चलिए स्ट्रैक को करें एंजॉय आपके साथ।
1: जी मैम,
0: थैंक यू सो
1: नमस्ते।
0: मच कॉल करने के लिए राजेंद्र जी। तो इस ट्रैक के साथ आपको छोड़कर जा रही हूँ और फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पर वापस मुलाकात होगी आपसे। स्टे ट्यून 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार। रात के 8 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक

लागत के 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत के साथ उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का दर्शन कर रही है। श्री योगी ने कहा कि वैश्विक संकट से दुनिया त्रस्त है, लेकिन नए भारत ने ऊर्जा संकट से देश को बचाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में भी 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है, जो सुरक्षा का माहौल भी देता है और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। उन्होंने क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र के गांव धौला कुआं के पास आज हुए एक सड़क हादसे में एक परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक परिवार एक बाइक पर सवार था, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। चारों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगी दिवस के आधार पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योग के साथ विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसे परीक्षा कर्मयोगी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रिया को सुदृढ़ करना, ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकरण संचालन सुनिश्चित करना है। इसमें नीट स्नातक पूर्व परीक्षा भी शामिल है। इस कार्यक्रम में संपूर्ण परीक्षा को कवर करने वाले 4 मॉड्यूल हैं। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गया। वायुसेना ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम वीरगति को प्राप्त हुए। सीएम योगी ने बहादुर जवानों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
2: शाम होने को है।
1: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास
3: के

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, वसल की उस रात को हर्फों में बयां करता संजीदा रेडियो प्रोग्राम आपशार 100.7 FM रेनबो पर।

ये जो महबूब की आमद तेज हवा में घुली खुशबू की मानिंद होती है, जब हयात में शरीक होती है ना, तो सारा का सारा होशो हवास अपने साथ ले जाती है। बिल्कुल। और ये होशो हवास जिसमें होना बिल्कुल मुनासिब नहीं जब कोई मोहब्बत में हो, तो सच में सब कुछ बड़ा खूबसूरत लगने लगता है। बिल्कुल वैसे जैसे प्रोग्राम आबशार FM रेनबो लखनऊ पर सुनील के साथ।

ये इश्क जो जिस्म से जान जरा आहिस्ता निकाल के किसी शख्स की खातिर फना करने को बेताब कर दिया करता है, इसकी आमद सबसे खूबसूरत बला होती है, जो उम्र को जिंदगी बख्शने का काम करती है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आबशार सुनील के साथ 100.7 आकाशवाणी FM रेनबो लखनऊ पर।

वो खबर जो उनकी आमद से जुड़ी होती है, सारे जहां को फिल्में पर्दे की माफिक ज़रा ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। और माशाल्लाह तमन्ना वो तो मचलने को बेताब हो जाती है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आबशार सुनील के साथ।

और अगर लंबे इंतज़ार तक कोई इंतज़ार के इंतहा तक इंतज़ार ही करवा रहा है, तो दिल से यही बात निकलती है कि जहाँ मतलबी दुनिया हो वहाँ जाना नहीं अच्छा, अकेले खुश रहो यारों, दिल लगाना नहीं अच्छा। प्रोग्राम आप शार की आखिरी पेशकश आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा

0: की गई।
1: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया, अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अभैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक

0: खोजना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें।
1: वो भूली दास्तां फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

¡Vamos, Zairo! बाबू अंसारी भाई देवकाली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से कह रहे हैं, नमस्ते सुनील भैया, प्रोग्राम आज अनहना हुआ होना चाहिए, और हना हुआ प्रोग्राम जो होता है वो केवल एवं भोजपुरी गाने से होता है। ऐसा है भैया, बाबू भैया, आई लव आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, गौस मोहम्मद, फैज भाई, महेंद्र, कुलदीप, है ना, हरहर हुआ लग रहा है, मूड मस्ती भरा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा भाई, प्रोग्राम तो अभी शुरू नहीं हुआ, या तो मस्ती भरा प्रोग्राम पहले ही कह दियो है। विकास भाई कमरिया डोले सुनना चाहते हैं नील कमल की आवाज़ में। ठीक है भाई, जिला उन्नाव से सफीपुर तहसील से आप मेल कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रामराज भाई मेल कर चुके हैं, बाबू अंसारी भाई मेल कर चुके हैं, है ना भैया। मोनू भाई नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सद्दाम भाई तो पहले मतलब प्रोग्राम शुरू हो कि आधा घंटा पहले कर दिए, कह रहे हैं भैया देखो आज रेनबो कैफे प्रोग्राम है, और रेनबो कैफे प्रोग्राम में आप जो ना भोजपुरी बनाओ। अरे यार कैसी बात कर रहे हो भैया, जब तुमके कहे कि बिना भोजपुरी गाना एकदम लगाए के रखें, पहले जब ना हना हुआ गाना आए समझोगा तुम्हारे दिमाग में अगर कोनो गाना आ रहा है तो हमका फटाफट मेल करो, देखो तो का हो सके तो लग तुम्हार सही रहा है, जो हमारे प्लेलिस्ट है उससे मैच कर जाए, और फटाफट जो ना रेनबो का एफएम तुम्हारा गाना बजे लगे। एफएम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com एकदम हना हुआ गाना सुनने के लिए एकदम तुरंत मेल करो, समझो भैया। अगर मेल करवाओ ना तब गाना चली हना।

टॉप टाइम सुनील भाई के साथ विजय यादव लहलुआ लखीमपुर खीरी से मेल कर रहे हैं। कह रहे हैं सुनील भाई जी सादर नमस्ते, मैं विजय पाल यादव ग्राम पोसला लहलुआ जिला खीरी से मेल कर रहा हूं। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप शार भी बहुत अच्छा लगा था। प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देर से क्यों आते हो? अरे देर आते हैं लेकिन मेरे दोस्त दुरुस्त तो आते हैं। बबलू यादव राजेश भाई विजय पांडे आपका मेल मिल चुका है। रणधीर भाई नमस्कार, शुभ दिन रेडियो मित्र, सप्रेम नमस्कार, कार्यक्रम में खुशबू बिखेर दिया है। ये बताओ यार संगीत का कार्यक्रम है? हाँ अच्छा, संगीत में खुशबू, बहुत बहुत धन्यवाद। रेनबो कैफे गाने एकदम नहीं पसंद, गाने क्या एक ही गाना तो भाई बजा है ना। ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर बबीता सत्यम सुंदरम आप सभी का मेल। विनीत भाई नमस्कार, आपके मेल का इंतजार हम करते रहते हैं गुरुदेव। रेनबो कैसे प्रोग्राम करने और गुड इवनिंग शुभ रात्रि आपकी बोली आपका अंदाज प्रोग्राम का सुपर हिट। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, सीतापुर से आप मेल कर रहे हैं। राजा जीपुरम लखनऊ में भी आपके मित्र रहते हैं संतोष मौर्य हरदोई, ममता हरदोई। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, संडीला से मेल कर रहे हो आप। मनु भाई कह रहे हैं धोखीबाज रजोऊ बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद नहीं रही गाना चली। अरे तुम्हारा गाना चली भैया तो बस तुम एक बार मेल तो करो हमका। अजय कुमार पाटिल भैया कह रहे हैं हम कि नौगढ़ डिस्ट्रिक्ट बामेत्रा छत्तीसगढ़ से मेल कर रहे हैं अजय भाई। अजय सुमन मोनिका अखिलेश्वर थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। अभी भी समय, अभी क्या आप तो शुरू, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पे मेल करो भैया, समझो। अगर अपना मतलब बढ़िया गाना एकदम हाना हाना हुआ गाना सुना चाहते हो समझोगा बड़ा पार्ट।

हमहू कहत बानी कि तनी बस करा, इतना तगड़ा मेल ना खोल मतलब भेजा, कहे कि समझ ला कि एकदम इमोशनल कह देते हैं भैया। रामराज भैया हमका मेल कर रहे हैं रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, राजभानु शंकर भैया, पप्पू मनीष बधु कह रहे धोखेबाज रजऊ गाना सुन के भाई साहब मज़ा आएगा। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, मज़ा के लिए तो हमारा प्रोग्राम है भोजपुरी स्टूडियो हनके रहा बा शुभरात्रि। भैया का कहे थे हमका समझ, हनके रहा बा शुभरात्रि आल स्टाफ ऐसा मतलब ऐसी भाषा में लिखो ना, तो हमें भोजपुरी है ना तो हमें हिंदी है। पुनीत द्विवेदी इलेक्ट्रिकल इंफ्राटेक लिमिटेड हल्द्वानी। अच्छा जी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप कंपनी में अपनी पूरा मोबाइल नंबर सहित आप पूरा मतलब अपना विजिटिंग कार्ड दे दियो भैया पुनीत कुमार द्विवेदी। वकील अहमद महेंद्र भाई नमस्कार, गांव रूड जिला नागौर राजस्थान से, आप इतना लेट क्यों आते हैं? अरे यार लेट आते हैं तभी तो ज़्यादा मतलब इंतजार करते इंतजार मजे। अरे गजब, अरे भाई, अरे इतना तगड़ा पोस्टर बना दियो महेंद्र दीपन नौसारी गुजरात, इतना बढ़िया पोस्टर, अरे हमारा फोटो लगा दियो भाई, अरे गजब बहुत सही। एका तो हम अपने अब जो ना सोशल मीडिया पेज पर जरूर शेयर कर बे, का पहले मेल भेज ली तो बधाई समझोगा। अच्छा ठीक है भाई, अरे गजब पूरा मतलब, अरे गजा बहुत भाई, देखा एक हम शेयर करब जाने अपने सोशल मीडिया पर तुम्हारा पोस्टर महेंद्र भाई शेयर करब समझो। वकील अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच माय ब्रदर। सोनू भार्गव भाई कह रहे हैं प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, तुनक तुनक अच्छा ये वाला बहुत यार गाना सुनते हो। शोएब अंसारी सुनील भैया प्रोग्राम हाँ हाँ हुआ, थैंक यू सो मच माई डियर। रामराज भाई, राकेश भाई कह रहे हैं कि

प्रस्तुति गाने में एनर्जी आ जा रही है, देखो एनर्जी थोड़ा संभाल के रखो। गोपाल गुलाब कश्यप भाई कह रहे हैं मैं रामपुर राय डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से मेल कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। जावेद अख्तर भाई, शिवम शुक्ला जी ग्राम कटार से प्रोग्राम सुन रहे हैं। अरे यार तुम्हारे गांव का नाम तो बहुत ही तगड़ा है भाई, कटार छुरी तो नहीं ना तलवार तो नहीं ना, कटार गजब नाम है भाई तुम्हारा। गुलाबसा सिद्दीप जी कह रहे हैं कि भैया हम संडीला में प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो भैया प्रोग्राम सुनते रहो, प्रोग्राम सुने केवल हाथों चलावत रहो, मतलब मेलो टाइप करत रहो, समझो कि नहीं समझो। कुछ लोग बहुत बढ़िया पोस्टर AI से बनाए हैं और कुछ लोग बढ़िया पोस्टर बना बना के बढ़िया बढ़िया एकदम मन प्रसन्न कर देते हैं भैया, मतलब मजबा है आप हमारे दिल एकदम एकदम बाग बाग हो गया समझोगा। अच्छा ठीक है, एक और गाना दे मरद नहीं माथा की जरूरत वाला सुन में हुआ, चलो सुनो। अच्छा तेरे फिर मेल करो हमका फटाफट, मेल आईडी जान रहे हो ना, fmakashmani@lucknow.gmail.com समझ रहे हैं ना, आपके मेल आईडी में खुद ही आपको खुद ही पता है। ले लो गाना सुनो पहले बताएं।

शिवराज भाई नमस्कार। बरौली मालिक जिला बाराबंकी से एक भोजपुरी सॉन्ग सुना रहे। भोजपुरी सॉन्ग तो सुनवा रहे भैया। एम के राज लखीमपुर से कह रहे हैं, भानपुर हरौआ से मैं मेल कह रहा हूँ सुनील शुभ रतिया। हा रेनबो पॉप टाइम दो लाइन हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल। आय हाय क्या बात है, क्या बात है। पक्का श्रोता है, कह रहे हैं हम आपके पक्का श्रोता हैं। अरे भाई पक्का नहीं, आप एकदम एक नंबर के श्रोता। गुलाब सा कह रहे हैं सुने सर सुना दीजिए ना, बहुत दिनों से सॉन्ग नहीं सुना है। अच्छा तो भैया देखो, इसमें केवल एल्बम के भोजपुरी हरियाणवी या पंजाबी सब गाने सुनाई दे जाते हैं, समझ रहे हो ना। सनीला कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सुनील सर, कार्यक्रम बिंदास लग रहा है। फ्रॉम कस्बा सेवता जिला सीतापुर से मेल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। जावेद अख्तर भाई मेल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। विकास भाई मेल कर चुके हैं ग्राउंड सलीत सफीपुर जिला उन्नाव से, थैंक यू सो मच विकास। और पुनीत जी कह रहे हैं पूरा मेल नहीं पढ़ा गया, अच्छा भाई ठीक है। ग्राम समदापुर कमलापुर जिला सीतापुर से शिवा सिंह, नीलेश सिंह, अर्णव सिंह, पुनीत पंडित, तन्नु मम्मी, अच्छा ठीक है भाई कर दिया। वकील भाई आवाज़ अच्छी लग रही, थैंक यू सो मच। ओके बहुत लंबा दो लाइन आपने लिखा है, ठीक है भाई वकील भाई, थैंक यू सो। सोनू भार्गव जी हम मेल कर रहे हैं, ठीक है मेल मिल गया आपका। आस्था अवस्थी, राकेश कुमार, आप सब के मेल हमें मिल चुके हैं। और अब एक और गाना, मतलब यही भोजपुरी स्टाइल में ही सुनेंगे। और भी अगर कोई गाना सुनना हो तो हमें मेल कर दीजिए, तुरंत ही मेल करिए, मतलब बिना देर किए मेल करिएगा। शिवराज भाई मिल गया बाराबंकी से आपका मेल है ना, FM आकाशवाणी।

0: मतलब मजा आ रहा है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खुरवाल दीपांशु खुरवाल पॉप टाइम और रेनबो कैफे दोनों अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। शुक्ला कह रहे हैं कि मेरा नाम अनुराधा शुक्ला है, मैं गंगापुर गुलहरिया बहराइच से प्रोग्राम सुन रही हूं और मेरी ननद मंदाकिनी भी सुन रही है और देवर जो सनी है वो डांस कर रहे हैं। अरे तो देवर डांस कर रहे हैं तो भाभी क्यों पीछे हैं भाई, भाभी भी डांस करें देवर के साथ। आसिफ भाई हमें कह रहे हैं कि मैं हैदराबाद तेलंगाना से आपको सुन रहा हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम गर्दा उड़ा दिया है। थैंक यू सो मच आसिफ भाई। बाबू अंसारी देवकाली अहमदपुर बाज़ार बाराबंकी से हमें मेल कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो फ़ैन हो गया। थैंक यू सो मच डियर। फ़ैन तो सिंगर्स का हो ही है, ये इतने बढ़िया गाने भोजपुरी में एकदम झुमाने वाले गाने बताते हैं। आस्था अवस्थी हमें मेल कर रही हैं, साथ में विनीत कुमार मेल कर रहे हैं, शिवराज, आप सबके मेल हमें मिल रहे हैं। बड़ा बड़ा मेल करते रहिए हमारी मेल आई डी पर जो है fmakashwani@gmail.com। आप सुन रहे हैं सुनील को प्रोग्राम किसमें क्या नाम है रेनबो कैफे। सरसों के साग से कंपेयर कर रहे हैं आप, देखिए मतलब किस किस चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है अपने मतलब बेटर हाफ को या फिर जिसको भी कह सकते हो, मतलब जो पसंद है उसको सरसों के साग से कोई मतलब कैसे कर सकता है कंपेयर, ये नहीं समझ पा रहा। खैर ये कर रहे हैं तो देखिए भाई इनके जो भावनाओं की थोड़ी सी कद्र करिए।
1: अरे बोलो

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। राज्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग एवं जनपद अमेठी प्रभारी श्रीमती प्रतिभा शुक्ला द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के क्रम में आज जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर गौरीगंज अमेठी में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद तथा मीडिया संवाद कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभाव व प्रबुद्ध जनों के विचारों को सुना एवं उनके द्वारा दिए जाने वाले सुझाव के लिए उन्हें आश्वस्त किया एवं उनके कार्य की सराहना की। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने आज अमरोहा में प्रेस वार्ता कर सुशासन को समर्पित केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने और प्रधानमंत्री मोदी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने पर मीडिया से संवाद किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने 2014 में मोदी जी पर भरोसा किया और भारी बहुमत देकर तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। ये सफलता सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला ये उसका परिणाम था। मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ वास्तविक रूप से कार्य किया और यह नारा न होकर इसे जन आंदोलन बना दिया और जन आंदोलन का ये परिणाम रहा कि योजनाओं का 100% लाभ हर लाभार्थी को मिला। मैनपुरी जनपद में आयोजित थाना समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने भूमि संबंधी विवाद

हितों का मौके पर जाकर निस्तारण करने तथा अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। थाना बिछवा में पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के साथ जन शिकायतें सुनते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में सार्वजनिक एवं निजी भूमि पर अवैध कब्जों से संबंधित शिकायतें बड़ी संख्या में प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मथुरा में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने मीडिया संवाद कार्यक्रम में केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा सुशासन और जन कल्याण को प्राथमिकता दी गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें।
1: वो भूली दास्तां जो फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने।

0: महकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने।
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान।
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

खुली वो जुल्फ तो पहली हसीन रात हुई, उठी वो आंख तो तखलीके कायनात हुई। गिले बहुत थे मगर जब नजर नजर से मिली, ना मुझसे बात हुई ना उनसे बात हुई। ये गुफ्तगू, ये मोहब्बत के तकाजे हर्फों के मोहताज नहीं होते। कई बार निगाहें एक लंबी गुफ्तगू का, एक शीरीन से बड़े खूबसूरत से तकरीर का गवाह बनती है। यूं ही तुम मुझसे बात करते हो या कोई प्यार का इरादा है?

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीकांता सुनील के साथ सोशरिया साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो लखनऊ पर। बाकलम जॉनेलिया साहब, तुम्हारा हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो, मैं दिल किसी से लगा लूं अगर इजाजत हो, तुम्हारे बाद भला क्या है वादाए उपैमा, बस अपना वक्त गंवा लूं अगर इजाजत हो, तुम्हारी याद में जीने की आरजू है अभी, कुछ अपना हाल संभालूं अगर इजाजत हो।

न कोई वादा, न कोई यकीन, न कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतजार करना था। गरज की काट दिए जिंदगी ऐसे दोस्त, वो तेरी याद में हो या तुझे भुलाने में, अब तो उनकी याद भी आती नहीं, कितनी तन्हा हो गई है तन्हाइयां भी।

रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रोशनी का अंदाज़ सुनील के साथ।

11 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में 150 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड के निर्माणाधीन 7 मंजिला अत्याधुनिक नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था के अभियंता को कार्य में तेजी लाते हुए ससमय निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा निर्माण कार्य में मानक के अनुरूप उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने पर जोर देते हुए बीएचयू प्रशासन के अधिकारियों को भी निर्माण कार्य पर विशेष निगरानी हेतु निर्देशित किया। ज्ञातव्य है कि अत्याधुनिक नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग बुजुर्गों को समर्पित देश का तीसरा और उत्तर भारत का प्रमुख केंद्र होगा। नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने शाम को काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित अटल इंक्यूबेशन सेंटर, महामना फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का दौरा कर यहां विकसित हो रहे नवाचारों, स्टार्टअप गतिविधियों और उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयासों का अवलोकन किया। दौरे के दौरान डॉ विवेक कुमार सिंह, सीनियर एडवाइजर नीति आयोग, डॉ अशोक सोनकुसरे का स्वागत प्रबंध शास्त्र संस्थान के डीन प्रोफेसर एस के दुबे, निदेशक तथा केंद्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया गया। प्रदेश सरकार हर गरीब कमजोर की सरकार है। सरकार की हर योजना से समाज के आखिरी पायदान तक के लोगों को लाभ मिला है। योजनाओं से लाभान्वित पात्रों के जीवन में परिवर्तन आया है। उक्त विचार लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर स्थित नवनिर्मित सद्भावना मंडप भवन का उद्घाटन करते हुए उपस्थित जनमुख समूह को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि सद्भावना मंडप भवन का उद्देश्य गरीब जरूरतमंद परिवारों को सुविधा उपलब्ध कराना है। इस मंडप में लोगों को विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए कम खर्च में बेहतर सुविधा मिलेगी। पिछला वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने आज अमरोहा में विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में राज्य मंत्री द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में आयोजित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्हें पेंशन, शादी अनुदान सहित अन्य योजनाओं की शिकायतें, लंबित प्रकरण, नए आवेदनों की स्थिति एवं विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधितों को निर्देश देते हुए कहा कि शादी अनुदान सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए जनपद की तहसीलों, विकासखंडों में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जाए। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

रूहानी इश्क की मध्यम लौ में पकता, सर्दियों की सुबह किसी झील के शिकारे पे रखी कांगड़ी से निकलते कहवे की माफिक लज्जतदार, खामोश निगाहों के पीछे छुपी कोई चिंगारी जो सुर्ख रोहे की शक्ल में आंखों में पड़ती नजर आ जाए, सर्द रातों में पश्मीने की माफिक जवां दिलों में हौले से मुकम्मल होते हुए किसी सुनहरे ख्वाब की ताबीर बताता। रेडियो प्रोग्राम रजनीकंदा, सुनिए हर रात 10 से 12 100.7 FM रेनबो पर।

मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तहान क्या लेगा। हजार तोड़ के जाऊं उससे रिश्ता वसीम, मैं जानता हूं वो जब चाहेगा बुला लेगा। ये एक मेला है वादा, किसी से क्या लेगा। ढलेगा दिन तो हर एक अपना रास्ता लेगा। ये मोहब्बतों के मेले हैं, अगर इनमें जाते रिश्ता ना हो तो शायद रिश्तों को तार तार करने में लोग एक पल ना लगाएं। और आज एक ऐसा वक्त है जब रिश्ता दिली राबतों से नहीं, तमाम रिवायतों से चलता है। वो रिवायतें जो कभी भी बनाई और कहीं भी तोड़ी जा सकती है। कभी कभी अजनबी से भी राबते नजर आते हैं, कभी अपने भी पराये लगने लगते हैं।

फोन से वादा तो कर लिया लेकिन अपनी कम्फर्सती को भूल गया। बस्तियों अब तो रास्ता दे दो, अब तो मैं उस गली को भूल गया। उसने गोया मुझी को याद रखा, मैं भी गोया उसी को भूल गया।

नए कपड़े बदल के जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं तो आखिर जाऊं किसके लिए।

नमस्कार, रात के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। रक्षा मंत्री वहां एपी इंटर कॉलेज मैदान पर किसान, जवान और महिला स्वाभिमान रैली को भी संबोधित करेंगे। शाहजहांपुर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय स्थित शहीद रामप्रसाद बिस्मिल सभागार में एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महानगर अध्यक्ष श्रीमती शिल्पी गुप्ता ने की। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जननी सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, HPV वैक्सीन टीकाकरण, 102 एवं 108 एम्बुलेंस सेवा, ALS एम्बुलेंस सेवा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, TB उन्मूलन कार्यक्रम तथा मातृ एवं शिशु परिवार कल्याण केंद्रों के माध्यम से आमजन को व्यापक लाभ मिल रहा है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने ट्यूबरकुलोसिस के लिहाज से प्रदेश में सबसे ज़्यादा उच्च जोखिम वाले गांव रखने वाले 4 जिलों के अधिकारियों को अगले 18 दिन अति गंभीर होकर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाकर समस्त गांवों को कवर किया जाए। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रदेश में चल रहे 100 दिवसीय TB मुक्त भारत अभियान की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। गाजीपुर के बिरनो थाने में अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद 8,18,66,000 रुपये से अधिक की लागत से भवन बनाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने शनिवार को भूमि पूजन कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी। नए भवन में हाईटेक सुविधाओं के साथ पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय व्यवस्था भी होगी। ये परियोजना बिरनो थाने को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक मॉडल थाने के रूप में विकसित करेगी। और अब मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:12 पर और सूर्यास्त शाम 7 बजे होगा। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। 100.7 MHz पर आकाशवाणी की FM प्रसारण सेवा का यह लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। प्रातः 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे।